मांगने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए, जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज़।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मन्नलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
2: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
1: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
3: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
4: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
5: पीओके में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 ACP समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss neat paper leak issue in parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today, and 23rd Commonwealth Games to begin in Glasgow, Scotland today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. We have a report.
3: Prime Minister Modi made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Viksit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence focused on strengthening governance, improving inter-ministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing citizens' welfare. Highlighting the rapidly evolving governance landscape, Mr. Modi stressed the need to modernize governance processes in line with changing times, calling for greater convergence.

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

दोस्तों कहते हैं मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो मुश्किलों से लड़कर मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ जाते हैं, जिनमें वो साहस होता है, वो जिंदगी को जीत जाते हैं। सुप्रभात, नमस्कारम, आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के अपने रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद के साथ। एक प्यार भरा गुड मॉर्निंग है आप सभी का, इस्तकबाल करते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं जी। एक और नई सुबह, 8:21 का समय हो रहा है स्टेशन क्लॉक में, और आज बात करें तारीख की तो 23 जुलाई की तारीख हो गई है श्रोताओं। तो दोस्तों आपको बताते चलें, हर दिन बहुत ही स्पेशल होता है, हर दिन का इतिहास बहुत ही खास होता है, वैसे ही आज का दिन बहुत खास है, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। लेकिन उससे पहले आज के दिन की आप सभी को देता हूँ ढेरों मंगल शुभकामनाएं। थर्सडे का दिन है यानी गुरुवार की बेहतरीन सुबह, और आप सभी का एक बार फिर से पूरे दिल के साथ वार्म वेलकम करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। हाँ जी, तो कैसे हालचाल है आप लोग, मुझे अपने हालचाल जरूर साझा करिए मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से 9837896896 पर। अभी लौट कर आएंगे तो आपसे ढेर सारी बातचीत करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर, लेकिन उससे पहले एक बेहतरीन गाना होगा जिसके साथ हम करेंगे आज के सफर की शुरुआत, एंड इस गाने के बाद लौट कर आएंगे तो आपसे और भी ढेर सारी बात करेंगे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
3: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला।
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

बिल्कुल नाचते रहिए जी अच्छे गानों के साथ। जो है आनंद ने यहाँ पर एंट्री जो दे दी है। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है आप सभी के? 8:34 हो रहे हैं। मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है आप सभी को। और देखिए ढेर सारे संदेश ऑफकोर्स हम तक पहुंच रहे हैं आपके प्यारे प्यारे साथियों। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:34 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मौसम बहुत ही औसम है, सूर्य देवता जो है प्रकट हो गए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी का जो कहर है वो ऑफकोर्स आज रहने वाला है। लेकिन देखिए ये मौसम जो हो रहा है ना, ये वो वाला मौसम है जिसमें आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो सकती है, आपको नजला जुकाम खांसी बुखार जो है आपको लग सकता है। तो हम तो चाहेंगे कि आप जो है इससे कोसों दूर रहें या आपको छू भी ना पाए। देखिए जो मौसम हो रहा है ना, थोड़ा सा कच्चा पक्का हो रहा है, कभी एकदम से बारिश हो जा रही है, कभी एकदम धूप हो जा रही है ना। मैं भी उसका शिकार हो गया हूं ना, तो आप मत होइए, आप अपना खास ख्याल रखिए। फिलहाल जो करंट टेम्परेचर है वो 30°C दिखा रहा है। हवाएं जो है 6 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी आज, यानी कि हवाएं तो अच्छी खासी चल रही हैं। और मैं यहाँ पर ही कहना चाहता हूँ बाबू शाह, अभी जो ह्यूमिडिटी है वो ठीक ठाक है, एयर क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है आज की सुबह। और ये जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री तो है ही, अभी आगे चल के 33 डिग्री तक पहुंचेगा। तो आप जो है अपना खास ख्याल रखिए, बाकी मुस्कुराते हुए जो है आगे बढ़िए, चेहरे पे स्माइल रखते हुए आगे बढ़िए मेरे भाई। आज की सुबह सिर्फ आपके लिए है और ढेर सारे मैसेज जो आपने किए ये मेरे लिए है, मुझे पता है। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, नमस्ते आनंद भाई, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज आपकी आवाज काफी बदली बदली लग रही है। ऑफ कोर्स यार, बिकॉज आज जो है ना थोड़ा सा जुकाम ने मुझे जकड़ लिया है इस वजह से। एक संदेश पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग, आज 23 जुलाई है, गुरुवार का दिन है सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, लिख रहे हैं आज आनंद जी आपकी आवाज थोड़ी चेंज हो गई है। हाँ जी, वो थोड़ा सा जुखाम वाला सीन हो गया और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है एवरीबॉडी। यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, आप ये कह रहे हैं मुझे कि गाने कहाँ से लेकर आते हैं। देखिए आप लोग ना जब भी मैसेज करें तो अपने शहर का नाम जरूर लिखें और कोशिश करें कि आप अपना नाम भी जरूर उसमें शामिल करें। नमस्ते आनंद जी, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रतीक है। हाय प्रतीक, गुड मॉर्निंग, ये मुझे मैसेज कर रहे हैं इस वक्त पागवाड़ा से, एंड इन्होंने मुझे मैसेज किया है, लिखते हैं आनंद जी सुबह सुबह सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ भी आपको बनना है तो सबसे पहले आप अपने आप के साथ ईमानदार रहिए, जब तक आप ईमानदारी नहीं निभाएंगे तब तक आप कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे, उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। और साथ में क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। शिखा जी मेरे साथ जुड़ी है, लिखते हैं हाय आनंद, वेंसडे की सुबह नहीं है आज तो थर्सडे की सुबह है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, वेंसडे तो कल था, आज तो थर्सडे है। एंड लिखती है सुबह की शुरुआत एक नई ऊर्जा और एक नई सोच के साथ करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच शिखा जी। एक और मैसेज इस बीच मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आपको भी, ये पुतली घर रोड से मैसेज कर रहे हैं, इनका नाम मयंक है। ये मुझे लिखते हैं, रेडियो पे आपके गाने सुनने में बहुत मजा आ रहा है, मौसम बहुत ही औसम है और आपके गाने भी बहुत प्यारे हैं, क्या बात है, थैंक यू सो मच यार। सारे लोग बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं और सबके मैसेज बहुत प्यारे हैं। श्रोताओं आप भी अपने प्यारे प्यारे मैसेज जो है हम तक पहुंचा सकते हैं, और अगर आप भी हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं कुछ अच्छी चीजें, तो आपका मोस्ट वेलकम है। 9837896896 इस नंबर के जरिए आप जो है हमें कनेक्ट कर सकते हैं आज की सुबह। मुरादाबाद से जुड़ी तमाम सारी जानकारियां जो आपके साथ साझा करूंगा आज की सुबह, और बाकी मेरा गला थोड़ा सा मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए कोशिश करूंगा कि मैं बातें कम करूं, गाने ज्यादा चलाऊं, क्योंकि जुखाम ने जो है मुझे अच्छे से पकड़ के रखा है कि बड़ा आप कहीं मत जाओ, आप जो है मेरे साथ ऐसे ही खड़े रहो। मैं क्या नहीं पाजी, मुझे छोड़ दो यार, मेरे को मत पकड़ो, किसी और को ढूंढो जाके, लेकिन ये जुखाम ही है, लेकिन ये जो है मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है। कोई बात नहीं, मैं थोड़े दिन के लिए इसका साथ निभाऊंगा और ये मेरा, फिलहाल आप मुझे ऐसे ही आज की सुबह एक्सेप्ट कर लो यार। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आपके रेडियो सेट पे निकाल दिया है मैंने आज की मॉर्निंग, इसको सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। लौट कर आएंगे तो मैं भी सच कहता हूँ मैडम।

गाना डेफिनेटली आप सुनेंगे। मैं आपको बता दूं, आज का दिन बहुत खास है, 30 जुलाई बहुत ही स्पेशल दिन है। क्यों खास है ये? ब्रॉडकास्टिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज का, यानी कि आज का दिन रेडियो के लिए बहुत स्पेशल है। अभी लौट कर आते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। एंड आज का दिन यानी 30 जुलाई का दिन क्यों खास है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और आपसे एक सजेशन भी लूंगा थोड़ी सी देर के बाद। लेकिन फिलहाल ये गाना निकल गया है तो उसको एंजॉय करते हैं। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आप हैं आरजे आनंद के साथ। एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं जी। ऐसे ही मेरा साथ निभाना है 10 बजे तक। गुड मॉर्निंग।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
5: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
4: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
6: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
7: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
8: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
7: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
9: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
10: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
11: लेकिन सोनिया
10: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
11: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
9: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

काफी ब्लॉकबस्टर गाना भी आपने एंजॉय किया एंड मूवी जितनी कमाल की थी गाना उतना बढ़िया था, पर दिस फिल्म का ये ट्रैक जिसे आपने एंजॉय कर लिया आनंद के साथ एक्सक्लूसिवली। और अगर आप भी मेरे साथ आज की सुबह जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मुझे मैसेज करना था यार 9837896896 पे। एंड आज की सुबह सो मेनी मैसेजेस, थैंक यू वेरी वेरी मच इतने प्यारे और इतने ब्यूटीफुल मैसेज करने के लिए। एंड इतनी सारी बातें आप लोग सुबह सुबह बता देते हो ना मेरे को, मतलब मेरा डोज जो है मॉर्निंग का वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज इतनी प्यारी प्यारी बातें आप लोग करते हैं मुरादाबादी। सच में आनंद को तो फुल ऑन आनंद आ जाता है। 8:52 स्टेशन क्लॉक में 8:52 का समय हो रहा है और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे मैसेज किए आज की सुबह, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए, जोरदार तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। यार देखो गला ना बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है और आज मैंने बहुत सारे उपाय भी करके देखे हैं कल से, बट आई डोंट नो कि ये जुखाम जो है ना, कह रहा बेटा 2-3 दिन तक तो मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन ऐसे में अगर आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहो, कोई सजेशन देना चाहो तो आपका स्वागत है। आप बता सकते हो भैया आप अपने जुखाम को भगाने के लिए कौन सा टोटका शॉर्टका फॉलो करते हो, मुझे ही बता दो यार थोड़ा सा, मतलब ज्यादा मत बताओ, थोड़ा सा तो बता ही सकते हो। कोई कुछ अच्छा सा यू नो कोई काढ़ा अगर आप बनाते हो, कोई अच्छी सी एडवाइस अगर आप देना चाहते हो कि ये चीज अगर आप करोगे तो आनंद आपके गले को काफी हद तक रिलीफ मिल सकता है, काफी हद तक आराम मिल सकता है के गले को, आपके जुकाम को थोड़ा सा आराम मिल सकता है। देखो यार आरजे है, इसका मतलब ये थोड़ा ना जुकाम नहीं होगा यार, किसी ने बोला यार आप तो आरजे हो आपको जुकाम कैसे हो सकता है, मतलब यार हद है भाई, हम एआई नहीं है, हम इंसान है, जुकाम होना कंपलसरी है मेरे भाई, हम भी आपकी तरह ही खाते पीते हैं तो है ना, तो इसीलिए प्लीज कुछ अच्छा सा बताइएगा जरूर, अच्छा सा कुछ सजेशन दीजिए जिससे मुझे थोड़ी सी राहत मिल जाए। आज बहुत सारा काम करना है, मतलब पूरा दिन आज जो है बहुत बिजी रहने वाला है, रेडियो के निकलने के बाद सीधा बाहर फील्ड में जाना है एंड बहुत सारे गांव विजिट करने हैं, बहुत सारा काम है, मतलब तो इसीलिए खुद को जरा एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग पहुंचा रहे हैं हमें मयंक जी पीतल नगरी से जुड़े, हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक मैसेज हमारे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग जी, हेलो हेलो कैसे हैं आप, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये हमारे पास प्रकाश जी का मैसेज पहुंचा है, थैंक यू सो मच सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड शुभम जी का मैसेज आ पहुंचा है, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। दोस्तों मैसेज का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन उससे पहले बताते हैं आज का दिन क्यों खास है। देखिए आज 23 जुलाई है और आज के दिन जो है हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे की शुरुआत हुई, आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फैबुलस डे है ये, एंड ये देखिए बहुत ही स्पेशल दिन है और मुझे लगता है कि कुछ स्पेशल दिवस जो होते हैं ना वो सच में बहुत प्यारे होते हैं। और ये जो है आज ही के दिन पहला रेडियो स्टेशन का पहला प्रसारण था उसी की याद में जो है आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। बॉम्बे स्टेशन से पहली बार ब्रॉडकास्टिंग हुआ था आज ही के दिन 1927 में, आज 23 जुलाई को, इसीलिए आज राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टिंग डे यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जैसे मैंने बताया आज का दिन जो है इसीलिए मनाया जाता है। और ढेर सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे संदेश आप पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से थैंक यू। तो आपको बता दें क्यों मनाया जाता है, तो मैं आपको वही बता रहा था 23 जुलाई को जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है वो भारत में हर साल आज के दिन मनाया जाता है 23 जुलाई को। एंड जो भारत ने पहले रेडियो प्रसारण की याद में आज के दिन को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि मैंने कहा 1927 में भारत प्रसारण कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से जो है ये शुरू हुआ था आज के दिन। तो अगर आप जो है रेडियो के बहुत बड़े शौकीन है तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल दिन है आज का ये, सो अपने आप में स्पेशल दिवस आज का है ना, यानी कि प्रसारण का जन्म का प्रतीक जो है इस दिन को माना जाता है आज के दिन, यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का मतलब जो अभी आप सुन रहे हैं, जो हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जो आप ऑन ईयर सुन रहे हैं, ये प्रसारण ही तो है।

चलिए श्रोताओं, अभी बात करते हैं आज के दिन के बारे में। तो आज का दिन क्यों खास है आपको बताते चले। आज के दिन जो है तमाम सारी और भी बेहद खास चीजें हुई जो आज के दिन को थोड़ा सा स्पेशल बना देती हैं श्रोताओं।

देखिए श्रोताओ, आज के दिन जो है निर्मला जोशी जी का जन्म हुआ था 1934 में, जो मदर टेरेसा की संस्था मिशन सीरीज ऑफ चैरिटीज के प्रमुख थी। आज के दिन इनका जन्म हुआ। एंड इसके अलावा आज का दिन जो है बहुत खास हो जाता है, 1906 में आज ही के दिन 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था, जो स्वतंत्रता सेनानी, ऑफकोर्स हर कोई उनके बारे में जानता है। आज के दिन जो है उनका जन्म हुआ और उन्हीं का जो ये नाम आज के दिन जुड़ा, जिसने आज के दिन को और भी स्पेशल शेल बना दिया। और श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ था शिव कुमार जी का, जो पंजाबी भाषा में एक व्याख्यात कवि रहे। इनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ। श्रोताओं, तो आज के दिन से जुड़ी ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपके साथ साझा कर रहे थे, और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 स्पेशल। और कौन कौन से दिवस है जो आज मनाए जाते हैं, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी सी देर में। फिलहाल 8:57 का समय हो गया है स्टेशन क्लॉक में, और अगर आप निकल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप निकल जाइए जी। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहती हैं, और हम हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं अच्छी चीजों के लिए, ताकि आप जो है एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ जहां भी जाएं वहां पर जाके रॉक मचा दें। एक बहुत ही कमाल की जानकारी है, जो ऑफ कोर्स आपके साथ अगर मैंने साझा नहीं करी तो मुझे बड़ी नाइंसाफी लगेगी। कौन सा स्पेशल चीज है जो आज के दिन को बहुत ही स्पेशल बना रहा है जी? जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप मुझे डेफिनेटली कोई सजेशन दे सकते हैं अच्छा सा, जो आपको लगता है आज के दिन आपको देना चाहिए। एक मिनट में वापस आया।

ये जो जुखाम के साथ फ्री में खांसी मिलती है ना भाई, इसके लिए तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ जुखाम। फ्री फंड में खांसी मिल जाती है भाई साहब। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए हैं। आज थोड़ा बोलने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ सकते हैं, बहुत तगड़ा वाला मेरे को प्रॉब्लम हो गया है। एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं अभी और लौट कर आता हूँ तो मैं आपके लिए कुछ खास चीजें करूंगा, लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए। आज मैं थोड़ा कम ही बोल पाऊंगा बिकॉज गला थोड़ा कम साथ दे रहा है इसी वजह से, बाकी कोई बात नहीं, अच्छे गाने फौज आपके लिए आते रहेंगे।

अभी एक गाना बहुत ही अच्छा मैंने आपके लिए लाइन अप कर दिया है, बहुत देर से ये लिस्ट में था बट अभी मैं इसको प्ले कर रहा हूँ ऑन एयर। आप इस गाने को सुनिए, एंजॉय करिए और सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग, हर्षी आनंद के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम
0: मिस कर दिया तो रीलोड
2: चाहे चाहे चाहे
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
5: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी गाने सुनाता है मस्त और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
6: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
7: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
6: पर पापा।
7: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
8: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

0: वेलकम बैक है लेडीज एंड जेंटलमैन, आप आनंद को सुन रहे हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही स्पेशल मॉर्निंग है और एक बहुत ही स्पेशल वाइब आपको देने के लिए आपके रेडियो सेट पे हाजिर हो गया हूँ। एंड दिस इज माय लास्ट आवर। 9:06 हो रहे हैं जी, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को और मैं आपके लिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आज की सुबह और जिसपे आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे आज की मॉर्निंग। मैंने कहा था यार मेरे को गले को सही रखने के लिए ना कुछ टिप्स दो और मेरे पास बहुत सारे टिप्स आ गए यार आज की सुबह। थैंक यू सो मच, माइंड ब्लोइंग। मेरे पास शिखा जी ने पहुंचाया कि आनंद जी आप ना गर्म पानी का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल तो मैम अभी गुनगुना पानी तो नहीं पी पा रहा हूँ लेकिन मैं जरूर ट्राई करूंगा। एक मैम ने मुझे मैसेज किया आनंद आप काढ़े का इस्तेमाल करो। किसी ने मुझे लिखा आनंद आप अदरक वाली चाय पी लो। सच में यार थैंक यू सो मच इतने प्यारे यू नो सजेशंस देने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। एंड एक मैसेज मेरे पास आया है कि आनंद जी आपने जो है मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ क्या आपने स्टीम लिया? नहीं जी मैंने अभी तो नहीं लिया लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं जरूर ये भी ट्राई करके देखता हूँ। और देखिए किसी ने मुझे बड़ा प्यारा मैसेज किया था थोड़ी देर पहले कि 2-3 दिन तक तो इसका असर डेफिनेटली रहता है। आई डोंट नो यार लेकिन मैं इतना टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा भाई, मुझे आप लोगों से बातचीत भी करनी है तो मुझे थोड़ा सा जो है जल्दी इसको ठीक करना पड़ेगा। एंड एनी वे आज आप लोगों को शायद आवाज में थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा इसी वजह से क्योंकि ये जुकाम है ना भाई सारी चीजों को चेंज कर देता है तुरंत से ही। आपकी वॉइस आपका आवाज पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, मैं आपको सच में बता रहा हूं यार। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूं। और सुबह सुबह आपकी आवाज इतनी प्यारी कैसे लग रही है? ये मैं मतलब ये क्या सुन रहा हूं मैं, मेरी आवाज प्यारी?
1: किसी से प्यार तुझे हो गया।
0: मैडम किसी से प्यार नहीं हुआ है, आप ऐसी बातें करके ना ऐसे जले पे नमक मत छिड़को यार।
1: चेहरा तेरा खुद करे बयां।
0: मैडम बिल्कुल मेरा चेहरा सब कुछ बयां कर रहा है, जो जुखाम खांसी जो हो रहा है ना, जो फीवर हो रहा है मुझे, वो सब कुछ मेरा चेहरा बयां कर रहा है। यकीन नहीं आता है तो जाके सोशल मीडिया चेक करो। रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ। तीसरी घंटे की शुरुआत श्रेया घोषाल मोहित चौहान की आवाज में निकल गया एक बहुत ही ब्यूटीफुल श्रेया किसी गाने से करेंगे इस घंटे की शुरुआत। नहीं हुआ यार, थोड़ी देर में लौट के आता हूँ। वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर। एक सवाल के साथ आ रहा हूँ, आप मुझे फटाफट मैसेज करो, जो भी आप कहना चाहते हो आप मुझे फटाक से मैसेज कर दो, लौट के आता हूँ आपके मैसेज शामिल करूंगा आपके नाम के साथ। गुड मॉर्निंग।

0: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
1: लेकिन सोनिया
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या गाना है यार। और सच बताऊं, ऐसे गाने सुन के सुबह सुबह मन को भी सुकून मिलता है और कानों को भी आराम मिलता है। वेलकम बैक है जी, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 9:16 हो गए हैं, आप एफएम मुरादाबाद के साथ जुड़े हुए हैं जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और अभी भी ढेर सारे मैसेज लगातार मेरे पास पहुंच रहे हैं, आपके प्यार के लिए शुक्रिया।
1: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
0: थैंक यू सो मच यार। Hi ladies and gentlemen, thank you very much। आज थर्सडे की सुबह है, ज्यादा बोलने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके एंटरटेनमेंट में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा मेरे दोस्त। ये जरा आवाज सुनते हैं, कहां से कौन पहुंचा रहे हैं।
2: गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो, क्या हालचाल है। गुरुवार की सुबह FM मुरादाबाद में जुड़ गया हूँ और बेहद अच्छे प्रोग्राम लाते हैं आनंद भाई आप, और हम यही चाहेंगे कि आप इतने अच्छे अच्छे जानकारियां जो देते हैं और ढूंढ के लाते हैं, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहता हूं कि आपको बहुत अच्छी जानकारी है और रेडियो पे आपका बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और बोलने का अंदाज भी लाजवाब है, मैसेज पढ़ने का अंदाज तो लाजवाब ही है। तो आपको दिल से धन्यवाद FM मुरादाबाद, जो सबको दीवाना बना दे। गुड मॉर्निंग एक बार फिर से, मैं मौसी मंसारी बनारस से। बिंदास मॉर्निंग सुना क्या, नहीं सुना तो मिस कर दिया, आरजे आनंद के साथ। तो सभी लोग सुनते रहिए FM मुरादाबाद, जो आनंद भाई लाते हैं, सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है आनंद भाई के साथ।
0: थैंक यू सो मच, बनारस से मोहसिन साहब आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: नमस्कार राधे राधे, बिंदास मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, और मैं आपका दोस्त गोपी शर्मा, नगर पंचायत पाक बरासी। सभी सुनने वालों को प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन आपको ये सौगात मिली कि आप प्रसार भारती से जुड़ पाए। नमस्कार, मैं गोपी शर्मा, नगर पंचायत पाक बड़ा से बोल रहा हूँ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक यह जीवन है, समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होंगी, वो तो बार बार हर दिन रूप बदल कर आती जाती रहेंगी, इसलिए चिंता न करके समाधान का चिंतन करें, डरे नहीं डटकर मुकाबला करें। नमस्कार राधे राधे, भेजते रहो अच्छे अच्छे मैसेज, नंबर 98378 96. नमस्कार राधे राधे
0: जी, आपको भी दिल से थैंक यू राधे राधे, बहुत बहुत।

धन्यवाद, आप लोग इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग भी अपनी प्यारी आवाजें पहुंचा सकते हैं, कुछ लोग छुप छुप के रेडियो सुनते हैं, बाद में मुझे पता चलता है ओ ये बात। अच्छा, नीतू जी जुड़ गई लाइन पर, ढक्का से लिखती है, हाय आनंद गुड मॉर्निंग। ये लिखती है, शायद आपको जुकाम हो गया है, आपकी आवाज बता रही है, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखो और अपना बहुत बहुत ध्यान रखो। बाकी इतने अच्छे अच्छे गाने आप प्ले करते हो, बहुत ही मजा आता है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाने निकाल कर लेकर आते हो, जानकारी भी बहुत ही अच्छी बताते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन सबसे पहले अपना ध्यान रखो और आज गर्मी रहेगी क्योंकि आज धूप बहुत ही ज्यादा भयंकर निकली है। एग्जैक्टली, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, आज आपको पानी पीते रहना है, पूरा दिन जो है भाई साहब पानी पीते रहिए। एक मैसेज आ रहा है मेरे पास, हेलो हेलो कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और ये लिखते हैं, आपकी आवाज बहुत प्यारी है भाई, मुझे मारो। आज तो वैसी आवाज की बहुत ही बैंड बजी पड़ी है श्वेता जी। वेल थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक पहेली आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी परछाई कभी नहीं दिखाई देती है। आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, चलो जरा दिमाग लगा के मुझे जवाब देना। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी परछाई ना कभी नहीं दिखाई देती है, मतलब है ना, तो आप जरा मेरे को दिमाग लगा के बताओ। अगर आपको पता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो बिना गूगल किए। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी परछाई मतलब कभी दिखाई नहीं देती है, आपको दिखाई नहीं देगी भाई, एंड या फिर कह सकते हैं उसकी परछाई मतलब जो है होती ही नहीं है, ये भी कह सकते हैं आप। तो आप मुझे बताओ जरा, अगर आपको पता है इसका सही जवाब तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो आज की सुबह 9837896896 पर। 9837896896 ये स्टूडियो का नंबर है जिसपे आपने मेरे को मैसेज करना है। कौन सी चीज है जिसकी परछाई नहीं होती है, साफ शब्द में पूछ रहा हूँ। आने वाला गाना हॉलीडे से निकल गया है आपकी रेडियो सेट पे, 9:21 हो गए।

0: कुछ कहना चाहते हो शायरन अंदाज में तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9837896896 पे। स्टूडियो का नंबर बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बता दिया है। लौट कर आ रहा हूँ अभी, एक एड ब्रेक का टाइम है, उसके बाद मैं वापस आता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर।
1: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
7: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
8: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
9: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
10: नलायक बेटा।
11: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
12: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

शायराना, बहुत ही प्यारा गाना भी आपने सुन लिया, इतना खूबसूरत ट्रैक कि मजा आ गया। श्रोताओं, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी बात कर लेते हैं अपने आसपास में क्या चल रहा है, आसपास में क्या गतिविधियां चल रही हैं। देखिए, मुरादाबाद में तो चल ही रहा है, लेकिन आसपास में हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है, इन सब पे भी हम थोड़ी थोड़ी अपडेट जो है आपको देते रहते हैं। आपको बता दिए, सितंबर में बंद हो जाएगा बच्चों की सोशल मीडिया अकाउंट्स। यस, अभी जो है फ्रांस की सांसद में एक नया कानून जो है पारित हुआ है। फ्रांस की जो सांसद है, उन्होंने वहां पर 15 साल से जो है कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून जो है वो बनाने वाले हैं वहां पर। और मुझे लगता है कि देखिए, जो ये फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है ना, ये बहुत ही बढ़िया हो रहा है। इनफैक्ट ये मुझे लगता है अपने इंडिया में भी हो जाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे अधिकतम जो है मैं देखता हूँ फोन पे लगे ही रहते हैं। जी, पढ़ाई से ज्यादा जो है वो एंटरटेनमेंट की चीजें देखते हैं, एंड आई थिंक जिससे मुझे लगता है कि उनका कंट्रीब्यूशन जो है जहां होना चाहिए वहां पर हो ही नहीं पाता है। और इसी बीच में जो है आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, और भी बहुत सारी कंट्री है जहां पर जो है पूरी तरीके से, यूएई में भी बैन हो गया इनफैक्ट अब तो, एंड अब जो है ये फ्रांस की भी अपडेट आई है, फ्रांस में भी जो है ये चीज अब होने वाली है सितंबर में। जी, वहां पर जो संसद में ये एक नई चीज निकल कर आई है, एंड मुझे लगता है कि देखिए ये जो चीज है ना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और सोशल मीडिया का जो क्रेज है वो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ही पीक पर है। इनफैक्ट बड़े बच्चे हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। इनफैक्ट अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको लेकर हर बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। यूज नई नई चीजों को यूज करना एक कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों पर जो है इसका पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज्यादा असर पड़ रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जितना हो सकता है ना ये चीजें जितनी अभी कम हो सकती है उतना ही बेहतर है। आजकल के छोटे बच्चों को आप देखो, बड़ों से ज्यादा उनको इन्फॉर्मेशन होती है, इतने बड़े लोगों को नहीं पता होता चीजें, इतने छोटे बच्चों को पता होती है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये वो तमाम प्रकार के एप्लीकेशंस जो है आजकल आ गए हैं जिनका इस्तेमाल हर कोई कर रहा है। तो इसलिए थोड़ी सी जो है ना मुझे लगता है पाबंदी बहुत जरूरी है, थोड़ी सी रोक बहुत जरूरी है। मेरे पास मैसेज पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग आनंद। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया जो है छोटे बच्चों के लिए डेफिनेटली बैन होना चाहिए। और मैं आपको एक रिसर्च भी बता दूं, रिसेंटली एक रिसर्च आई जिसमें ना पता लगा है कि 45% जेंजी जो है ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं डेटिंग ऐप के लिए, डेटिंग ऐप पे मैसेजेस भेजने के लिए 45% जेंजी जो है वो ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं। और एक नई चीज अभी मैं पढ़ रहा था जिसके बारे में, चैट फिशिंग के बारे में पढ़ रहा था कि ये भी एक नई चीज आई है निकल के, चैट फिशिंग। एंड ज्यादातर जो जेंजी है उसमें से 45% जो जेंजी है वो यूज करते हैं ChatGPT को सिर्फ डेटिंग एप्स के लिए, बिकॉज वहां पर वो बहुत सारी चीजें पूछते हैं एंड उसके बाद वो जाके वहां पर सर्च करते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो आई थिंक, मुझे लगता है ChatGPT, AI, Gemini जितनी भी चीजें बनी है वो अच्छी चीजों के लिए बनी है यार, है ना? तो उनका अच्छा यूज करो। मैं बहुत सारी चीजें ऐसे ही पढ़ता हूँ जो ChatGPT से, AI से, Gemini से लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना दी, इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बना दी जिनसे वो करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो उन चीजों की तरफ भी हम, मुझे लगता है, ध्यान दे सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें नहीं होंगी, ये मॉर्निंग मैगजीन शो है, यहाँ पर अच्छी बातें होनी चाहिए। ये भी अच्छी बातें थी नो डाउट, बट थोड़ी सी काम की बातें और एक्साइटमेंट दोनों मेंटेन होना चाहिए। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे की बात चल रही थी अभी, मेरे पास ढेर सारे मैसेज आए हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच इतने प्यारे प्यारे मैसेज करने के लिए, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। इतने सुंदर मैसेज कर दिया आप लोगों ने, मैंने आपसे कहा भी था एक पहेली का आंसर मेरे को बताओ यार जरा व्हाट्सएप करके, आप मुझे मैसेज करके बताना कि ऐसी कौन सी चीजें इसकी परछाई नहीं दिखाई देती है, ये मैं आपसे पूछ रहा था आज की सुबह। एंड बहुत सारे मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं। अभी जो एक नई रिसर्च और आई है भैया, आपको पता है हमने 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया, और इसी खास मौके पर एक और खास चीज का जो है खुलासा हुआ है कि भैया कैसे आप अपने ब्रेन को एक्टिव रख सकते हो। न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि दिमाग को हेल्दी रखने के लिए आप कौन कौन से तरीकों का फंडा फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि भैया नींद को जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देनी चाहिए, अगर हमने अपनी नींद को समझ लिया तो ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत एक्टिव है। नींद जो है वो दवा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप जरूर जो है इंपॉर्टेंट दें। दूसरा, अपने शरीर को आपने हिलाना है, मतलब तेज अगर आपको दिमाग बनाना है, अपना ब्रेन अपना एक्टिव करना है, तो उसके लिए अपनी बॉडी को जो है आपको कुछ नेचुरल मूव्स करने होंगे, जैसे आप चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप कोरियोग्राफी अगर इंटरेस्टेड है कोरियोग्राफी में तो आप डांस कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगता है। इससे भी आपके दिमाग तेज होने की जो है बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दिमाग तेज रखने के लिए इन्होंने बताया कि भैया आप सही मात्रा में अगर पानी का इस्तेमाल करोगे, वाटर का इस्तेमाल करोगे, तो इससे भी आपका ब्रेन जो है तेज होने के उसके चांसेस होते हैं। सिर्फ बादाम खाने से अकल नहीं आती है बॉस।
अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज करना सीख जाते हैं, अगर आप स्ट्रेस को कम रखते हैं तो इससे भी आपका ब्रेन जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है। सोशल मीडिया पर अगर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो ये ब्रेन तेज नहीं करेगा, ये आपकी ब्रेन की पावर को और कम कर देगा। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। ये 5 हैबिट्स हैं, अगर आप जो है इनको फॉलो करेंगे तो 60 साल की उम्र में भी 30 साल वाला दिमाग आपका वर्क करेगा, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन तेज हो तो आप जो है ना कोशिश करो कि नई नई चीज़ों को, नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। यार आजकल इतने सारे चैलेंज आ गए हैं सोशल मीडिया पे, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशन हैं जो डेली चैलेंज देते हैं, बहुत सारे चैलेंज आजकल ट्रेंड कर रहे हैं। तो अगर उसके बारे में नहीं पता तो बताना, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। और फिलहाल अभी एक गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। 9:33 हो गए, आनंद के साथ हैं आप। एक पहेली जो मैंने पूछी है उसका जवाब अगर आप पहुंचा रहे हैं तो लौट कर आऊंगा, बताऊंगा कौन कौन जुड़े हैं सही जवाब के साथ। आपके लिए बहुत सारी तालियां। अभी मुरादाबाद में क्या चल रहा है, स्पेशली आपको पता है ना, अभी कांवड़ का जो है शुरू होने वाला है, और ये कांवड़ मेला उसको लेकर जो है बहुत अच्छी खासी तैयारियां चल रही है मुरादाबाद में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आने वाला गाना आगे, अभी इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। ये भूत बंगला का ट्रैक, अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज, प्रीतम का म्यूजिक है, कुमार ने लिखा है, बहुत ही अल्टीमेट सॉन्ग है। रेडियो की वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय कीजिए। आप जहाँ पे भी जा रहे हैं आप आराम से मुस्कुराते हुए पहुंचिए अपने ऑफिसेज की तरफ। आप जहाँ भी निकल रहे हैं ऑल द वे बेस्ट, आरजे आनंद को सुन रहे हैं आप। ये है FM मुरादाबाद 89.6। बंदे का नाम आनंद है, शो का नाम है बिंदास मॉर्निंग। दिल से कहो जियो बिंदास।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
6: क्या मेरी कसम,
5: मिस कर दिया तो रीलोड।
7: चाय चाय चाय
8: बिंदास मॉर्निंग।
5: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

क्या बात है यार, बहुत ही बेहतरीन जो है अभी आपने सुना इन्फॉर्मेशन के साथ साथ। देखिए यहाँ पर गाने भी बढ़िया होते हैं आपके लिए। सुबह सुबह ऐसे गाने लेकर आते हैं जो आपकी सुबह को थोड़ा सा अच्छा और फैंटास्टिक बनाते हैं। पूरी पूरी कोशिश होती है यार अच्छे गाने यहाँ पर इजीली लेकर आता हूँ। और भाई साहब काम की बात अगर करें तो कल मुरादाबाद में जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ जय जगन्नाथ जो है भगवान की रथ जो है उनकी रथ यात्रा हुई, बहुत ही खूबसूरत। और आपको बता दें कल की जो ये भव्य रथ यात्रा थी इसमें श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ इसे निकाला गया। ये आशियाना स्थित जो इस्कॉन सेंटर है वहाँ से इसकी यात्रा की जो है शुरुआत हुई। हजारों श्रद्धालु कल इसमें शामिल थे। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता गया जगन्नाथ की जो यात्रा रथ था उसमें बहुत लोगों ने जो है आकर अपनी श्रद्धालुओं ने जो है अपना उत्साह दिखाया। और कल इस खूबसूरत रथ यात्रा में तमाम सारे लोग जो है वो शामिल हुए। एंड ये जो रथ यात्रा थी बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल हो गई कल मुरादाबादी के लिए। बच्चों से लेकर युवाओं और महिलाओं और बुजुर्ग सभी ने जो है इस दिव्य यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और ये रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि प्रेम सेवा और एकता सनातन संस्कृति और एक हम सभी के लिए सुंदर संदेश भी लेकर आई। तो ये कल बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है सेलिब्रेट किया गया श्रोताओं अपने मुरादाबाद में। और आपको पता है जगन्नाथ यात्रा जो है उड़ीसा में कितनी धूमधाम के साथ जो है मनाया जाता है जगन्नाथ जी का ये पर्व, बहुत ही खूबसूरत। और आपको बता दें भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने के लिए इतने श्रद्धालु उमड़े कल बहुत ज्यादा। बाकी श्रोताओं आपको बताते चले कल जो है भाई साहब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड किया अनुष्का एंड विराट का वीडियो। एक बार फिर से वो जो है संत प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचे विराट एंड अनुष्का, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, इन दोनों का वीडियो एंड फोटोज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। आपको भी पता है गुरु पूर्णिमा आने को है और उससे पहले ही जो है विराट जी पहुंच चुके हैं वृंदावन दर्शन करने के लिए। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहते हैं, जब भी ये लोग वहां जाते हैं तुरंत ट्रेंड हो जाती है इनके वीडियोज एंड फोटोज। आज की सुबह मैं भी आपसे सोशल मीडिया पे ही जो है एक सवाल पूछ रहा था और यहाँ पर भी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिसकी परछाई कभी नहीं दिखाई देती है या यूँ कहें कि कभी दिखती ही नहीं है। तो आप मुझे बता सकते हैं मैसेज करके, ढेर सारे लोगों ने भी मुझे बताए हैं। लेकिन उससे पहले चलिए काम की बात कर लेते हैं। जब आप अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम शेयर करने के लिए विजिटिंग कार्ड की जो है आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं आधार ऐप की बात कर रहा हूँ। अगर आप आधार ऐप डाउनलोड कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें एक जो है कॉन्टैक्ट कार्ड फीचर की मदद से जो है आप अपना QR कोड भी उसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं कुछ ही देर में। ये जो है आपका इससे लिंक हो जाएगा, यानी कि जो आधार ऐप है ना उसमें बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप डेफिनेटली अपने फोन में इंस्टॉल करें आधार ऐप और उसके अंदर जो फीचर्स हैं आप उनको डेफिनेटली इस्तेमाल करें। एक बहुत ही फैबुलस आवाज का जो है आज बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ, आज के जो दिन है बहुत ही स्पेशल, कमाल के एक आर्टिस्ट हैं जिनका बर्थडे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं आज ही के दिन। तो उनके बारे में डेफिनेटली मैं बात करूंगा और उन्हीं से जुड़ा एक सवाल होगा जो अभी थोड़ी सी देर में आप तक पहुंचेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। उससे पहले मैं बता दूं NFC से होगी फास्ट पेमेंट। जी हाँ, अगर आप जो है UPI करना चाहते हैं, जिसे मैंने कल भी बताया था, वो बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट चलेगा। तो UPI इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर यह है कि जल्द ही बिना इंटरनेट के भी आप UPI से पेमेंट कर पाएंगे और यह संभव होगा। NFC की तरफ से जो है एक नई फैसिलिटीज जो है आपको मिलने वाली है। आपको बता दें NFC सपोर्ट वाले स्मार्टफोन को जो है POS मशीनों पर टैप करके भुगतान कर सकेंगे वो, और उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल फैसिलिटी होगी कि भैया वो जो है बिना इंटरनेट के भी UPI चला सकेंगे। चलिए, ऐसी तमाम सारी खबरें जो है हम आप तक पहुंचाते रहते हैं जो आपके कहीं ना कहीं काम आती रहती हैं। डेली कुछ ना कुछ लेकर आता हूं जो आपके यूज में होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अभी लेकर आता हूं आज का एक बहुत ही अच्छा सवाल जिसका जवाब डेफिनेटली आप मुझे यहां पर पहुंचा सकते हैं आज की मॉर्निंग 9837896896 पे मैसेज करके। क्या है आज का मेरा कड़क सवाल डेफिनेटली बताऊंगा। अलका वर्मा जी जुड़ चुकी हैं आज की सुबह मेरे साथ सही जवाब के साथ। राधे राधे पहुंचाती हैं। बुद्धि बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं मनु।
मनोज कुमार जी ये भी मुझे गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, एंड इसके अलावा हमारे साथ ललिता कश्यप जी जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। एंड हमारे पास ये मैसेज आया है बीबी राधिका जी का, ये भी गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। और साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहन जी, रेडियो वाला आनंद को विक्की सागर जी गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। तो देखिए ढेर सारे लिसनर जो है वो लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं एक सवाल जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं आज की सुबह मेरे शो पे सुपरस्टार। अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मैं अभी लौट कर आता हूँ एक कड़क सवाल के साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए ऐसे ही बिंदास मॉर्निंग 89.6 FM पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। फिलहाल एक ब्यूटीफुल ट्रैक आपके रेडियो सेट पे निकाल दिया है मैंने आज की सुबह।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
1: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

क्या 9:56 हो गए लेडीज एंड जेंटलमैन, इस गाने को बीच में रोकना पड़ेगा बिकॉज मेरे सवाल का टाइम हो गया है। एक बहुत ही कमाल के फैबुलस सिंगर का बर्थडे होता है आज 23 जुलाई को। आप मेरे को बताएंगे इस गाने में उन्हीं की आवाज है, उनका नाम क्या है, ये जो गाना है कौन से सिंगर ने गाया है यार।

व्हाट्सएप करके मुझे बताओ ये जो गाना चल रहा है अभी, इस गाने में कौन से सिंगर की आवाज है, उनका आज बर्थडे होता है। एंड ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग पर्सन, बहुत ही कमाल के पर्सन है और सिंगर भी बहुत ही कमाल के हैं यार। एंड उनको हम मतलब छोटे से देखते आ रहे हैं और उनके गाने तो यार स्कूल कॉलेज टाइम के बहुत ही पॉपुलर रहे। सो अभी राइट हियर मैं यहाँ पे जो गाना प्ले कर रहा हूँ, इस गाने में कौन से सिंगर की आवाज है आपने मेरे को बताना है, अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ अपना सही जवाब पहुंचाना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आज का सवाल, जरा मुझे मैसेज करके बताओ यार ये जो आवाज सुन रहे हो आप ये कौन से सिंगर की है।

0: कमाल।
1: व्हाट्सएप करना है आपने, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर, सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9837896896। कौन सा ये जो गाना चल रहा है, इस गाने में कौन से सिंगर की आवाज है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हुक्का मार ट्रैक है, अक्षय कुमार पर पिक्चराइजेशन है, बहुत ही अच्छा गाना है, बस आपको बताना है इस गाने में कौन से सिंगर की आवाज है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ आज का क्वेश्चन, दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन, ये मेरा आखिरी सवाल है और यही मेरा, मैं आपको लास्ट मौका दे रहा हूँ, ठीक है? सो वंस अगेन ध्यान से सुनो।

चलो व्हाट्सएप करो मुझे अपने नाम के साथ अपना सही जवाब 9837896896 पे। अगर आप देंगे सही जवाब तो आज की सुबह बनेंगे आप सुपरस्टार। मैं वेट कर रहा हूँ आपके मैसेजेस का जी। फटाफट व्हाट्सएप कर रहे हो ना मुझे आप। चलो आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेजेस। आने वाला गाना फ्रॉम द फिल्म बार बार देखो, पिक्चर का नाम है बॉस। बादशाह नेहा कक्कड़ की आवाज, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक। एंजॉय करिए इस गाने को आरजे आनंद के साथ। 10 बजने को है स्टेशन क्लॉक में।

0: क्या गाना था यार, What a song. Amazing track, मैं आपको बताने आ गया हूँ टाइम स्टूडियो की घड़ी में. वक्त हो रहा है कितना बाजी, 10:01. गुड मॉर्निंग.
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया.
2: अरे आनंद इज बैक.
3: आवश्यक सूचना, 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है. पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है. पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है. अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा. किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें. निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली.
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे. हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना. आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त.
5: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा.
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा. डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है. एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा.
8: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी.
9: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने. तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए.
0: क्या बात है जी, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही फैबुलस है. बहुत ही कमाल के सिंगर का बर्थडे होता है. 10:03 हो गए, 23 जुलाई है आज, यानी 23 तारीख हो गई है. और आज की सुबह मैंने आपसे बहुत ही सिंपल सवाल पूछा था यार, दिस इज वेरी वेरी इजी, मतलब एकदम हलवा जलेबी टाइप था ये. ये कौन से सिंगर के वास्ते यही पूछ रहा था मैं. किसने दिया है सही जवाब, डेफिनेटली बताऊंगा आपको. आप मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसे. अभी तो पाजी मैं हूं आपके साथ 10-5 मिनट, डोंट वरी, आप टेंशन ना लो. जिन जिन के बर्थडे विश आए हैं वो डेफिनेटली यहां पर बोल के जाऊंगा. उससे पहले मैं आपको बता दूं फटाफट से एक कड़क अपडेट लोकल फॉर वोकल से जुड़ी हुई. 30 जुलाई से आप सभी को पता है सावन, पवित्र सावन की जो है शुरुआत हो रही है, और ये पूरा एक महीने तक चलने वाला है, जिसको लेकर नगर निगम ने जो है अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं. शहर के जो प्रमुख शिव मंदिर हैं, जो कांवड़ यात्री के जो मार्ग हैं, वो विशेष उसमें साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई प्रॉब्लम ना हो. स्पेशली साफ सफाई का विशेष कर ध्यान रखा जा रहा है. श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो है मंदिरों के आसपास जो पेयजल है वो स्वच्छता के साथ और एकदम साफ सुथरे जो है उनको सारी सुविधाएं वहां पर आसपास मिले, तो उन सारी व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान जो है वो रखा जा रहा है, ताकि जल अभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े. चाहे डेली रोड हो या कांच रोड हो, हर तरफ जो है काम चल रहा है, बहुत अच्छी से जो है तैयारियां चल रही है. आपको भी पता है आने वाली 30 जुलाई से पवित्र सावन माह की जो है शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर मुरादाबाद जो है पूरी तरीके से जुट गया है उनके भव्य स्वागत में. बहुत ही बढ़िया यार, ये एक अच्छी चीज है. अपना शहर जो है बहुत एक्टिव रहता है इन चीजों में, नो डाउट. मैं लौट कर आता हूँ. अभी एक और चीज जो आपको बतानी, आई मीन आज का जो हमारा सुपर स्टार है वो कौन है, उसका नाम, और हो सकता है उनको हम कॉल पे भी ले. 10:05 हो रहे हैं. इस गाने में जो आवाज है ना, उन्हीं का आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एंड उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूँ कौन है वो कमाल के फैबुलस सिंगर. उनका नाम आप मुझे अगर बता सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया. 9837896896 ये स्टूडियो का नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज अभी भी कर सकते हैं. एंड मैं फटाफट से फिगर आउट करता हूँ कौन है आज की सुबह हमारे शो का लकी वाला सुपरस्टार. अगर आप में से कोई एक हो सकता है बन जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फोन के जरा करीब रहना यार, क्योंकि आप में से ही कोई एक बंदा होगा जो हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्ट होगा अभी जरा सी देर में. तो आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, ऐसे ही जुड़े रहो और सुनते रहो बिंदास मॉर्निंग.

0: क्या बात है यार, मेरा जाने का टाइम भी हो गया है। बहुत ही अच्छा से गाना भी आपने सुन लिया है। जवानी तो इश्क होना है, इसी का गाना था ये। चुनरी चुनरी रिक्रिएट किया गया गाना, बहुत ही बढ़िया, नो डाउट। चलिए गाइस, अभी मेरा जाने का समय हो गया है। मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन क्या करें बॉस, जाना तो पड़ेगा। अगर लौट के आना है तो उसके लिए जाना भी पड़ेगा यार। कौन से कमाल के सिंगर की आवाज थी, यही मैं आपसे पूछ रहा था। एंड एब्सोल्युटली बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं आज की सुबह। आप लोगों ने भाई साहब कमाल कर दिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड आज हमने अपने लकी कॉलर को कनेक्ट करने की कोशिश भी करी, वाला अनफॉर्चुनेटली उनसे हमारा कनेक्शन बन नहीं पाया। आज की सुबह जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया था उनका नाम बता दूं आप में से कोई एक है जो है आज हमारे शो के लकी वाले विनर। कौन हो सकते हैं बता दूं क्या यार? क्या कह रहे हो भैया, सही जवाब तो मैंने भी दिया। अरे सबने दिया यार, सबने बहुत अच्छे जवाब दिए, नो डाउट, सबको पता है ये किनकी आवाज है। बहुत सारे लोग तो तुक्का भिड़ा रहे हैं, उनका भी जवाब सही हो गया यार। लेकिन आज की सुबह सबसे पहले मुझे राइट आंसर आया यहाँ पर शिवांगी का, इन्होंने मुझे सही जवाब दिया है। एंड ये इस वक्त जो है दिल्ली रोड पर निकल रही है अपने ऑफिस के लिए। कह रही है आनंद मैंने जल्दी जल्दी मैसेज टाइप कर दिया है बट ये कॉल नहीं उठा पाई, शायद ऑफिस पहुंच गई होंगी। कांग्रेचुलेशन जी, आप जो आज की सुबह बनती है हमारी शो की सुपरस्टार। थैंक यू शिवांगी जी, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर। हिमेश रेशमिया, आज उनका होता है हैप्पी वाला बर्थडे, तो एक बार मिलकर बोलो
1: हैप्पी बर्थडे।
0: अच्छा, ये हैप्पी बर्थडे उनके लिए भी बनता है जिनकी आज डॉटर का बर्थडे है। मेरे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, सर आज मेरा बर्थडे, मेरी सिस्टर का बर्थडे, किसी ने लिखा आज मेरी डॉटर का बर्थडे, तो सबका बर्थडे विश करना तो बनता है। फिलहाल चंदेल साहब मेरे साथ जुड़े हैं। हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, वेरी गुड मॉर्निंग, लिखते हैं टुडे इज माय डॉटर बर्थडे एंड आप एक विश प्लीज जरूर करिएगा, आज मेरी बेटी 1 ईयर की होगी। ओ माय गॉड, वाओ, कांग्रेचुलेशन, सो क्यूट यार, इन्होंने फोटो भी शेयर की है, बहुत ही प्यारी है यार आपकी बेटी। एंड मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं इनको, बहुत ही प्यारा नाम है यार इनका। तो आरजे आनंद की तरफ से हमारे पूरे एफएम एंटायर फैमिली की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं चंदेल साहब, आपकी डॉटर को बहुत बहुत बधाइयां, मिनी मिनी कांग्रेचुलेशन। हमारे तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब सारा प्यार एंड बहुत सारी बेस्ट विशेस। एंड बाकी हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आप सभी को आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं, स्पेशली चंदेल साहब आपकी डॉटर को बहुत सारी बेस्ट विशेस हमारे पूरे एफएम परिवार की ओर से। मेरी तरफ से चलो जी, जिन लोगों का आज बर्थडे होता है वो बॉलीवुड के धाकड़ वाले हीरो यानी हिमेश रेशमिया के साथ हीरो भी हैं, सिंगर भी हैं, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। जोरदार तालियां बाकी आप सभी के लिए। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, जो लोग अपना बर्थडे मनाते हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए फिलहाल जाने का समय हो गया है, जाना तो पड़ेगा यार, है ना। फिलहाल निकलते हैं, जल्दी आपसे मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे 10:11। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, ढेर सारे लोगों ने मैसेज किए एंड बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं ज्यादा नाम नहीं ले पाऊंगा लेकिन मैं फटाफट से वॉइस नोट प्ले कर
2: राधे राधे आनंद जी, जो म्यूजिक चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी। इसको हिमेश रेशमिया ने गाया है, ये फिल्म खिलाड़ी 786 मूवी से।
0: बिल्कुल क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एकदम राइट आंसर दिया। रिजवान खान साहब कह रहे हैं गाना समझ में नहीं आया था आनंद जी, लेकिन शायद हिमेश रेशमिया की आवाज है। बिल्कुल सही जवाब, आपने तुक्का भी बढ़िया बढ़ा लिया है। ये ललिता कश्यप नवी नगर से सही जवाब दे रही है, बनारस से मेरे साथ जुड़े थे मोहसिन अंसारी जी। मैंने कहा था ना ऐसी कौन सी चीज जिसकी परछाई नहीं दिखाई पड़ती, तो ये लिख रहे हैं हवा। वैसे कुछ और भी आंसर है मेरे भाई। लक्ष्मी जी सूर्य नगर से जुड़ी है एंड ये हमारे पास मैसेज आ रहा है चंदन नगर से डीके रोड़ा जी का, लिखते हैं आनंद जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, ये मेरे पास रमन का मैसेज आया है। टीचर कॉलोनी से समीर अब्बासी सही जवाब दे रहे हैं एंड इसके अलावा मेरे पास और भी ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं यार, थैंक यू वेरी मच। ये लक्ष्मी देवी एक और है जो जुड़ गई है माता मंदिर से, रिहाना से जवाब दे रही है। इसके अलावा दुर्गेश सैनी जुड़े हैं कल्याणपुर से, ये हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मी कश्यप, संतोष जी, साथ में बबली एंड गीता जी, थैंक यू वेरी मच। रणवीर सिंह जेठालाल जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मनोज कुमार जुड़े हैं बुद्धि बिहार से, एक मेरे पास मैसेज पहुंचा है, हाय वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम वेरी गुड। एंड इन्होंने एक वॉइस नोट भी मेरे साथ शेयर किया है एंड ये कहीं ट्रैफिक में लग रहे हैं मुझे।
3: मैं राजवीर सिंह गोविंद नगर का
0: जी, राजवीर जी स्वागत है।
1: भैया यहाँ गांगन तरा पे संभल चंदोसी वाले पे इतना जाम लगा पड़ा है, 15 मिनट मुझे खड़े हुए हो गए और अभी पता ना कितनी देर में खुलेगा, पूरा जाम है, फुल जाम है, जो इधर आने वाले हैं वो इधर को ना आए।
0: अरे भैया बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए आपने फोटो शेयर करके।
1: मैं राजवीर सिंह जी, गोविंद नगर का। राजवीर जी जाम में फंसा पड़ा हूँ।
0: अरे राजवीर जी जाम में फंसे हुए, कोई बात नहीं, आपके जाम को जो ये असर है ना इसको थोड़ा कम करते हैं अच्छे गाने चलाकर। बाकी प्लीज आप लोग इधर से अवॉइड कीजिए, उन्होंने बताया बहुत भसड़ मची हुई है, मैं फोटो में देख पा रहा हूँ बहुत भयंकर जाम है। मैसेज आ गया मेरे पास, कशिक का लिखती है, आनंद आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लग रही है आज, ओ माय गॉड आज तो जुकाम हो रहा है यार। हाय गुड मॉर्निंग बीबी राधिका जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक मैसेज आ रहा है सहारनपुर से, लिखते हैं हाय आनंद ब्रो, हैप्पी थर्सडे मॉर्निंग, स्टे ब्लस, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच, कहा एंजॉय कर रहा हूँ यार, जुकाम ने ना ऐसे पकड़ के रखा है, मैं क्या बताऊँ। ये लिखते हैं ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो झूठ होकर भी सच्चे होने का दिखावा करते हैं, बट पता नहीं चलता ना यार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं निखत फातिमा। हाय निखत, गुड मॉर्निंग। रेडियो वाला आनंद को विक्की सागर गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं। चमन लाल साहब जी जुड़ चुके हैं आज की सुबह। इसके अलावा परिनीति का मैसेज आ रहा है एंड साथ में रमन एंड प्रिया, ये भी मेरे साथ जुड़े हैं। टेक्स्ट मैसेज की अगर बात करूं तो हाय आनंद सर, आप कैसे हैं? आपको जुकाम हो रहा है तो आप अदरक वाली चाय पी लीजिएगा, आपका जुकाम सही हो जाएगा। ओ माय गॉड थैंक यू सो मच यार, सो स्वीट। मुस्कान, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल रेमेडी। एक और मैसेज आ गया मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम करण है। आनंद तुम एक काम कर सकते हो, अच्छा सा काढ़ा बना के पी सकते हो मेरे भाई, मैं आपको इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहा हूँ रेसिपी। ओ माय गॉड वाव यार, थैंक यू सो मच, सो स्वीट यार। चलो करण औजला के इसी गाने के साथ मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, टेक केयर। आज गुरुवार है, कल फ्राइडे है, यानी कि छुट्टी आने में सिर्फ थोड़ा सा दिन बचा है, वीकेंड आने वाला है, आप इंजॉय करते रहिए अच्छे गाने, आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट। जोरदार तालियां आप सभी के लिए, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। देखो यार मैं तो जुकाम का शिकार हो गया हूँ, आप प्लीज मत होइए, मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है, तो ऐसे में अपना खास ख्याल रखिए, ठीक है? गर्मी सर्दी का असर बहुत जल्दी होगा, कहीं बाहर से आ रहे हैं तो तुरंत पंखे में और एसी में मत जाइए, और अगर आप एसी और पंखों से निकल के तुरंत धूप में जा रहे हैं तो ऐसा ही मत कीजिए, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में खुद को रखिए पहले, उसके बाद ही कहीं निकलिए, ठीक है जी? फिलहाल ढेर सारा पानी पीते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ढेर सारी बातों के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगा पे, आपकी फेवरेट प्रोग्राम खुशी आ गई, एंजॉय कीजिए उसके साथ नेक्स्ट वाला शो। बाय बाय।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट FM रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
3: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
0: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: सुबह दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नई सुबह, नए किरण, नई उम्मीद और ढेर सारे मुस्कुराहटों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजी खुशी और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला सिर्फ 89.6 पर। दोस्तों, आज का पॉजिटिव थॉट बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर इसे अपने जिंदगी में उतार लेना तो सचमुच हर दिन खूबसूरत बन सकता है। एंड खुश रहने के लिए ना, एक बात पर जितना ज़रूरी नहीं होता ना, कभी कभी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। मतलब खुश रहने के लिए हर बात पर जीतना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तो बस आज इस मुस्कान के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए, चाय की चुस्की हो, सफ़र की रफ्तार हो या फिर काम की शुरुआत। मैं आपके साथ रहने वाली हूँ 12 बजे तक और आपके सुबह को बनाऊंगी और भी ज़्यादा शानदार। इसीलिए दोस्तों मुस्कुराइए, क्योंकि अच्छी सुबह की शुरुआत अच्छी सोच से होती है और अच्छी सोच की शुरुआत आपके अपने मॉर्निंग मसाला से होती है। तो मुस्कुराइए आप और शुरू करते हैं आज का सफ़र ढेर सारी मस्ती, पॉजिटिविटी, शानदार गानों और आपकी प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो आप भी अपने मैसेज हमें पहुँचाइएगा, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। दोस्तों आज 23 जुलाई है और दिन बहुत ही अच्छा है, थर्सडे का, गुरुवार का दिन है आज। और समय मैं आपको बताती हूँ 10:24 हो चुके हैं, 10:24। और एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आज की मॉर्निंग दिलजीत दोसांझ की बड़ी प्यारी सी आवाज में, ये गाना जो आपका दिल जीत लेगा, तो सुनिएगा।
1: मिक्सिंग इन द हाउस

रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

क्या बात है दोस्तों। देखिए सुबह सुबह सभी के घर में रेडियो ऑन हो जाता है, जैसे ही आंखें खुलती हैं घड़ी में 6 बजते हैं और आपके घर में रेडियो शुरू हो जाता है। और ये प्यारा सा गाना अभी आपने सुना, सजन रेडियो बजाइयो जरा, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी टॉप लाइट से। ये प्यारा सा गाना आपने सुना कमाल खान साथ में अमित मिश्रा की खूबसूरत सी आवाज में, प्यारा सा ट्रैक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला शो। आज की सुबह थोड़ी सी स्पेशल, थोड़ी इमोशनल और ढेर सारे ग्रेटिट्यूड से भरी है, क्योंकि आज 23 जुलाई है यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, अगर रेडियो ना होता तो कितनी यादें अधूरी रह जाती। सुबह की वो प्यारी गुड मॉर्निंग, दिल छू लेने वाले सॉन्ग, जरूरी अपडेट, क्रिकेट की लाइव कमेंट्री, त्योहारों की रौनक और अपनों की फरमाइशें, इन सब को एक धागे में पिरोने का काम रेडियो ने ही किया है। और आज ही के दिन 23 जुलाई 1927 को मुंबई से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने भारत का पहला ऑफिशियल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया था। यही वो ऐतिहासिक पल था जिसने भारत में ब्रॉडकास्टिंग की नई जर्नी शुरू की। इसके बाद 1936 में ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी अस्तित्व में आया और फिर रेडियो देश के हर कोने तक पहुंचने लगा।

प्यार होता है। आज मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी अपने सभी प्यारे लिसनर्स को। आपकी फरमाइशें, आपके मैसेज, आपके कॉल्स और आपका एलिगेंट लव, ये हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि अगर आप सुनने वाले ना होते तो हमारी आवाज़ भी अधूरी रह जाती। तो दोस्तों, आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे पर उन सभी रेडियो जॉकीज, अनाउंसर, प्रोड्यूसर, इंजीनियर और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हर इंसान, जी हाँ, जो इतनी मेहनत करते हैं, हीरो को सलाम करें जो दिन रात मेहनत करके हमारी जिंदगी में इमोशन, कनेक्टिविटी और पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। रेडियो जॉकी इज नॉट जस्ट ए मीडिया, इट इज एन इमोशन, एक ऐसी आवाज जो कानों से होकर सीधे दिल तक पहुंचती है। और मैं आपकी अपनी आरजी खुशी और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला शो। तो दोस्तों, करेंगे आपसे बहुत सारी बातें, अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत कुछ आपसे शेयर करना है मुझे। और आप भी अपने मैसेज हमें पहुँचाइएगा, नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837 8 9 6 8 9 6। तो चलिए दोस्तों, सिलसिला शुरू करते हैं। आपके जो खूबसूरत संदेश यहाँ पर आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। इतने प्यार से आप मैसेज पहुँचाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, एंड दिल से बहुत सारा थैंक यू। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज पहुँचाया है सहारनपुर से सैयद मंसूर जी ने, साथ में इनकी पूरा परिवार है जो इस वक्त हमें रेडियो पर सुन रहा है, आपका धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, आदाब नमस्कार आरजे जी, राशिद हुसैन अंसारी जी का मैसेज हमारे पास आया है। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, आदरणीय प्रसारक जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं ताज मोहम्मद अंसारी जी, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। कहते हैं आपका तहे दिल से शुक्रिया, मोस्ट वेलकम सर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान जी का, आरजी खुशी जी को हमारा प्यार भरा आदाब, आपको भी आदाब सर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा जी का, बबलू साहू का। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये हमें मिला है विकास नगर से पूजा जी का, और ये कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसे हैं, आपके ब्लेसिंग्स हैं, आपका प्यार है, तो हम ठीक हैं। जब आप सब हमें इतना प्यार करते हैं ना, तो फिर हमें क्या हो सकता है, हाँ बताओ मैनू। चलो एक गाना सुनो, मैं उसके बाद अभी आपसे मिलती हूँ, तब तक आप भी मुझे अपने मैसेज पहुँचाइएगा, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हाँ, मुस्कुराने में ना कोई भी कंजूसी नहीं करना, ठीक है।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नेक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पी या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो चल रहा है मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, आज बहुत ही खूबसूरत सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल रिफ्रेशमेंट डे। जी हाँ, रिफ्रेशमेंट डे आज सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय जलपान दिवस। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है ये हम आपको बताएंगे। आप बस यूं ही हमें ध्यान से सुनते रहिएगा, बने रहिए, चिपके रहिए खुशी के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। तो दोस्तों, कहते हैं अच्छे दिन की शुरुआत अच्छे जलपान से होती है। जलपान यानी सुबह का नाश्ता, जो सुबह पेट भरने के लिए नहीं बल्कि पूरे दिन शरीर को ऊर्जा देने के लिए सबसे ज़रूरी भोजन जो होता है ब्रेकफास्ट माना जाता है। आखिर इस दिन को क्यों मनाते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि सुबह का नाश्ता कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग बिना नाश्ता के घर से निकल जाते हैं, जिससे थकान, कमजोरी और ध्यान लगाने में ना परेशानी हो सकती है। तो हेल्दी जलपान में आप शामिल कर सकते हैं क्या क्या, मैं आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट में पोहा बना सकते हैं, जल्दी भी बन जाता है, हेल्दी भी होता है। एंड उपमा बना सकते हैं दूध या दही। एंड अभी जैसे मौसम चल रहा है तो मौसमी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या फिर अपनी पसंदीदा पौष्टिक प्रोटीन जो आपको पसंद है। एंड दोस्तों, याद रखिए, जो सुबह अपने शरीर को सही ऊर्जा देता है वही पूरे दिन जोश और उत्साह से भरा रहता है। तो आज आप इतने खूबसूरत दिन पर, जी आज इतना प्यारा सा दिवस मनाया जाता है जलपान दिवस पर, एक छोटा सा संकल्प लीजिए, नाश्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। और अपने परिवार को भी हेल्दी ब्रेकफास्ट की आदत अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैंने देखा है कई बारी ऐसा हो जाता है, लोग सुबह का ब्रेकफास्ट जो है ना वो स्किप कर देते हैं, है ना, क्योंकि वो जल्दी नहीं उठ पाते हैं, देर से उठते हैं तो सारे काम देर से ही होते हैं। और फिर नाश्ता करने का टाइम क्या होता है वो निकल जाता है, क्योंकि ऑफिस भी टाइम पर पहुँचना होता है, वरना तो फिर क्या होगा, बॉस की डांट भी सुनने को मिल सकती है। तो इसीलिए आप फिर क्या करते हैं, हाँ, कई जो लिसनर्स हैं हमारे वो घर से ही जाते हैं जल्दी जल्दी कि हम बाहर ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, वो समोसा, दाल, जलेबी, ये सब नाश्ता कर वो ऑफिस पहुंचते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना ज़्यादा, तो फिर थोड़ा सा ऑयली सुबह सुबह मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो डाइट के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप सुबह सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना फेवरेट हेल्दी ब्रेकफास्ट बना सकते हैं घर में, लेकिन उसके लिए आपको जल्दी उठना होगा। एवरीवन, जब आप जल्दी उठेंगे तभी आप अपने सारे काम टाइम पर कर पाएंगे। और मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ दोस्तों, यहाँ पर वक्त हुआ है 10:52। दोस्तों, नेशनल रिफ्रेशमेंट डे की शुरुआत, ये जो दिन है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। जी हाँ, पहली बार इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य बहुत ही प्यारा है, हमें अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ पल निकालें हम खुद के लिए, एंड खुद को थोड़ा सा आराम दें और किसी ठंडे ताजगी भरे, जैसे लाइक मैं आपको बताती हूँ, इस गर्मी के मौसम में आप नींबू पानी पी सकते हैं, है ना, उसके अलावा कोल्ड कॉफ़ी, फ्रूट्स, जूस, लस्सी, छाछ या फिर कोई हेल्दी ड्रिंक्स जो आपको आपके दिन को तरोताज़ा बना दे। और अपने दोस्तों, अपनी बॉडी को ना हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, और पानी पीते रहें। और अभी हमारे श्रोताओं के जो यहाँ पर लगातार कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं ना, तो उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। मुझे पता है आप सब इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है सहारनपुर से, ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवली जी। कहते हैं, गुड मॉर्निंग आरजी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, हार्दिक अभिनंदन है आपका, थैंक यू।
उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है ललिता कश्यप जी का नवीन नगर मुरादाबाद से। कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसी हैं? एंड आज हिमेश रेशमिया जी का बर्थडे है, तो उन्हीं का एक गाना हमें सुनवा दीजिएगा, झलक दिखला जा। ओके जी, बिल्कुल सुनवाते हैं ये गाना आपको। एंड उनकी भी जर्नी के बारे में जानेंगे, हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है मुंबई महाराष्ट्र से बबलू सैनी जी का। बबलू जी कहते हैं, खुशी जी जय श्री राम, कैसे हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया हैं सर हम तो। तो दोस्तों, आप भी मैसेज पहुंचाने में ना पीछे मत रहिए, फटाफट से मैसेज पहुंचाइए। एंड मैं पहुंचाती हूँ आप तक एक बहुत ही प्यारा गाना आज की मॉर्निंग, आप इंजॉय कीजिएगा।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है दोस्तों, इतना बेहतरीन गाना आपने अभी सुना हिमेश रेशमिया जी की खूबसूरत सी आवाज में, और इतने प्यार से आपने हमें बुलाया तो हम भी चले आए आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। और अभी जो गाना आपने सुना सुपरहिट ट्रैक झलक दिखला जा, वैसे आज का दिन हिमेश रेशमिया जी के लिए बेहद खास है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। दोस्तों, हिमेश रेशमिया जी एक ऐसा नाम जिसने अपनी अलग आवाज और अलग अंदाज से बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई, संगीतकार के रूप में शुरुआत की, फिर गायक बने, अभिनेता बने और करोड़ों दिलों की धड़कन बन गए। तेरे नाम आशिक बनाया आपने, झलक दिखला जा, तेरा शुरूर जैसे न जाने कितने सुपरहिट गानों से उन्होंने संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई।
1: सारा दिन जब मैं तेरे कोल न होवां।
0: और दोस्तों, मैं आपको वक्त भी बता देती हूँ, समय हुआ है अभी 11:05। दोस्तों, हिमेश रेशमिया जी का जन्म 23 जुलाई 1973 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता बिपिन रेशमिया जी गुजराती फिल्म के संगीत निर्देशक थे। संगीत का माहौल उन्हें बचपन से ही मिला और यही जुनून आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। साल 1998 में उन्होंने फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बतौर संगीत निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद तेरे नाम 2003 का संगीत इतना सुपरहिट हुआ कि हिमेश रेशमिया जी रातों रात हर दिल की आवाज बन गए। फिर आया उनका सिंगिंग का सफर, आशिक बनाया आपने, झलक दिखला जा, तेरा शुरूर, हुक्का मार और साथ में शकला का बूम बूम जैसे कई गानों ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। उनकी नाक से गाने की जो अनोखी शैली उस दौर के सबसे ज्यादा चर्चा में रही, लाखों लोग उन्हें पसंद किया करते थे दोस्तों, और अभी भी करते हैं। सिर्फ संगीत ही नहीं, उन्होंने आपका शुरूर, कर्जदा, एक्सपोजर जैसी फिल्म में अभिनय भी किया। इसके अलावा कई रियलिटी शो में बतौर जज और मेंटोर नए गायकों को आगे बढ़ाने का मौका भी दिया। दोस्तों, हिमेश रेशमिया जी की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर टैलेंट के साथ मेहनत और आत्मविश्वास हो तो अलग पहचान बनाना संभव है। और आज उनके जन्मदिन पर उनके शानदार सफर को सलाम करते हैं हम, और सुनते हैं एक और उन्हीं का सुपरहिट ट्रैक मॉर्निंग मसाला शो में। लेकिन आपके जो मैसेज आए हैं मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ, उनके बिना हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है आप इंतज़ार कर रहे हैं और खुशी आपकी दिल की आवाज़ समझ जाती है। और हमारे पास यहाँ पर वॉइस नोट भी आया है भूपि शर्मा जी का, तो चलिए सुन लेते हैं उनकी आवाज़ क्या पहुँचाते हैं सर आज की सुबह।
2: कैसे हैं आप? राधे राधे, सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला जे खुशी के साथ। मैं आपका दोस्त भूपि शर्मा, नगर पंचायत पाक बड़ा से बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। जिंदगी में हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है, बस उसे पहचानने वाला ही सफल हो जाता है। स्वस्थ, सुखी एवं सुरक्षित रहें और सुनते रहें मॉर्निंग मसाला और जे खुशी के साथ। नमस्कार, और भेजते रहें अच्छे अच्छे मैसेज 98-378-96-896 पर। नमस्कार, राधे राधे।
0: आपको भी राधे राधे भूपि शर्मा जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना वॉइस नोट पहुंचाया है। एंड आज आपका जो अंदाज था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, मुझे ऐसा लग रहा था कि सर शायद कोई मंत्र पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छा था। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आया है। अस्सलाम वालेकुम खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और इन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं कि जीवन में कुछ भी एक तरफा नहीं चलता, यदि आप लेने के इच्छुक हैं तो आपको देना भी सीखना होगा, फिर चाहे वो प्रेम हो, पैसा हो या आदर सम्मान हो। एग्जैक्टली राइट सर, क्योंकि जो हम देते हैं रिटर्न में वही हमें मिलता है, चाहे वो प्यार हो, सम्मान हो या फिर वो धोखा हो। और इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट हमें की है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। बहुत प्यारा गाना है, बिल्कुल सुनवाएंगे। और ये मैसेज हमें फिरोज सैफी जी पहुंचाते हैं अपना। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफिया मदन अंसारी जी का, साथ में रही जुला अंसारी जी भी हैं। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। एंड ये कहते हैं आप अपने फेवरेट गाना कोई भी प्ले कर दीजिएगा। शुक्रिया सर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, एंड ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं आज की सुबह। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, कहते हैं आरजे जी हम आपको बहुत मिस करते हैं, और आपने जो बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले किया है वो भी बहुत ही प्यारा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है सनी का, इन्होंने हाय हमें पहुँचाए हैं, हेलो। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर सपना जी का, सपना भूपी शर्मा जी का, नगर पंचायत बागवाड़ा से, कहती हैं राधे राधे खुशी जी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, कहती हैं कि अपने लिए हमेशा अच्छा सोचिए, अपने लिए हमेशा अच्छा सोचिए, गलत तो दुनिया सोच ही लेती है। एग्जैक्टली राइट मैम, आई एग्री विद यू। हमें ना एक्चुअली क्या होता है, हम सबके प्रति अच्छी भावनाएं रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। तो मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों, जैसे मैम ने अभी कहा कि आप अपने लिए अच्छा सोचिए एंड बाकी सब कुछ अच्छा होगा। और जो लोगों की थिंकिंग होती है वो सबकी एक जैसी नहीं होती है, कुछ अच्छा ये भी होते हैं तो थोड़े से कुछ नेगेटिव भी होते हैं, बट हाँ अगर आप अच्छे हैं ना तो सामने वाले भी अच्छे हो जाएंगे। और एक ट्रैक सुनना चाहती हैं, मुस्कुराने की वजह तुम हो, रियली थैंक यू सपना जी। इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए बबली अंजान जी का, एंड गीता कश्यप जी का, लक्ष्मी कश्यप जी हैं, संतोष कश्यप जी हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। दोस्तों आप भी अपने मैसेज पहुँचाइएगा, बिल्कुल भी कंजूसी मत करो, जल्दी से पहुँचाइए, इंतज़ार कर रही हूँ मैं आपका। इतना भी आलस ठीक नहीं होता, माना कि आप काम में बिजी हैं, थोड़ा सा वक्त तो मेरे लिए भी निकाल लीजिए ना।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
0: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला शो आरजे खुशी के साथ। और सच में दोस्तों, मुस्कुराने की वजह तो आप हैं, नो डाउट, क्योंकि जब आप सबके यहाँ पर मैसेज आते हैं ना, तो खुशी के चेहरे पे ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आ ही जाती है, मेरा दिन बन जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन भी खूबसूरत होगा। दोस्तों, आज 30 जुलाई है और आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत ही गौरवशाली है। आज हम याद कर रहे हैं दो ऐसे महान सपूतों को जिन्होंने अपने विचार और साहस से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लड़ाई को नई दिशा दी। अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद और लोकमाननीय बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भवरा गांव में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही संकल्प लिया था कि अंग्रेज उन्हें कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। जब उनसे नाम पूछा गया तब उन्होंने बताया स्वतंत्रता और पिता जेल। यही वजह थी कि पूरा देश उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानने लगा। वहीं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म भी 23 जुलाई 1956 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, जन जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उनका प्रसिद्ध नारा आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक जी ने शिक्षा, पत्रकारिता और समाज जागरण के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवजी महोत्सव को सार्वजनिक रूप से देकर लोगों को एकजुट किया और आज़ादी की अलख जगाई। दोस्तों, एक ने कलम से क्रांति की मिसाल जगाई तो दूसरे ने हौसले और साहस से आज़ादी की लड़ाई को नई ताकत दी। दोनों महापुरुष हमें सिखाते हैं कि देश प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। और दोस्तों, आज उनकी जयंती पर हम संकल्प लें कि अपने देश, अपने समाज और अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। चंद्रशेखर आज़ाद जी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को आज उनकी जयंती पर हम उन्हें शशत नमन करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनते हैं खूबसूरत सा देशभक्ति गीत। साथियों, आप भी मुझे अपने संदेश पहुंचाएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बस मैं लौट कर आती हूँ प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

बिल्कुल दोस्तों, मुझे पता है आप मेरे साथ हैं और हम आपके साथ हैं, तभी तो ये रिश्ता दिल से दिल का है। और खुशी आपके साथ है जो आपके लिए एवरी मॉर्निंग ढेर सारी खुशियाँ लेकर आती है। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, शो का नाम मॉर्निंग मसाला है और ये हैपनिंग घुड़ी आपके साथ है जो आपको ढेर सारी हैप्पीनेस देती है। देखो यहाँ पर जो आपके लगातार मैसेज आए हैं ना, मैं सबको शामिल करने वाली हूँ। अब ज़रा मुस्कुरा भी दीजिए। और हमारे पास यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज आया है, ये अपना मैसेज हमें पहुँचाते हैं दुर्गी सैनी जी। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम सर। ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं हमें कल्याण।

कानपुर मुरादाबाद से, और इन्होंने एक गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, तो इस गाने को हम प्ले करने का पूरा प्रयास करेंगे सर। आप बस थोड़ा थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज मेरे पास आया है उमेश कुमार प्रजापति जी का, लोधीपुर मुरादाबाद से। कहते हैं, खुशी मैम गुड मॉर्निंग, आप मुझे गाना ज़रूर सुनवा दीजिएगा फ्रॉम द मूवी सोल्जर से शॉर्ट सो। बस थोड़ा सा और इंतज़ार। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया धनूरी तिलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी जी का। ये कहते हैं, आरजी जी आपको हमारा आदाब, आपको भी आदाब सर। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर राधिका का, और ये कहती हैं गुड मॉर्निंग मैम। मैम राधिका का मैसेज हमारे पास आया, और राधिका कहती है मैम मुझे गाना सुनवा देना। श्योर डियर, थोड़ा इंतज़ार करें आप। उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है, हेलो मैम गुड मॉर्निंग, जिला रामपुर से, रामपुर से तो नहीं लेकिन हाँ ये जिला मुरादाबाद ग्राम बिजना से रिजवान खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ में उस्मान खान जी भी हैं, दीपक भी हैं, और ये कहते हैं खुशी जी हमें नहीं गाना सुनवा दीजिएगा। ठीक है सर, बिल्कुल सुनवाएंगे, थैंक यू आपने हमें मैसेज पहुँचाया है। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, राधे राधे नमस्कार आरजे खुशी, आपको भी राधे राधे सर। ये मैसेज हमें मिला है अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं, और ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं लदावली जिला मुरादाबाद से। दोस्तों इतने सारे मैसेज आपने हमें पहुँचाए हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया आपका। नेक्स्ट मैसेज हमें ललिता जी पहुंचाती हैं नवीन नगर से, थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए दोस्तों और भी मैसेज यहाँ पर लगातार बैक टू बैक आ रहे हैं, उनको भी मैं शामिल करूंगी। उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, हाय मैम गुड मॉर्निंग राधे राधे, मैं अच्छा ये पूजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं नैनीताल से। पूजा जी थैंक यू अपने मैसेज पहुंचाने के लिए, लॉन्ग टाइम के बाद जुड़े हैं आप और अच्छा लगा आपने मैसेज हमें पहुंचाया है। बताइएगा नैनीताल का वेदर कैसा है, ठंडी ठंडी वादियों में आप रहती हैं, थोड़ी सी ठंडक इधर भी पहुंचा दीजिएगा। चलो दोस्तों ये तो हमारे पास पूजा जी का मैसेज आया है, और अभी आप भी अपने मैसेज हमें पहुंचा दीजिएगा। फिलहाल मैं आप तक पहुंचाती हूँ एक बेहतरीन ट्रैक, बहुत ही प्यारा सा मस्त मगन, आप भी हो जाइएगा इस गाने में।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और अभी आपने हरनूर की आवाज में बड़ा खूबसूरत सा ये ट्रैक सुना, तेरे नाल चली हसीन कोयना। और इस खूबसूरत गाने की रिक्वेस्ट में भेजी थी विकी सागर जी ने मुरादाबाद से। नेक्स्ट आपने गाना सुना था फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह से, विशाल मिश्रा की खूबसूरत सी आवाज, कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ। हाँ देखिए, आप सब हमारे लिए बहुत जरूरी है एवरीवन, और अच्छा लगता है जब आप सब हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, आज मतलब 30 जुलाई से शुरू होने वाला है पवित्र सावन माह को लेकर नगर निगम ने अपनी तैयारियां तेजी से शुरू कर दी हैं। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में और कांवड़ यात्रा मार्गों पर विशेष साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिरों के आसपास पेयजल, स्वच्छता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखा गया है। और नगर निगम का उद्देश्य है कि जलाभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छता और सुगम वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो हमारे नगर निगम बहुत ही अच्छा काम कर रही है, तो उनके लिए जोरदार क्लैपिंग तो होनी ही चाहिए। अपने शहर में इतना कुछ स्पेशल और अच्छी चीजें होती रहती हैं मुरादाबाद सिटी में। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दोस्तों, अपडेट के साथ मैसेज भी रीड करना बहुत जरूरी है। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, साथ में शहीद शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं। और ये कहते हैं, मैम गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप खुशी जी? खुशी जी तो हमेशा खुश रहती हैं सर, और हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं हम कि आप सभी ऑलवेज हैप्पी रहें। कहते हैं कि मैम आप गाने बहुत ही अच्छे प्ले करती हैं, शुक्रिया सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी का, ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। उसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है यहाँ पर राशिद नाज जी का, ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर। टेक्स्ट मैसेज भी यहाँ पर आए हैं तो मैं उनको भी जल्दी से रीड कर लेती हूँ। एंड हमारे पास अमरोहा से मैसेज आया है नेहा जी का, और ये कहती हैं मैम गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये कहती हैं कि मैम हम तो खाना खा रहे हैं, आप भी आ जाइए। अरे थैंक यू नेहा, आपने इतने प्यार से हमें कहा। मैम हमारा जो लंच होता है वो थोड़ा लेट हो जाता है, एक्चुअली हम 2 बजे तक कर पाते हैं, बट आपने भरपेट भोजन किया, अच्छी बात है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तभी तो आप स्वस्थ रह पाते हैं ना, बॉडी में एनर्जी भी तो चाहिए। उसके अलावा पिंकी का मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, और ये मैसेज हमें पहुँचाती है प्रकाश नगर से, कहती हैं हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन डियर। तो चलिए दोस्तों अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, एंड आप सभी का वंस अगेन दिल से शुक्रिया, आप सब कार्यक्रम में जुड़े, आपने पार्टिसिपेट किया और इतने अच्छे अच्छे मैसेज पहुंचाए हम तक, अपने दिल की बातें, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती टाइम दिया। दोस्तों ऐसे ही हमेशा ऑलवेज एफएम मुरादाबाद 89.6 को इतना ही प्यार देते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुशी मिलेगी आपको। सी यू सून, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित

0: कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नेते बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर और छात्र विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सदस्य को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए क्योंकि ये सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। श्री बिरला ने कहा कि सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है कि वो नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। बाद में विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद है। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है।

फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ब्रुनेई के विदेश मंत्री प्रिंस अब्दुल मतीन के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डिजिटल नवाचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सिक्किम सरकार ने नामचे जिले में सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए सूचना और व्यवस्था प्रमुख के नेतृत्व में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने इससे पहले ही उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। अब तक सुरंग से 22 शव बरामद किए जा चुके हैं। बचाव अभियान अब भी जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एफएम मुरादाबाद आप सुन रहे हैं और इस स्टेशन पर आप सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कहीं। एक बार फिर से लौट कर आ गए हैं हम आपके दोस्त। और दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है, आज हम उसी डर के बीच दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधा बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ सकते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवाल ने बहुत सी माओ को रोका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर सच है या यह वही बात है जो बार बार दोहराई गई है इसीलिए सच जैसी लगने लगी है। हमारे साथ हैं टीकन भाभी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई है। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया है। सुनीता जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि आपसे जब हमने बात की थी उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बार ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि ने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो कि टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है, शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हो रहे हैं। ऐसे समय में कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। उन सब माओ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है जिनकी बच्चियाँ अभी आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आपकी इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। और आप इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, अब कुछ हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: चलिए सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक चक्र को बिगाड़ देती है?
2: सीधा जवाब नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है, यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे। ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा है फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है। खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहते हैं कि पीरियड्स पर असर नहीं है।
0: यह फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं, अब दूसरा सवाल, बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है।
1: हाँ यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता इस सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं कि जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली है वे आज भी माँ हैं। एक गवाही तो साफ कहती है 2010 में वैक्सीन ली और आज गर्व से माँ है। यह अफवाह को सीधी चुनौती देती है।
1: यह सुनकर थोड़ी राहत मिली क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। पेफवा एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घरों तक पहुंच जाए। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बातें नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
1: घर में यही होता है, पीडियर्स पर खुलकर कौन बात करता है। लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डरने वाली बात आ जाए तो वह मन में बैठ जाती है।
2: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई बड़ी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, पर स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
0: यह बात तो सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशिया समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसीलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों?
2: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा बेहतर होती है, यह बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले, रोकथाम देर से नहीं पहले की जाती।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
2: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है, कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: अब सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
2: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया, जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: अब मुझे लग रहा है कि हमें कितनी सारी बातों को बहस, किसी ने कहा कि आधार पर सच मान लिया।
2: यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बातें सीधे उस पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
0: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बेनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, HPV वैक्सीन से पीरियड बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी माँ हैं। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़की के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसकी कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी के लिए उपलब्ध होना है।
1: जब आप ऐसे एक एक करके बताते है ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब उथल पुथल हो जाता है।
2: इसलिए मैं हमेशा कहती, मुद्दों को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा यह टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
2: ना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है, पर टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वह पूछे क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं, डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वह पूछे क्या मैं इससे आगे चलकर माँ भी नहीं बन पाऊंगी, तो कहो यह अफवाह झूठी है।
0: यह भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो, उन्हें यह महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपाकर नहीं, समझाकर लिया जा रहा है।
1: हमारे यहाँ तो कई बार बच्चे पूछा भी जाता है, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
2: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है, बच्ची को समझाओ कि यह सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि यह किस लिए है, यह भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
0: और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतंत्र होना चाहिए, विशेषकर स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह ना हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वह हंस रही थी, कहती है, अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उसे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने यह भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वह बोली, ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
2: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता।
1: और मैं यह भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात लेकर जानी चाहिए। वहाँ तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भोहे चढ़ा लेते हैं।
2: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बातें जितनी खुलकर होंगी, अफवाह उतनी कम चलेगी।
0: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधारिक जन संदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचाने और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफा किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफा वैश्विक महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
1: यह बात मेरे मन में गहरी बैठ गई। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
2: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है उसी पर सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़े या बांझपन आ जाए कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है?
0: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत, यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यही है एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उसे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य पनप ही नहीं सकती।
2: बिल्कुल, और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदार, मोबाइल वीडियो, यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
1: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है ना पूछना ही बड़ी गलती है।
2: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। यह दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों तो उन्हें जानकारी भी देनी हो।
0: यह बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद संपूर्ण हो।
1: एक बात और मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई पूछने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
2: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि यह रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
0: और यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है, कमाई, बच्चे की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च सब। इसीलिए रोकथाम को महिलाओं का निजी मुद्दा समझना गलत है।
1: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
2: इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ तीनों साथ चले, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुँचे।
0: अब एक छोटा सा अभ्यास, मान लीजिए आपसे कहें, मैंने सुना है HPV टीका लगाने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकी, आपका क्या जवाब होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने साल में पहली बार टीका लिया है और आज माँ हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। यह चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें, HPV वैक्सीन से पीरियड प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, यह बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, यह दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पाँच, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। और छह, डर को दबाइए मत, पर उसका जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
1: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी। पहले

0: स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।
0: तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। फिलहाल इस प्रोग्राम से अब लेता हूँ मैं जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सेहत सही तो लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में हमने बात की थी गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS और पौष्टिक भोजन के बारे में। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज का सवाल है, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया निकल आए तो क्या करना चाहिए? क्या केवल कमजोरी दूर करना ही लक्ष्य है या माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण, IVFCM क्या है और कितनी गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टर इस उपचार पर विचार कर सकते हैं? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद हैं सिहतिया सिंह जी और साथ में टीकन देवी जी। सिहतिया सिंह जी, शुरुआत एक आसान सवाल से करते हैं। पिछले कार्यक्रम में आपने हल्के, मध्यम और गंभीर एनीमिया का जिक्र किया था, एक बार फिर सरल भाषा में समझाइए।
1: जरूर आरजे खुशी, जब खून की जांच में हीमोग्लोबिन 10.9 ग्राम के बीच हो जाता है तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच होता है तो इसे मध्यम एनीमिया कहा जाता है और 7 ग्राम से कम हो जाता है तो गंभीर एनीमिया माना जाता है।
0: यानी जितना कम हीमोग्लोबिन उतना ही ज्यादा चिंता।
1: बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसका असर गर्भवती महिलाएं और उसके गर्भ में पल रहे बच्चों पर पड़ सकता है।
0: तो क्या मध्यम और गंभीर एनीमिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, समय पर पहचान और इलाज बहुत जरूरी है।
0: दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं।
2: यह कहानी है सुनीता की। सुनीता 7वें महीने की गर्भवती थी। कुछ दिनों से उसे बार बार चक्कर आते थे। थोड़ी दूर चलने पर सांस फूलने लगती थी। घर का काम भी मुश्किल लगने लगा था। घर वाले सोचते थे कि गर्भ अवस्था में ऐसा तो होता ही है, लेकिन एक ANC जांच के दौरान खून की जांच हुई। रिपोर्ट में पता चला कि उसे मध्यम एनीमिया है।
0: फिर क्या हुआ?
2: स्वास्थ्य केंद्र में उसकी स्थिति को समझाया गया, आगे की सलाह दी गई, परिवार को भी बताया गया कि यह केवल कमजोरी नहीं बल्कि इलाज की जरूरत वाली स्थिति है। यही वजह है कि नियमित जांच बहुत जरूरी है।
0: सिहतिया सिंह जी, अगर किसी गर्भवती महिला में मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया जाए तो डॉक्टर किन बातों पर ध्यान देते हैं?
1: डॉक्टर सबसे पहले स्थिति की गंभीरता को देखते हैं। अगर एनीमिया आयरन की कमी से है तो उपचार उसी हिसाब से तय होगा। हल्के एनीमिया के मामलों में डॉक्टर इलाज के लिए आयरन की गोली दे सकते हैं, लेकिन मध्यम या गंभीर एनीमिया में आयरन की गोली कम असर या ज्यादा सुधार की जरूरत की स्थिति में डॉक्टर IVFCM जैसे नसों के रास्ते से दिए जाने वाले आयरन का उपचार पर विचार कर सकती है।
0: यानी हर गर्भवती महिला को IVFCM नहीं दिया जाता?
1: बिल्कुल सही आरजे खुशी, IVFCM हर किसी के लिए नहीं, यह एक चिकित्सीय निर्णय है जो जांच और मूल्यांकन के बाद लिया जाता है।
0: अब जरा IVFCM को और आसान भाषा में समझाइए।
1: देखिए, कई बार लोग सोचते हैं कि IVFCM ये कोई अलग दवा है या कोई बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरल भाषा में समझे तो यह शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने का एक तरीका है जिसमें आयरन नसों के रास्ते से दिया जाता है। जब किसी गर्भवती महिला में जांच के बाद मध्यम या गर्भ आयरन या डिफेंसी एनीमिया पाया जाता है या डॉक्टर को लगता है कि बहुत तेजी से सुधार जरूरी है, तब इस विकल्प पर विचार किया जा सकता है।
0: यानी ये सामान्य कमजोरी का इलाज नहीं है।
1: बिल्कुल आरजी खुशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। केवल थकान महसूस होने से किसी को IVFCM नहीं दिया जाता। पहले जांच होती है, खून की रिपोर्ट देखी जाती है, महिलाओं की स्थिति समझी जाती है, उसके बाद ही डॉक्टर को निर्णय लेते हैं।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि IVFCM हमेशा जांच पर आधारित उपचार है?
1: बिल्कुल सही, यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं पहले जांच, फिर सलाह, फिर उपचार।
0: और क्या ये सही है कि IVFCM अपेक्षाकृत कम समय में दिया जा सकता है?
1: हाँ, स्वास्थ्य सुविधा पर डॉक्टर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में यह दिया जाता है। इसके बाद कुछ ही सड़क महिला को देखा भी जाता है ताकि सब कुछ सामान्य रहे।
0: क्या यह अस्पताल में भर्ती होकर ही कराया जाता है?
1: जरूरी नहीं है, लेकिन यह हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर की निगरानी में स्वास्थ्य सुविधा पर ही किया जाता है।
0: तो अपने मन से ये उपचार करवाना ठीक नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं, सही रास्ता हमेशा जांच, डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख में होगा।
2: मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगी, कई बार परिवार डर जाता है कि ड्रिप लगी है तो बीमारी बहुत गंभीर होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। IVFCM को एक प्रभावित उपचार विकल्प के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन यह केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में दिया जाता है।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने सिहतिया सिंह जी। एक बात और, कई श्रोता ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आखिर IVFCM पर विचार क्यों करते हैं?
1: क्योंकि मध्य गंभीर अनीमिया केवल कमजोरी का विषय नहीं है, यह माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसीलिए जब डॉक्टर को लगता है कि आयरन की कमी को जल्द ही प्रभावी तरीके से ठीक करना जरूरी है, तब वह IVFCM जैसे विकल्प पर विचार कर सकें।
2: और मैं यहाँ परिवारों से कहना चाहूँगी कि अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे लेकर डर या अफवाहों में ना पड़े, पहले पूरी जानकारी ले, सवाल पूछे और स्वास्थ्य कर्मी की बात समझे।
0: सिहतिया सिंह जी, क्या IVFCM का उद्देश्य केवल गर्भवती महिलाओं की कमजोरी दूर करना है?
1: नहीं, इसका बड़ा उद्देश्य है माँ और बच्चे दोनों को बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में योगदान देना। जब अनीमिया के समय इलाज होता है तो गर्भावस्था को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।
0: इन्हीं फायदे केवल माँ को नहीं बच्चे को भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इलाज में परिवार की क्या भूमिका है?
2: बहुत बड़ी भूमिका है। पहला, गर्भवती महिला की कमजोरी को गंभीरता से ले। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से महिला को लेकर जाए, उसमें देरी ना होने दे। तीसरा, जांच में साथ जाए। चौथा, गोली समय पर और सही तरीके से लेने में मदद करे। पांचवा, किसी परेशानी की स्थिति में स्वास्थ्य कर्मी से बात कराए। छठा, अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद करे। सातवा, घर में अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए। और आठवा, महिला को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए दोष ना दे।
0: सचमुच एनीमिया का इलाज केवल स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी नहीं, पूरी परिवार की जिम्मेदारी भी है। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जाता है तो क्या आगे भी निगरानी होती है?
1: इलाज के बाद भी फॉलो अप बढ़ जाता है। इलाज के बाद फॉलो अप बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं की पुण्य जांच होगी, आवश्यकता होने पर आगे की सलाह दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी में होती है।
0: यानी उपचार के बाद भी संपर्क बनाए रखना जरूरी है।
1: बिल्कुल सही।
0: तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले IVFCM से जुड़ी कुछ आम धारणाओं की बात करते हैं। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जा रहा है तो उसकी हालत बहुत खराब होगी।
1: गलत। IVFCM निर्णय जांच और चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है। केवल ड्रिप लगाने का मतलब ये नहीं है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है।
0: IVFCM हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए?
2: गलत। IVFCM हर महिला के लिए नहीं है, यह केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जाता है जहां डॉक्टर को इसकी आवश्यकता दिखाई देती है।
0: अगर IVFCM लग गया तो आगे किस जाँच या फॉलो अप की जरूरत नहीं होती?
1: बिल्कुल गलत। फॉलो अप बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपचार के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की सलाह के अनुसार जांच की निगरानी में की जाती है।
0: IVFCM घर पर भी लगवाया जा सकता है?
2: गलत। यह हमेशा स्वास्थ्य सुविधा पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जाता है।
0: अगर किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को IVFCM दिया गया था तो मुझे भी वही उपचार लेना चाहिए?
1: गलत। हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग होती है। उपचार हमेशा उसकी जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय होगा।
0: धन्यवाद। इसके साथ ये प्रोग्राम समाप्त करते हैं और चलते चलते आज की चर्चा से तीन महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। पहली, गर्भावस्था में कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने को नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरी, नियमित ANC जांच और खून की जांच कराइए। तीसरी, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया मिलता है तो स्वास्थ्य केंद्र की सलाह का पालन कीजिए। कुछ स्थितियों में डॉक्टर IVFCM जैसे उपचार पर विचार कर सकते हैं।
2: और मेरी तरफ से एक संदेश, खून की कमी को लंबा मत खींचिए, समय पर जांच कराइए, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए और गर्भवती महिलाओं को परिवार का पूरा सहयोग दीजिए।
1: याद रखिए, समय पर पहचान और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों को बेहतर स्वास्थ्य के परिणाम संभव है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रसव की अवस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया पर, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है। अनुमति, तब तक के लिए हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। नमस्कार।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की।
1: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया, री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के, और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
0: राज्यसभा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले नीट पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने जवाब दिया था कि वो नीट परीक्षा के पेपर लीक सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग रखी है। एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्र के हित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
3: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं कोई थीम भी होती है, तो इस साल की थीम क्या है?
4: हाँ बिल्कुल होती है, और 2026 की थीम बहुत ही खास और समय की जरूरत को समझने वाली है। इस साल की दो मुख्य संदेश दिए गए हैं, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्ट्रेंथ विद साइंस, और ग्लोबल एक्शन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
3: भाभी ये तो बहुत भारी भरकम अंग्रेजी लग रही है, हमारे गांव के लोग इसे कैसे समझेंगे?
4: अरे इसे समझना बहुत आसान है, जब हम कहते हैं स्ट्रेंथ विद साइंस तो इसका मतलब होता है कि हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले किसी अफवाह या सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सही और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर लेते हैं। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में हर कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कहता है ये दवा खा लो, कोई कहता है ये घरेलू नुस्खा अपना लो, लेकिन हर बात सही नहीं होती। और दूसरी बात, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी हर व्यक्ति को इलाज मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गांव में, और इलाज इतना महंगा ना हो कि उसे अपनी जमीन या जेवर बेचने पड़े।
3: अरे भाभी, स्मार्ट स्वास्थ्य दिल्ली के 100 झंडे से चलाए जा रहे हैं, हमारे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई का भी तो यही उद्देश्य है कि लोग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाए और लोगों की जेबों पर से स्वास्थ्य का खर्चा कम हो, उनके सेविंग बचे और बाकी जरूरत के लिए इस्तेमाल हो। पर भाभी आपने एक और शब्द बोला, वन हेल्थ, ये क्या होता है?
4: ये बहुत ही जरूरी सोच है, इसका मतलब है कि इंसान का स्वास्थ्य सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं है, हमारे आसपास का वातावरण, जानवर, पेड़ पौधे सब हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अगर पानी गंदा हो, हवा खराब होगी या जानवरों में बीमारी फैलेगी तो उसका असर इंसानों पर भी पड़ेगा, इसीलिए हमें अपने आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना होगा।
3: भाभी आज के समय में ये दिन इतना जरूरी क्यों हो गया है?
4: क्योंकि आज जानकारी तो बहुत है लेकिन सही जानकारी कम है, लोग इंटरनेट पर कुछ पढ़ लेते हैं और खुद ही इलाज करने लगते हैं, कई बार छोटी बीमारी बड़ी बन जाती है क्योंकि सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं गए। दूसरी तरफ कई तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, जैसे वैक्सीन से नुकसान होता है या कुछ बीमारियों का इलाज घर में ही हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें याद दिलाता है हमें सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए और समय पर डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
3: भाभी ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात आपने की, इसे थोड़ा और समझाइए।
4: इसका मतलब बहुत साफ है, हर व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए और वो भी बिना आर्थिक बोझ के। इसमें क्या क्या शामिल है? रोकथाम, जांच, इलाज और बाद की देखभाल, सब कुछ। लेकिन सिर्फ अस्पताल बन जाने से काम नहीं चलता, जरूरी है कि वहाँ डॉक्टर हों, दवाइयाँ हों और लोग उन सेवाओं पर भरोसा करें।
3: आज के समय में सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या कौन कौन सी है?
4: देखिए, आज दुनिया में कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले आती है जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी। ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम सही खान पान और व्यायाम पर ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी है मानसिक स्वास्थ्य, पहले लोग इस बात पर ध्यान नहीं करते थे लेकिन अब समझ बढ़ रही है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य।
3: जलवायु का स्वास्थ्य से क्या संबंध है?
4: बहुत गहरा संबंध है, जब मौसम बदलता है, बाढ़ या सूखा आता है तो पानी की कमी हो जाती है, खाने की दिक्कत होती है और बीमारियां फैलती हैं। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, कुपोषण, कमजोरी और बीमारियां बढ़ जाती हैं।
3: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में क्या स्थिति है?
4: भारत ने बहुत प्रगति की है लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत और आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी टीवी जैसी बीमारियां भारत में बहुत ज्यादा हैं और जीवन शैली की बीमारियां तो 60% मौत का कारण बन रही हैं। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर सुधार हुआ है लेकिन हर राज्य में समान नहीं है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर है और कई दूर दराज इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है जेब से खर्च, कई लोगों को इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है।
3: इस दिन लोग क्या क्या करते हैं?
4: बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, गाँव में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं जहाँ मुफ्त जाँच होती है, टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, रक्त शिविर होता है, लोग योग, दौड़ और फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इन सब का मकसद है लोगों को जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना।
3: भाभी, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या भूमिका होती है?
4: सबसे अहम भूमिका होती है, हर गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं, जहां HO होते हैं, जहां रोज मर्रा की बीमारियों का इलाज मुफ्त जाता है, बहुत सी दवाइयाँ मिल जाती हैं और बहुत सी जांच हो जाती हैं। इसके बाद प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC पहला संपर्क बिंदु होते हैं। वहाँ अच्छे डॉक्टर, दवाइयाँ और जांच की सुविधाएं होनी चाहिए, साथ ही इलाज सस्ता और सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है भरोसा। अगर लोगों को सिस्टम पर भरोसा होगा तभी वो समय पर इलाज करा पाएंगे।
3: टीकन भाभी, आपने बहुत सही बात कही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC सबसे पहला संपर्क बिंदु है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि वह सुविधाएं पूरी नहीं मिलती या भरोसा कम होता है। ऐसे में लोग सीधे बड़े अस्पताल जाने की सोचते हैं या फिर इलाज टाल देते हैं। इस स्थिति में कैसे सच पाए?
4: आरजे रीना, ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है, सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होती है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र। यही वो जगह है जहां एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहां ANM, आशा कार्यकर्ता और कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं, जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयां देते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे रेफर करते हैं। इसके बाद आती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहां थोड़ी ज्यादा सुविधाएं होती हैं, और फिर जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़े अस्पताल जाएगा तो वहां भीड़ बढ़ेगी और जिनको सच में गंभीर इलाज की जरूरत है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएंगी।
3: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की?
4: बहुत अच्छा सवाल है। सच कहूँ तो समस्या दोनों की है, सुविधा भी और भरोसा भी। कई जगहों पर अभी भी डॉक्टर की कमी है, दवाइयाँ समय पर नहीं पहुँचती, यहाँ जांच की सुविधाएं सीमित नहीं होती। लेकिन सरकार लगातार इन चीजों को सुधारने की कोशिश कर रही है, साथ ही कई बार लोगों के मन में पहले से ही एक धारणा बन जाती है कि सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं होता और वे बिना कोशिश किए ही वहाँ जाना बंद कर देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि आजकल बहुत सी सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं, बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने और उन भरोसा करने की जरूरत है।
3: भाभी, आपने कहा कि सरकार कई योजनाओं के जरिए सुविधा कर रही है, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके।
4: बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की। ये योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, के तहत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है, वो भी बड़े अस्पताल में। इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनता है जिसे दिखाकर आप इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं, जो पुराने सब सेंटर और PHC को मजबूत बनाकर वहां और सेवाएं जोड़ रहे हैं। अब वहां सिर्फ दवाइयां ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य जैसी जांच और सलाहें भी मिलती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, जो इस आयुष्मान भारत का हिस्सा है।
3: आजकल डिजिटल चीजों की भी बहुत चर्चा है, क्या स्वास्थ्य में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है?
4: हाँ, और बहुत तेजी से हो रहा है। अब आभा ID बनाई जा रही है जिसमें आपका पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहता है। इससे फायदे ये होते हैं कि आप कहीं भी जाएं, डॉक्टर आपके पुराने इलाज और रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा UWIN जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जिससे टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाता है और लोगों को समय पर याद दिलाया जाता है कि अगला टीका कब लगना है।
3: भाभी, आपने पहले भी कहा था कि आजकल गलत जानकारी बहुत फैलती है, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं?
4: हाँ, और ये बहुत चिंताजनक बात है। गांव में कई बार ये अफवाह फैल जाती है कि टीका लगवाने से बुखार आता है, कमजोरी होती है या बच्चों को नुकसान होता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे जमाने में तो टीका नहीं लगाया फिर भी हम ठीक हैं। इसलिए आज के बच्चों को भी जरूरत नहीं है। इसी तरह कई लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए इंटरनेट या पड़ोस की सलाह पर दवा लेने लगते हैं बिना डॉक्टर से पूछे।
3: तो इन बातों का सच क्या है?
4: सच ये है कि टीका शरीर को बीमारी से बचाने के लिए होता है। हाँ, कभी कभी हल्का बुखार या दर्द हो सकता है, लेकिन वह सामान्य है और ये दिखाता है कि शरीर अंधे मजबूत बन रहा है। और जहाँ तक हमारे जमाने की बात है तो उस समय बहुत से लोग बीमारियों से मर भी जाते थे, बस हमें पता नहीं चलता था। हाँ, या हमें ये सामान्य मान लेते थे। आज विज्ञान ने हमें ये ताकत दी है कि हम बीमारियों से पहले ही बचाव कर सकें।
3: तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वे इन अफवाहों से बच सकें?
4: सबसे पहले किसी भी स्वास्थ्य जानकारी के लिए भरोसेमंद स्रोत पर विश्वास करें, जैसे डॉक्टर, ANM, आशा दीदी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। दूसरी बात, अगर कोई नई बात सुनते हैं तो उसे तुरंत सच न माने, पहले पूछें, समझें और फिर निर्णय लें। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें। कई बार एक व्यक्ति ही समझदारी पूरे गांव को सही दिशा दे सकती है।
3: भाभी, आपने बहुत गहरी बात कही। क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगी?
4: मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, अपने लिए, अपनों के लिए और अपने समाज के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। नियमित जांच कराते रहें, बीमारी होने का इंतजार मत करें, बचाव करें, सही खानपान और व्यायाम अपनाएं, और सबसे जरूरी है सही जानकारी पर ही भरोसा करें। जब हम अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, जब हम सही जानकारी को अपनाते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना रहे होते हैं।
3: दोस्तों, आज की बात से एक बात तो साफ हो गई, स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं, स्वास्थ्य हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अगर हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा, सही जानकारी को अपनाना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम विज्ञान के साथ खड़े होते हैं तो सही जानकारी अपनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
4: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
4: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
3: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
4: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
3: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
4: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत से लाभ गई और हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। सुनना न भूले FM मुरादाबाद 89.6 MHz।

0: हैदराबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: हाय, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए शो लेकर आ गए हैं सोच बदलो, जो कि अक्सर आप आनंद को और प्राची को ही सुनते थे, लेकिन आज रीना, खुशी और प्राची भी आप सभी के साथ है। हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं सोच बदलो शो में। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सोच बदलो, और आज का सवाल है क्या आज के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे या फिर उन बचपन बदल गया है। तो ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले, यानी कि देखिए, अब बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो हमारा बचपन था और आजकल के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पैम्पर किया जाता है। उनको अगर मतलब थोड़ी सी भी धूल लग जाती है ना तो मम्मी पापा बोलते हैं यार धूल लग गई, इनको साफ करो जल्दी जल्दी, कीटाणु लग गए हैं। लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था, हम कितने धूल मिट्टी में खेलते रहते थे, लेकिन मम्मी फिर भी यही बोलती थी अरे और खेलो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी धरती माँ है और धरती माँ के गोद में तो हमें खेलना ही चाहिए। तो प्राची, मैं तुमसे बोल पूछना चाहूंगी कि तुम क्या कहना चाहोगी।
3: बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पहले जो बच्चे होते थे वो गली मोहल्लों में खेला करते थे। जैसे कि आपने बताया कि हम सबका बचपन ऐसे बीता है और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें वो सारी चीजें मिली जो शायद आजकल के बच्चे मिस कर रहे हैं। पेड़ों पर चढ़ना, और फिर हम जो लोग हार जीत हमारी रहती थी खेल में, और फिर हम लोग मम्मी के पास जाते थे कि इसने मुझे मतलब मैं हार गया, तो मतलब मम्मी हमें समझाती थी हमारी मम्मी कि हार जीत तो होती ही रहती है खेलों में। तो वो सारी चीजें, नेचर के साथ जो हमारा लगाव था, वो आजकल पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मिस हो चुका है। एक तो हम देख रहे हैं कोविड टाइम आया, और भी बहुत सारी ऐसी पैंडेमिक होती ही रहती है अब तो, एक तरह से हर वक्त एक नया दौर आ जाता है, हर साल कोई नई चीज ऐसे आ जाती है जिससे जो है हमारे बच्चों के अंदर, इवन हम बड़ों के अंदर भी ये रहता है, मतलब वो हम सोचते हैं और अपने घरों में हम एक तरह से क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। और नेचर से बच्चों का ही नहीं, हम सबका जो अटैचमेंट है वो बहुत कम होता जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं हम चिंता का विषय है। खुशी, आपको क्या लगता है?
4: थैंक यू सो मच प्राची, आपने मुझे भी इन्वॉल्व किया। एंड आज के बच्चे, उनके पास तकनीक है, जानकारियां हैं, लेकिन क्या कहीं बचपन की वो सादगी, धैर्य और प्रकृति से जुड़ाव कम होता जा रहा है? दोस्तों देखिए, पहले के टाइम में ऐसी कोई भी लाइक सोशल मीडिया, कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, ना मोबाइल था, ना हमारे पास कोई इंटरनेट की ऐसी सर्विस थी। एंड पहले के टाइम में क्या होता था कि देखिए, हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते थे बहुत ज्यादा, वो तो ऑलरेडी करते ही हैं, लेकिन पहले के बच्चों में धैर्य था, पेशेंस था, लेकिन आजकल के बच्चों में वो पेशेंस ही नहीं है। उनको अगर कोई चीज चाहिए तो मतलब चाहिए ही, उनको ये नहीं है कि उनको पेशेंस नहीं है उनके अंदर। आज के बच्चों में पेशेंस नहीं, लेकिन पहले के बच्चों में बहुत ज्यादा पेशेंस होता था। अगर फैमिली बोलती थी कि शाम को तुम्हारे पापा आएंगे, तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे, तो बच्चा इंतजार करता था कि शाम को पापा आएंगे, चॉकलेट लेकर आएंगे, कितना खुश होते थे। और प्रकृति से जुड़ाव आजकल के बच्चों में कितना कम हो गया है। बस बच्चों को आजकल के क्या चाहिए, एक मोबाइल, एक रूम, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं लेना, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं। लेकिन पहले के टाइम में प्राची, हमारा और आपकी बचपन के टाइम की अगर हम बात करें, तो हम पहले कितना प्रकृति से जुड़ते थे, सुबह सुबह बाहर खेलने जाया करते थे, मॉर्निंग वॉक किया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे। एंड आजकल ये सब चीजें कितनी कम हो गई ना, एक्टिविटीज। बच्चे लेट नाइट सोते हैं आजकल के, और जब लेट नाइट सोएंगे तो फिर लेट नाइट उठेंगे। बाकी हम प्राची से भी जानते हैं, प्राची आप क्या कहना चाहते
3: हैं? बिल्कुल खुशी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को बस आजकल फोन चाहिए, और फोन ने जो उनके अंदर एक चीज उनके अंदर ये इवॉल्व हो गई है नई कि उन्हें हर चीज एकदम चाहिए एकदम क्विकली. वो उनके अंदर वेट और पेशेंस जैसी चीजें बहुत कम हो रही है. आप देख सकते हो जैसे कि डिलीवरी सर्विसेज जब से आ गई है होम डिलीवरी सर्विसेज तो बच्चों को क्या है कि अभी ऑर्डर किया है तो मुझे अभी 2 मिनट में पिज्जा चाहिए, मुझे 2 मिनट में ये सामान चाहिए ये ब्रिंकेट से. तो आजकल हमारी जनरेशन के बच्चों में पेशेंस बहुत कम हो गया है इवन यंगस्टर्स में भी. और ये वो चीज है लाइफ में पेशेंस जो एक हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है हम ह्यूमन बींग्स की, जिसके बिना मुझे लगता है हम सब अधूरे हैं और ये हमें अपने अंदर जरूर इनकल्केट करने की जरूरत है.
2: क्या बात है, बहुत अच्छी बात की ये. लेकिन एक बात और है, पहले के बच्चों के पास शायद इतने खिलौने नहीं थे लेकिन कल्पनाएं बहुत थी, वो मिट्टी में खेलकर भी खुश हो जाते थे. और पता है जब आजकल ना हर चीज है आपके पास, जो भी आप चीज चाहो कि ये वाला खिलौना मेरे पास होना चाहिए तो वो आपको मिल जाता है. पहले के टाइम में ये सब चीजें नहीं होता था, हम मिट्टी से बर्तन बनाते थे, मिट्टी से खिलौने बनाते थे तो उससे खेलते थे और उसमें ना एक अपनापन होता था. हम जैसे सारे बच्चे मोहल्ले के बच्चे ना एक साथ एक बैठ जाते थे और सब मिट्टी अपने अपने घर से लेके आते थे, उसको अच्छे से गूंथते थे, अच्छे से मतलब मिट्टी बनाने के बाद फिर उसके हम बर्तन बनाते, फिर उसका इंतजार करते थे सूखने के लिए.
3: आजकल तो आपको पता है बच्चों को ये नहीं पता होता आजकल हमें कि हमारी साइड में कौन रह रहे हैं, है ना, हमारे नेबरहुड में कौन कौन लोग रहते हैं, कुछ नहीं पता है हमें. बहुत अकेलेपन और एक फोन की डिजिटल दुनिया में हमको.
2: तो क्या होता था, वो सूखने के बाद ना हम उस पर कलर करते थे बर्तन के ऊपर, खिलौने के ऊपर,
3: चीजें हमें इतनी अच्छी लगती थी.
2: और हम बच्चे खुद का मतलब अब क्या है इतना उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है पहली बात तो. और फिर हम पहले मतलब खुद का घर बनाते, ये इसका घर है वो उसका घर है, फिर हम सब छोटी मोटी कीर्तन करते थे.
4: मैं कहना चाहती हूँ रीना, जैसे प्राची भी बता रही थी कि पहले हम ईंट से हम घर बनाया करते थे और उस पर हम फिर हम उसे सजाया करते थे पत्तों से एंड फूलों से, तो कितना वो हैप्पीनेस वाला टाइम था ना. आगे आप प्राची क्या कहना चाहते हो,
2: तुम बताओ पहले तुम क्या बचपन में कैसे खेलती थी. मैं तो सच बताऊं मिट्टी के बर्तन बना के गली मोहल्ले में हम सब बहुत खेलते थे. और जब भी मतलब कुछ ऐसा फेस्टिवल जैसे घर पे अभी मनाते हैं दिवाली वगैरह तो हम वैसे बच्चों बच्चों में ही दिवाली वगैरह मनाते थे, मिट्टी के ही मिठाइयां बनाते थे फिर उनको बांटते थे, घर घर में जाते थे, मैंने कहा लो आज दिवाली हैप्पी दिवाली मिठाई ले लो, घर वाले बोलते थे.
4: अमेजिंग टाइम था. आज के बच्चे बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं.
2: और जो साइकिल की जो टायर होती थी ना उसको भी लेके मैं बहुत घूमती थी. हम सभी कहते थे कि साइकिल है हमारा,
4: चलाया प्राची ऐसा वाला.
2: और उससे ना बच्चों की एक्सरसाइज भी हो जाती थी और हाइट भी बहुत बढ़ती थी उस टाइम. आजकल के बच्चों हाइट इतनी नहीं बढ़ती है,
4: नहीं बढ़ती है, प्रॉब्लम्स कितनी है बच्चों के, बच्चों के अंदर नई नई बीमारियां आ रही हैं.
2: वो एक्टिविटी नहीं करते ना, एक तो उनको घर से बाहर नहीं भेजते, नेचुरल हवा नहीं उनको मिल पाती है, बाहर जाते तो यही सोचते कि इसके साथ कुछ हो ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए. मतलब एक अगर बच्चों को बाहर भी लेकर जा रहे हैं तो पार्क में लेके जाते थे, इसके अलावा कहीं और नहीं. अगर बच्चा छत पे भी घूम रहा है तो अरे तुम छत पर मत जाओ यार, धूप बहुत है, मिट्टी लग जाएगी, चोट लग जाएगी. मतलब आजकल हम बच्चों को ना स्ट्रॉन्ग बनाने की जगह उनको फूल बना रहे हैं.
3: हाँ बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. जैसा कि आपने बताया कि आजकल बच्चों के पास टाइम भी नहीं है ज्यादा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि हमने उन्हें नेचर से बहुत अलग कर दिया है. तो और बल्कि अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारे आसपास का एनवायरमेंट चीजें ऐसी होनी चाहिए कि हम उन्हें नेचर के साथ जुड़े, क्योंकि और बच्चे इंटरेस्ट लेते भी हैं अगर हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जिसमें नेचर इन्वॉल्व है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते भी हैं. पर कहीं ना कहीं ये हमारा ही एटमॉस्फेयर और जैसी अब यू नो अब ब्रिंगिंग हम उन्हें दे रहे हैं तो वो चीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो हमें एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि हमारे बच्चे नेचर के साथ टाइम बिताए,
4: जुड़े नेचर से जुड़े. दोस्तों एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद अभी हम लौट कर आते हैं.

दोस्तों, ये प्यारा सा खूबसूरत सा गाना अभी आपने सुना और इसके बाद हम आपसे फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है सोच बदलो। और दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या हमारे बच्चे सच में बचपन जी रहे हैं? सुबह उठते ही मोबाइल फोन, फिर वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और स्क्रीन की दुनिया। धीरे धीरे बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, न उन्हें चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है, न ही पेड़ों की ठंडी छाँव का एहसास होता है। लेकिन सोचिए, जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया, अगर बच्चे उसी से दूर हो जाएं, तो उनका जीवन कितना अधूरा हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों को रोज कुछ समय खुले वातावरण में बिताने के लिए प्रेरित करें, उन्हें पार्क में ले जाएं, पेड़ पौधों के बारे में बताएं, पक्षियों की आवाज सुनने दें, घर में एक छोटा सा पौधा लगवाएं और उसकी जिम्मेदारी अपने बच्चों को दीजिए। जब वह पौधों को बढ़ते हुए देखेगा तो उसके अंदर प्रकृति के प्रति प्यार, अपनी प्रकृति के लिए प्यार अपने आप जागेगा। छुट्टियों में सिर्फ बच्चों को मॉल या मोबाइल नहीं, बल्कि किसी बगीचे, खेत, नदी या प्रकृति स्थल की सैर भी करवाएं। और सबसे जरूरी बात, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें, ग्रीन टाइम बढ़ाएं, क्योंकि प्रकृति सिर्फ सुंदरता नहीं सिखाती बल्कि धैर्य, संवेदनशीलता और जीवन का असली संतुलन भी सिखाती है। याद रखिए श्रोताओं, बच्चों को मोबाइल की दुनिया से जितना बाहर निकालोगे, वे प्रकृति की दुनिया से उतने ही जुड़ेंगे। और जो बच्चा प्रकृति के करीब होता है, वही मानसिक रूप से अधिक खुश, स्वस्थ और रचनात्मक बनता है। तो दोस्तों, अभी हम आपसे करेंगे और भी बातें, आप बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी हम मिलते हैं आपको कुछ और म्यूजिकल

0: जी वेलकम बैक है एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। और देखिए जैसे कि खुशी ने बताया है कि बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए, फोन से दूर रखिए। जितना आप उनको प्रकृति के साथ जोड़ेंगे उतनी हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो और भी सुखमय रहेगी और प्रकृति के साथ कनेक्ट रहेगी। सोचिए अब क्या है, बच्चों को ना सुबह सुबह उठते ही उनको फोन पकड़ा देते या फिर बच्चे जिद करने लग जाते हैं कि हमें फोन चाहिए, हमें गेम खेलना है। अगर वो खाना भी खाते तो सिर्फ और सिर्फ कार्टून देख कर ही खाना खाते। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, पूरी फैमिली वाले एक साथ बैठकर खाना खाते थे, कब टाइम निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब हर किसी के पास फोन है, अलग बैठा है, कोई इधर कोने में बैठा है और टाइम का तो मतलब पता ही नहीं चलता। इसीलिए आजकल के बच्चों को भी चश्मे बहुत जल्दी जड़ रहे हैं। एक तो खान पीन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ऊपर से हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं, सो चश्मे भी चढ़ने शुरू हो गए क्योंकि स्क्रीन जो टाइम है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं कि तुम पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, मतलब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि वो पढ़ रहा है। जब वो खेलेगा तभी तो उसका माइंड है वो रिफ्रेश होगा, फिर वो कुछ नई चीजों को सोचेगा। और प्रकृति के बारे में अगर उनको कनेक्ट करते हैं तो वो हर चीज के बारे में जानेंगे। इनफैक्ट कुछ बच्चों से पूछ लो कि ये किस चीज का पौधा है तो वो बता नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि ये तोरी का बेल है या फिर किसी और फल का पेड़ है, बिल्कुल भी नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को जितना हो सके पेड़ों के बारे में नॉलेज बढ़ाए, उनको बताए किस चीज का पेड़ है ताकि उनको भी पता रहे, अदरवाइज आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता रहता। खुशी
1: बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि बच्चे आजकल प्रकृति में समय कहाँ बिता, उनको क्या पता, बस उनको सोशल मीडिया से मतलब होता है एंड कार्टून से मतलब होता है कि कौन सा कार्टून कब आने वाला है, कौन सा गेम है। एक्चुअली इस तरह के गेम्स आजकल सोशल मीडिया पर बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि बच्चे जब गेम्स खेलते हैं ना तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि हमें खाना खाना है या नहीं खाना है, जैसे
0: कोई आवाज लगा रहा है कोई आवाज नहीं लगा रहा है, बिल्कुल उनको सुनाई नहीं देता, बहरे हो जाते हैं।
1: तो बस यही है, हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आज के हमारे कार्यक्रम में कि अपने बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा बाहर लेकर जाएं, प्रकृति से कनेक्ट करें, उनको पार्क में लेकर जाएं इवनिंग टाइम में मॉर्निंग टाइम में, उनके साथ आप भी समय बिताएं। एंड जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ घुलता मिलता है बातचीत करता है तो उनका मानसिक संतुलन भी स्ट्रांग होता है, वो हैप्पी फील करते हैं, उनको लगता है कि कोई तो है जो हमारी बातें सुनता है हमें समझता है।
0: और दूसरी बात ये कि बच्चों को जब तक वो 12th पास आउट ना कर ले आप उनको फोन मत दे दीजिए। एक बार आपने उनको फोन की लत लगा दी तो फिर आप उनसे छुटा नहीं सकते हैं, इसीलिए 12th के बाद फोन दीजिए। क्योंकि पहले के बच्चे भी तो हम सबने भी तो पढ़े हैं, यानी कि हम सच बताऊं मुझे भी जब मैं कॉलेज में सेकंड ईयर में जाने के बाद मुझे फोन मिला, ये देखो तुम।
1: अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन किया है तब मुझे मोबाइल मिला है,
0: तो हमने भी तो पढ़े हैं बिना फोन के बिना ना, हमें भी तो नॉलेज है।
1: पर वो विदाउट फोन वाली दुनिया बहुत खूबसूरत है,
0: बहुत। एक तो सच बताऊं मैं अभी भी जैसे फोन 2-3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ तो आंखों को बहुत रिलैक्स मिलता है,
1: सुकून मिलता है।
0: और जब भी मैं फोन चलाना स्टार्ट कर देती हूँ फिर से पेन शुरू हो जाता है।
1: इसीलिए
0: श्रोताओं बच्चों को फोन मत दीजिए और यूं ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए। अभी हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे।
1: आज से एक छोटी सी शुरुआत करें और अपने बच्चों को फिर से पेड़ों फूलों तितलियों और खुले आसमान के करीब लेकर जाएं। मैं आपकी दोस्त आरजी खुशी और आप सुन रहे हैं सोच बदलो। सोच बदलिए क्योंकि छोटी सी सोच का बदलाव ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनता है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ कहिए और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। तो श्रोताओं, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की और ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा जिसमें महिला स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि सेवा ही संकल्प है, भारत प्रथम प्रेरणा। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी, उनसे हम जानेंगे कि ये अभियान क्यों जरूरी है और इसका सीधा फायदा हमें कैसे मिलेगा। टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो सेहत से ही लाभ कई में। प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो भाभी ये अभियान क्यों आरंभ किया जा रहा है?
1: देखिए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य, पोषण, तंदुरुस्ती और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। ये अभियान बीमारियों की जांच और इलाज को मजबूत करेगा, साथ ही महिलाओं और बच्चों की देखभाल पर भी ध्यान दे। इसके अलावा ये अभियान मोटापे की रोकथाम, अच्छा पोषण, स्वैच्छिक रक्तदान पर भी जोर देगा और समुदाय को स्वस्थ आदत अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
0: भाभी, इस अभियान के दौरान देश भर में बहुत सारे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, ये बताइए कि इन शिविर में महिलाओं और बच्चों को कौन कौन सी सुविधा मिलेगी?
1: देखिए, इन शिविर में महिलाओं और बच्चों दोनों की सेहत पर खास ध्यान दिया जाएगा, जैसे महिलाओं का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच होगी। इसके अलावा खून की कमी यानी अनीमिया की जांच भी की जाएगी। शिविर में उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा और जरूरत पड़ने पर दवाइयां और आयरन की गोलियां दी जाएंगी। शिविर में टीबी और सिकल सेल जैसी बीमारियों की भी जांच होगी और ये बीमारी धीरे धीरे असर दिखाती है। शुरुआत में तो पता नहीं चलता लेकिन धीरे धीरे शरीर को इतना कमजोर कर देती है कि रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है ताकि बीमारियां बढ़ने से पहले ही इलाज शुरू हो जाए।
0: शिविर में गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोई खास व्यवस्था रहेगी क्या?
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ वजन, ब्लड प्रेशर, खून की जांच और बच्चों की सेहत की जानकारी विस्तार से दी जाएगी, साथ ही सही खान पान और जरूरी दवाइयों के बारे में भी बताया जाएगा। इस अभियान के तहत बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा भी रहेगी। छोटे छोटे बच्चों को पोलियो, खसरा, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका टीकाकरण है। अगर समय पर टीका लगवा दिया जाएगा तो बच्चे जिंदगी भर इन बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त नारी परिवार अभियान का असली मकसद यही है कि घर घर सेहत पहुंचे, हर महिला सुरक्षित रहे और बच्चा तंदुरुस्त हो। जब नारी और बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी परिवार खुशहाल होगा और समाज व देश और मजबूत बनेगा।
0: भाभी, ये तो एक बड़ा अभियान है, पोषण माह का हिस्सा है। वैसे तो हम हर एक एपिसोड में अपने श्रोताओं को पोषण माह के बारे में भी बताते रहते हैं, तो क्यों ना इस एपिसोड में भी उन्हें एक बार याद दिला दिया जाए और इसका महत्व समझाया जाए।
1: पोषण माह पर खास जोर मोटापा कम करने पर है। आजकल बच्चे हों या बड़े, मीठा और तली भुनी चीजें ज्यादा खाने लगे हैं। चीनी और तेल का ज्यादा इस्तेमाल शरीर को बीमार कर देता है, मोटापा बढ़ता है और कई दिक्कतें खड़ी कर देता है। इसलिए इस पोषण माह में लोगों को समझाया जाएगा कि मीठा और तेल कम खाएं, सब्जी, दाल, हरी सब्जियां, हरी पत्तीदार चीजें और फल ज्यादा खाएं, तभी शरीर फिट रहेगा और बीमारी पास भी नहीं आएगी।
0: भावी पोषण माह का एक और मकसद मैंने सुना है बचपन की देखभाल और शिक्षा, यानी पोषण भी पढ़ाई भी, इसका मतलब क्या है?
1: देखिए, छोटे बच्चे की उम्र सबसे नाजुक होती है। जन्म से लेकर 6-7 साल तक का समय उनकी सेहत के लिए सबसे अहम होता है। अगर उस समय बच्चों को अच्छा खाना और सही देखभाल मिले तो उसका शरीर भी मजबूत होगा और दिमाग भी तेज चलेगा। पोषण का मतलब है कि बच्चों को समय पर दूध, फल, सब्जियां, दाल और अनाज जैसे पौष्टिक खाना मिले। सिर्फ पेट भरने वाला या जंक फूड नहीं, बल्कि ऐसा खाना जो शरीर को ताकत दे। साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, चित्र दिखाना, कविताएं सुनाना, इन सब से उनका दिमाग सही दिशा में रहेगा, बोलने की क्षमता विकसित होगी और सोचने समझने की आदत बढ़ेगी। आंगनवाड़ी में बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाता है, जैसे खिचड़ी, दूध, अंडा, दाल, सब्जियाँ, ताकि उनके शरीर को सही पोषण मिले। साथ ही वहाँ बच्चों को खेल खेल में सीखने का मौका भी दिया जाता है। सरकार चाहती है कि आंगनवाड़ी और स्कूल के बच्चों के लिए ऐसी जगह बने जहां उन्हें सेहत और शिक्षा दोनों का सहारा मिले, ताकि वे न सिर्फ तंदुरुस्त रहें बल्कि होशियार और समझदार भी बने। यही बच्चों के अच्छे भविष्य की असली नींव है।
0: भाभी, इस बार पोषण माह में यानी शिशु और छोटे बच्चों के आहार मेथड पर भी जोर दिया जा रहा है, ये क्यों जरूरी है?
1: छोटे बच्चों का खाना पीना ही उनकी सेहत की नींव रखता है। जन्म से लेकर 2 साल तक का समय बच्चों की जिंदगी का सबसे अहम समय होता है। अगर इस दौरान सही आहार मिलेगा तो बच्चा मजबूत बनेगा और बीमारियों से भी दूर रहेगा।
0: तो भाभी, सही आहार मेथड की शुरुआत कैसे होती है?
1: सबसे पहले तो जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इस पीले गाढ़े दूध को कोलोस्टॉम कहते हैं। ये बच्चे की पहली वैक्सीन है।
0: फिर 6 महीने तक क्या करना चाहिए?
1: 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। ना पानी, ना शहद, ना दाल, ना दाल का पानी। माँ के दूध में पानी, पोषण और सुरक्षा सब कुछ होता है।
0: और 6 महीने के बाद क्या करना चाहिए?
1: 6 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चों को ऊपर का खाना देना शुरू करना चाहिए, जैसे दाल चावल, मैश करके खिचड़ी, दलिया, सब्जी, फल या अंडा। साथ ही माँ का दूध भी जारी रहना चाहिए। हर महीने बच्चे का खाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है, ताकि उसका शरीर मजबूत बने और दिमाग भी तेज चले।
0: यानी भाभी, IYCF का मतलब यही है कि बच्चों को सही समय पर सही आहार मिले।
1: बिल्कुल, यही तो पोषण माह का असली संदेश है। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो बच्चा न सिर्फ तंदुरुस्त होगा बल्कि पढ़ाई लिखाई और जिंदगी में भी हमेशा आगे रहेगा।
0: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में पुरुष की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है, आखिर क्यों?
1: देखिए, बच्चों की परवरिश और पोषण सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। अगर पिता भी साथ दें तो माँ का बोझ आधा हो जाता है और बच्चों को 2 गुना सहारा मिलता है।
0: पुरुष इसमें कैसे मदद कर सकते हैं?
1: बहुत आसान है। बच्चों के टीकाकरण और आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों में पिता भी जाएं, घर पर पौष्टिक खाना लाने में ध्यान दें और बच्चों को समय दें। रोज बच्चों के साथ खेलें, उनसे बातें करें। इससे बच्चा भी खुश रहता है और माँ को भी सहारा मिलता है।
0: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों पर भी जोर दिया जा रहा है।
1: हमारे आसपास बहुत सारे पौष्टिक खाने की चीजें मिलती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और बाजार के महंगे पैकेट वाले सामान पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। असली मकसद है कि लोगों को अपने गांव में मिलने वाले सस्ते और पौष्टिक अनाज, फल, दाल और हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं।
0: कौन कौन से खाद्य पदार्थ पर ध्यान देने की जरूरत है?
1: हमारे यहाँ मिलने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ताकत और पोषण से भरपूर है। इस तरह मौसमी फल जैसे अमरूद, पपीता, केला, नींबू और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, सरसों हमारे आसपास आसानी से मिल जाती है और बहुत फायदेमंद भी है।
0: इससे परिवार को क्या फायदा होगा?
1: फायदा सीधा है। स्थानीय पौष्टिक खाद संसाधनों से बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा, बुजुर्गों को ताकत मिलेगी, महिलाओं को खून की कमी जैसी बीमारियों से राहत मिलेगी, ऊपर से गांव की खेती और किसान को भी बढ़ावा मिलेगा।
0: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में एकत्र किया और डिजिटलकरण पर भी जोर है, इसका क्या मतलब है?
1: जब शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला समूह और पंचायत सब मिलकर काम करेंगे तभी असली बदलाव आएगा। यही है एकत्र क्रिया, मतलब सब विभाग मिलकर एक ही दिशा में बच्चों और महिलाओं की सेहत सुधारने के लिए काम करें।
0: और डिजिटलकरण क्या होता है?
1: आजकल सरकार सेहत के क्षेत्र में मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं और उन्हें क्या सुविधा देनी चाहिए। इससे काम तेज और पारदर्शी हो जाता है।
0: भाभी, इस बार पोषण माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की भी चर्चा की है, ये योजना क्या है?
1: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं को गर्भ अवस्था और स्तनपान के समय पोषण व आराम के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।
0: भाभी, इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए सरकार ने विशेष पंजीकरण मुहिम चलाई है। महिलाएं अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर पंजीकरण करा सकती हैं। वहीं पर पूरी जानकारी और मदद भी मिल जाएगी।
0: दोस्तों, आज के सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में हमने जाना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के जरिए महिलाएं, किशोरियों और बच्चे समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, टीकाकरण और देखभाल पाएं। साथ ही 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में मोटापे की रोकथाम, सही पोषण, जीवन शैली सुधार और स्वैच्छिक रक्तदान जैसी चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद है कि हम के बीच स्वस्थ आदतें बढ़ें और पूरा समाज फिट रहे। तो चलिए हम अपनी शपथ लेते हैं,
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे
0: और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है,
1: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो सेहत से ही लाभ कई प्रोग्राम में दोस्तों आज हम बात कर रहे थे एक विशेष खास मुद्दे पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं सेहत से ही लाभ कई के अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, और सुनते रहें FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो घर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण पर। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि घर में सबसे पहले महिलाएं उठती हैं और सबके बाद में ही सोती हैं। सुबह बच्चों का टिफिन बनाना, घर का काम संभालना, कई महिलाएं तो ऑफिस भी जाती हैं, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या महिलाएं अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रखती हैं जितना बाकी लोग रख पाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। कई बार महिलाएं जल्दी जल्दी में खाना खा लेती हैं, कई बार अपना खाना ही छोड़ देती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और अपने खान पान में कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकती हैं।
3: क्या बात है, बहुत जरूरी बात तुमने कही आज खुशी। सो अब हम बात करते हैं पोषण का महत्व। महिलाओं के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार महिलाएं अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं पहले पूरे परिवार को खाना परोसती है और बाद में खुद खाती है। कई बार जब तक उनकी बारी आती है तब तक खाना ठंडा हो जाता है या कम बचता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शरीर को ताकत देने के लिए सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने खाने पीने में हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध और अनाज जरूर शामिल करना चाहिए। ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण देती है और शरीर को मजबूत बनाती है। इसी के साथ कोशिश करेंगे कि दिन में 3 बार सही समय पर खाना जरूर खाए। खाना छोड़ना या देर से खाना खाना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है।
2: बिल्कुल रीना जी, आप सही कह रही हो। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या जो कई महिलाओं में देखी जाती है वह है आयरन की कमी। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी होती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि उन्हें हर समय थकान महसूस होती है। इसका एक ही कारण है,

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्टैग अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसास आते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार, ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे यह ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी अपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या। आज तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
3: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई

0: ज्यादा देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूँ कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
1: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
1: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद है। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर ये जवाब दिया।
3: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
1: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजो डॉन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयरकोर बोर्चवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृहमंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
0: थैंक यू सर,
1: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
0: वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
1: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
0: क्या बात है।
1: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
0: जी जी, प्लीज।
1: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: ब्यूटीफुल।
1: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: वाओ।
1: उसके बाद मैंने किया है DM नियोनेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
0: क्या बात है।
1: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोनेटोलॉजी है क्या?
0: जी,
1: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोनेटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
0: हाँ जी।
1: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
0: हाँ जी।
1: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
0: Alright.
1: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। सो समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
0: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
1: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं।
0: जी जी।
1: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते हैं।
0: जी जी जी।
1: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
0: जी जी जी।
1: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों के उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
0: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
1: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
0: हाँ जी,
1: तो
0: हाँ
1: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
0: दिस इज कंगारू मदर केयर, आई थिंक
1: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
0: ऑलराइट।
1: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है।
0: जी।
1: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है।
0: ओके।
1: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से, सीजरियन डिलीवरी से होता है, तो
0: जी जी।
1: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
0: ओके,
1: ठीक है। बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।

0: डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
1: बेबी को 2-3 आवर्ली, इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं। जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, तो फर्स्ट टाइम मदर्स बने हैं, उनको नहीं पता
0: नहीं
1: होता
0: पता
1: है, वो क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध।
0: जी,
1: तो हम ये कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले। क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है, ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है, वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं, उसमें हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं, तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना, बेहद जरूरी होता है। तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं।
0: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
1: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा, तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना। अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
0: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
1: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं, इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोस ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है। मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ, तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट, सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं, उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है, तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है। कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
1: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
0: ठीक है, बहुत
1: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: ठीक है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है, आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो। डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कपड़े पहना रहे हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
0: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे, उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
1: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
0: जी,
1: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए। ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 केजी मतलब 1.5 किलो, 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
0: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में, कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
1: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट साइड में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सिवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात कर रहे हैं, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
1: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 केजी के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर है। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिक्कतें हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
0: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा, श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश जाते जाते?
1: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत,
0: हाँ जी,
1: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे, बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
0: हाँ जी हाँ,
1: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है, और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है। तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखे और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: लेकिन अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है। उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: Gesang eingibt.
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता

0: करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
0: नियम और शर्तें लागू।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, अभी आपने पहला सा गाना सुना फ्रॉम द मूवी तुम बिन टू, अरिजीत सिंह जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। और साथियों, आपको बता देते हैं समय हुआ है 3:08, शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी। और दोस्तों, अगर आप भी अपने किसी खास को कोई प्यारा सा ट्रैक डेडिकेट करना चाहते हैं या अपनी पसंद का कोई भी गाना अगर सुनना चाहते हैं ना, तो हमें अब भी कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: जिला अमरोहा नई बस्ती कतई खालसा शहर बहारुल हसन जी बोल रहा मैं।
0: जी बहारुल हसन सिद्दीकी जी बात कर रहे हैं, बताइएगा कैसे हैं आप सब?
1: बढ़िया मैम, आपको फोन कर लिया मैम, आकाशवाणी रामपुर से आ रहे थे तो ऐसा समझ लीजिए मुरादाबाद के भाई पास कोई आपसे बातचीत कर रहे हैं तो गाड़ी में बैठे हुए थे तो आपको फोन लगा दिया मैम।
0: अच्छा अच्छा, चलिए आपने बहुत अच्छा किया सर, आप ये ट्रैवल कर रहे हैं, आप बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम पसंद आपकी रहेगी, सुनवा देना आप अपनी पसंद।
0: जी थैंक यू सो मच, आप अच्छे से जाइएगा, सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत आपको।
1: बुलाया गया था।
0: जी जी जी जी, आपने अभी बताया था मुझे। हाँ जी, कैसा रहा आपका सेशन?
1: यूट्यूब पे भी डाला गया है और सभी श्रोता सुबह से जो हुए थे वहाँ पे और स्टैंड पे बात हो रही सभी लोगों
0: की। चलिए बहुत अच्छी बात है सर,
1: पूरा इंतजाम था खाना वगैरह
0: जी
1: सुबह से वहीं पे लगा
0: हुए थे। ओके, आज तो मौसम भी अच्छा है ना, कभी धूप तो कभी बादल, कभी हवाएं भी चल रही है।
1: देखिए दूसरे से ठंडा मौसम रहा, हल्की फुल्की धूप भी निकल रही है तो अच्छा रहा।
0: जी जी जी जी,
1: एक दूसरे से संपर्क भी हो गया, बातचीत भी हो गई,
0: अच्छी बात है सर, सभी से मिलना जुलना भी चाहिए। और मैं सुनवाती हूँ अभी आपको आपकी पसंद का प्यारा सा गाना, तो चलिए एवरीवन सुनते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत संगीत। सर ने कहा कि आप अपनी पसंद का गाना सुनवाएगा, तो हम सुनवाते हैं अपनी पसंद से एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, अलका याग्निक जी साथ में उदित नारायण जी की बड़ी प्यारी सी आवाज़।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 RJ खुशी के साथ। और श्रोताओं, समय हुआ है 3:17। अभी आपने ये प्यारा से गाना सुना फ्रॉम द मूवी हम हो गए आपके एंड उदित नारायण साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में ये प्यारा गाना। एंड दोस्तों, आज तो मौसम भी ना पूरा फिल्मी मूड में है। कभी तेज हवाएं चल रही हैं तो कभी बादल आसमान पर अपना डेरा जमा लेते हैं और फिर अचानक से धूप मुस्कुराते हुए छक जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे मौसम भी कह रहा हो जिंदगी में बदलाव जरूरी है, तभी हर पल नया लगता है। और प्यारी सी बातों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश। नमस्कार मैडम।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, अपना नाम बताइएगा।
1: मैडम, मैं गांव लिखे दिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ।
0: दिनेश चौहान जी बात कर रहे हैं, बताइएगा कैसे हैं आप सर।
1: बड़े हैं मैडम। सबसे पहले तो आपको अपना रेडियो प्रसारण दिवस की शुभकामनाएं।
0: जी थैंक यू सो मच सर।
1: तो कार्यक्रम अच्छा लगता रहता है, सुनते रहते हैं मैडम, अच्छा प्रोग्राम होता है। हेलो फरमाइश का।
0: जी जी धन्यवाद सर आपका। और आप बताइएगा आपके महाराष्ट्र का मौसम कैसा है।
1: मौसम तो अभी अच्छा है मैडम, बारिश लगातार हो रही है 4-5 दिन से।
0: अच्छा, आज भी बारिश हो रही है।
1: आज भी हुई है पर लेकिन हो सकता है शाम तक आ जाएगी बारिश, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है, आने
0: है। अच्छा, बादल हो रहे हैं तो बारिश की संभावनाएं आपको लग रही है, राइट।
1: हाँ मैडम
0: जी, बताएगा क्या सुनेंगे आज आप सब।
1: मैडम फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी
0: जी,
1: और गाने के बोल है कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
0: ओके, और ये गाना आप किन के लिए सुनना चाहते हैं।
1: सबसे पहले आपके लिए उमेश चौहान, आदित्य चौहान, मनीषा चौहान, जितने भी रेडियो मुरादाबाद FM सुन रहे हैं सबके लिए।
0: ओके सर, सभी के साथ सुनवाते हैं गाना आपके पसंद का। आपने हमें कॉल किया उसके लिए धन्यवाद आपका।
1: शुक्रिया, नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी सर, मोस्ट वेलकम। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक दिनेश जी की रिक्वेस्ट पर, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।

0: कर।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने गाना सुना फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी से उदित नारायण जी, साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश
1: जी। हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका
1: जी? मैं डिडोरा के मिलक से सरताज हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, मुरादाबाद से शानू खान
0: जी। बताएगा कैसे हैं आप सब?
1: बढ़िया है मैम, आप सुनाइए, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं
0: जी। शुक्रिया आपका। मैं ठीक हूँ, आप बताइएगा।
1: मस्त एकदम।
0: ओके, तो बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: गाना सुनवा दो मैम, दिल मेरे ना और इंतजार कर।
0: ओके ठीक है, तो हम आपको इंतजार नहीं करवाते हैं, ये गाना जल्दी से सुनवाते हैं। ओके, थैंक यू कॉल करने के लिए,
1: वेलकम।
0: तो चलिए एवरीवन, शानू जी की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत। ये मौका हम आपको भी देते हैं, जल्दी से हमें भी कॉल लगाइएगा। आप नंबर मैं आपको बताती हूँ, 98-378-96-896 इस पर आपको कॉल लगाना है और सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है।

0: तो दोस्तों अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना, इश्क है तो इजहार कर, दिल और ना तो इंतजार कर। देखिए हम तो आपको इंतजार बिल्कुल नहीं करा रहे हैं, बस हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपना जो मोबाइल है ना जिसे आप इस वक्त चला रहे हो, हाँ इसी नंबर इसी मोबाइल से आपको हमें कॉल लगाना है। नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। जल्दी से कॉल लगाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस फोन लगाना होगा। तो चलो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो गुड आफ्टरनून।
0: जी वेरी गुड आफ्टरनून सर, क्या नाम है आपका?
1: मैम जी मैं सलमान अख्तर बात कर रहा हूँ, बिलोंग करता हूँ गाँव सरायमा पोस्ट खेरेपुर तहसील नजीबाबाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से, लेकिन इस समय देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून शिवालिक कॉलेज से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, क्या कर रहे हैं आप वहाँ पर?
1: जी हम इधर काम भी करते हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं।
0: अच्छा, स्टडी के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं, राइट?
1: जी स्टडी भी कर रहे हैं जी, इसमें हम जो वो कर रहे हैं जो ये कोर्स होते हैं डिप्लोमा।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: जी, काम की लाइन का डिप्लोमा होता है उसमें मान्यता फुल होती है जी।
0: ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है सर।
1: और जी इसमें मुरादाबाद आकाशवाणी में सभी इसमें रेडियो में अच्छे है ना?
0: हाँ जी हाँ जी, सभी प्रेजेंटर्स बहुत ही अच्छे हैं फिर मुरादाबाद में, आप बताइएगा।
1: मेरा एक साल के बाद कॉल लगा है, एक दिन लगा था और रिसीव में पता नहीं कट गया था।
0: हाँ जी हाँ जी, बात हुई थी लेकिन आपसे प्रॉपर बात नहीं हो पाई थी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। ये बताइएगा सर, उत्तराखंड का मौसम कैसा है अभी, उत्तराखंड का वेदर के बारे में बताइएगा।
1: हाँ जी हाँ, देहरादून का मौसम इस समय सुबह बारिश थी लेकिन अब बादल भी है और धूप भी है।
0: अच्छा अच्छा,
1: हम उम्मीद करते हैं मुरादाबाद में भी अच्छा मौसम होगा।
0: जी जी, गर्मी भी है, हवाएं भी हैं, बादल भी हैं, तीनों चीजें साथ हैं।
1: जी
0: आप बताइएगा।
1: मैं चाहता हूँ और मेरे दोस्त भी है।
0: जी बताइएगा, कौन से गाना सुनेंगे आज आप?
1: जी जानवर वो भी कहा जी, मौसम की तरह बदल के न जाऊंगे, और मेरे मित्र है दोस्त है फ्रेंड है। पहले तो खुश जी आप
0: जी,
1: और जी एक आरजे होते हैं वो जिनके लिए भी है हमारी तरफ से, और जी हमारे दोस्त नईम मलिक जम्मू कश्मीर से, और मुकेश कश्यप जी मुरादाबाद से, और फरमान भाई मुरादाबाद से, समा परवीन और समा अब्बासी सबनम अब्बासी, और जी लाइबा जी मुरादाबाद से।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना, शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद आपसे भी करेंगे बातचीत, और हम तो बदलने वाले नहीं है ना ही

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता
1: अरे सस्ता सोना

0: चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट हेलो फरमाइश। दोस्तों, ये फोन इन कार्यक्रम है, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और अपनी मनपसंद के गीत यहाँ पर सुन सकते हैं। किसी को डेडिकेट करने का अगर मन है कोई गाना जो आपको लगता है कि आपके बहुत खास है, आपके मित्र या आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी, एंड आप उनको कोई स्पेशल ट्रैक डेडिकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फटाफट से आप मुझे कॉल करो। नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और अपनी अगली कॉलर से भी बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हर पल खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती। जिंदगी हर पल खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती। मिलना हमारी तकदीर में लिखा था, वरना इतनी प्यारी दोस्ती ऐसे पास नहीं होती।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा यार। अब इतनी प्यारी से आपने आगाज किया है, नाम तो बताइए अपना।
1: दीदी, मैं अक्का बीकनपुर जिला मुरादाबाद से आपकी दोस्त अब दोस्त फातिमा बोल रही हूँ और रेडियो की दीवानी।
0: ओहो हो, बताइएगा कैसी है अफरोज साहब।
1: मैं तो ठीक हूँ दी, लेकिन बस थोड़ा फीवर हो गया है मुझको।
0: अच्छा, शुक्र करो थोड़ा सा हुआ है, पूरा नहीं हुआ।
1: दीदी, आज 4-5 दिन हो गए, फीवर हो गया है। इस टाइम तो पता नहीं क्यों दी तबीयत खराब हो रही है, जुकाम खांसी बहुत हो रही है।
0: अभी मानसून चेंज हो रहा है ना, मौसम बदल रहा है, बारिश गर्मी, तो उन चीजों का सामना करना पड़ता है ना, इस वजह से।
1: यही तो, इतनी गर्मी भी हो रही है ना, जुकाम, देखो इतनी गर्मी में जुकाम भी हो रही है।
0: हाँ बिल्कुल, आज आनंद सर को भी जुकाम हो गया है।
1: हाँ देखा, मैंने उनको सुन रही थी मैं, तो मुझे लगा हाँ शायद इनकी भी तबीयत खराब हो गई है।
0: हाँ जी, आज मॉर्निंग में उनको भी जुकाम हो गया, मैंने कहा सुबह सुबह आपको तोहफा मिल गया है। वो एक्चुअली ना ऐसा होता है, जैसे गर्मी से हम तुरंत यू नो शाम में आ जाते हैं, तुरंत ठंडा पानी पी लेते हैं, मौसम में बदलाव है तो उस वजह से ना चीजें हो जाती हैं।
1: यही तो जी, मतलब नींबू पानी पी लेते हैं ना, आज तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कल भी बहुत गर्मी हो रही थी, मौसम में नींबू पानी पी लेते हैं या फिर दही की लस्सी, तो वही नुकसान देती है,
0: राइट,
1: खांसी हो जाती है।
0: हाँ, तो आपने दवाई ली?
1: हाँ दी, दवाई तो मैंने ले ली।
0: ओके, चलिए अभी आराम है आपको?
1: हाँ जी, अल्लाह पाक का शुक्र है अभी।
0: ठीक है, बताइएगा और आप क्या सुनेंगे आज?
1: दीदी, आज मैं सॉन्ग तो सुनूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ लाइनें लेकर आई हूँ।
0: हाँ श्योर, सुनाइएगा।
1: अर्थ किया है प्यार का तोहफा कुछ इस तरह दिया तुमने, प्यार का तोहफा कुछ इस तरह दिया तुमने, एक ये गुलाब में सब कुछ कह दिया तुमने, तुम्हारा ये हुनर हम भी आजमाएंगे, तुम्हारा ये हुनर हम भी आजमाएंगे, लेकर गुलाब का फूल अपने हाथों में, खुशी भी आपसे मिलने जरूर आएंगे।
0: अरे हमें तो इंतजार है उस फूल का, कब आएंगे आप? जरूर आइएगा।
1: हाँ जी, मैं आपके जन्मदिन पर तो नहीं आ सकी, लेकिन मैं सोच रही हूँ मेरी तबीयत ठीक हो जाए फिर मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगी।
0: आपका मोस्ट वेलकम है डियर, आप जल्दी से ठीक हो जाए और फिर हमसे मिलने जरूर आए। ओके,
1: और आपका जन्मदिन का तोहफा भी तो रखा हुआ है ना मेरे पास।
0: अरे आपसे अनमोल तोहफा और क्या हो सकता है मेरे लिए, आप आएंगी ये मेरे लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट है यार।
1: हाँ जी, लेकिन खाली हाथ थोड़ी ना आऊंगी, अपनी दी के पास आऊंगी तो कुछ ना कुछ लेकर ही आऊंगी।
0: हाँ, आप ले आना जो आपके पेड़ है ना, आपके यहाँ पर अमरूद लेके हुए, वही ले आना मेरे लिए।
2: जो भी लाना चार लाना।
0: रीना कह रही है जो भी लाना चार लाना।
1: जी जी पता है, हाँ अगर पास में होता ना तो मैं जरूर आपको अमरूद खिलाती, और आप अमरूद खा के ना याद भी करते कि हाँ ये अमरूद कितने टेस्टी है।
0: बिल्कुल आपकी तरह है ना, मीठे मीठे।
1: दीदी बहुत मीठे हैं और बहुत ही देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। हम तो अभी से मोहित हो गए हैं, आपके अमरूद देखे भी नहीं है तब भी इतना प्यार आ रहा है हमें।
1: दीदी तो आप ही आ जाइए ना, फिर रीना दी को लेकर आ जाइए मेरे घर पे।
0: ठीक है रीना, बताइएगा क्या प्लान है आपका?
2: उड़ के आएंगे।
0: कहती है कि उड़ के आएंगे, भाई मेरे को अभी उड़ के नहीं जाना है, अभी मुझे जिंदगी जीनी है।
1: सही बात है, बस आ जाइए अमरूद खाने के लिए, इससे मेरा घर भी देख लेना और फिर मुझसे मिलकर भी चले जाना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स यार, टाइम मिलेगा तो जरूर आएंगे। एंड बताइए अफरोज, आज क्या सुनने का मन है आपका?
1: दीदी आज मैं सॉन्ग सुनूंगी, तू शायर है मैं तेरी शायरी।
0: अच्छा, अब शायरी की बात छिड़ी है तो एक शायरी सुना भी दो हमें आप।
1: दीदी हाँ, मैं एक शायरी और सुनाना चाहूंगी।
0: इरशाद,
1: लीजिए, अर्थ किया है जिसने सिखाया हमें अंदाज मुस्कुराने का, जिसने सिखाया हमें अंदाज मुस्कुराने का, उसे ही शौक है आज हमें रुलाने का। लाया था जो हमें समंदर की लहरों से छीन कर, लाया था जो हमें समंदर की लहरों से छीन कर, वही मुंतजर है आज मेरे डूब जाने का, वही मुंतजर है आज मेरे डूब जाने का।
0: क्या बात है यार, जबरदस्त शायरियाँ हैं आपकी। और कुछ कहना चाहती हैं आप?
1: हाँ जी, बस सबसे जितने भी लिसनर और दोस्त और सिस्टर सुन रहे हैं, बस उनसे यही कहना चाहती हूँ कि हफ्ते में एक बारी कॉल करें और रेडियो बजाते रहें, गुनगुनाते रहें।
0: थैंक यू इतना प्यारा बोलने के लिए। अपना ख्याल रखो और सुनवाते हैं प्यारा से गाना आपको। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गाना फ्रूस की रिक्वेस्ट पर। तू शायर है मैं तेरी शायरी, फ्रॉम द मूवी साजन। मैं लौट कर आती हूँ, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम है आपको एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने साजन मूवी का ये प्यारा सा ट्रैक सुना अलका याग्निक जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में, तू शायर है मैं तेरी शायरी। अगर दोस्तों आपको शायरी करने का शौक है ना, तो आप सोचते हैं कि कोई तो हो जो मेरी शायरी सुने, जिसको मैं सुनाऊं, तो उसके लिए आपको मुझे कॉल करना होगा। मैं आपकी शायरी सुनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है, शायरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। एंड बड़ा शायरी मुझे नहीं आती है, लेकिन सुनना अच्छा लगता है। तो आप इतना काम अगर करना चाहते हो, शायरी सुनाना चाहते हो मुझे, तो मैं सुनने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन उसके लिए आपको मुझे कॉल करना होगा दोस्तों, और कॉल करने के लिए नंबर मैं आपको बता देती हूँ। नंबर हमारा रहेगा 9833-7896-896-98-378-96-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98-96-98- नाउ टाइम हो गया है और हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी कनेक्ट हो चुके हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं, जानेंगे उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, आप सुनाओ मैडम, आप कैसी हो?
0: जी मैडम जी तो ठीक है, अपना नाम भी बताइएगा। आप अपना नाम बताइएगा सर।
1: मैम जी मेरा नाम उमेश कुमार प्रजापति है, मैं लोधीपुर मदावाद से हूँ।
0: उमेश जी बात कर रहे हैं, बताइएगा कैसे हैं सर आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: ओके चलिए ठीक ही रहना चाहिए, बताइएगा आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम जी अपने चौधरी का सुनवा दिया सॉलिड बॉडी।
0: अच्छा ठीक है, सुनवाते हैं गाना आपको, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: मैम हमारे दोस्तों के नाम ले लूँ मैं?
0: हाँ बस दो ही नाम ले सकते हैं आप, ज्यादा नहीं, ठीक है?
1: दो ही बस?
0: हाँ जी दो ही बस।
1: बहुत सारे दोस्त होंगे हमारे,
0: तो आप ना ऐसा कीजिए किसी का भी नाम मत लीजिए, ऐसे आपके कोई भी दोस्त नाराज नहीं होंगे, ठीक है? तो चलिए उमेश जी की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं एवरीवन ये प्यारा सा गाना। और दोस्तों के नाम देखिए, आपके जब बहुत सारे दोस्त होते हैं ना और उसमें से आपको अगर दो ही नाम चुनने हो तो वहाँ ना टिपिकल सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे में ना आपको करना, आपको क्या करना चाहिए एवरीवन, आपको करना चाहिए कि आप ना किसी का नाम ना लेकर आप बोलिएगा मेरे साथ मेरे सभी दोस्त सुन रहे हैं मैम और मैं सभी को ये गाना सुनवाना चाहता हूँ। उसमें आपके सभी दोस्त नाराज भी नहीं होंगे, वो भी खुश हो जाएंगे और आपका काम भी इजी हो जाएगा एंड हमारा भी टाइम मैनेज हो जाएगा, ठीक है? तो आगे से ध्यान रखिएगा, फिलहाल ये गाना सुनिएगा।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। अभी आपने गाना सुना फ्रॉम द मूवी कुली नंबर 1 से वरुण धवन और साथ में सारा अली खान जी। गाना अमेजिंग था। लेकिन दोस्तों, अगर आपके दोस्तों का कॉल नहीं लग रहा है और आपका लग रहा है तो उसमें गलती आपकी नहीं है, आप शिद्दत से ट्राई कर रहे हैं। उनको भी बोलिएगा, वो भी ऐसे ही नंबर लगाएंगे, तभी तो कॉल लग पाएगा ना। और चलो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, वो बहुत देर से इंतजार कर रही है। क्या उनका नाम है, उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग मैम, क्या नाम है आपका?
1: मैं रूबी बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, रूबी जी बात कर रही हैं, बताइएगा कैसी हैं मैम आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए।
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ, बताइए रूबी जी, क्या करती हैं आप?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, हाउसवाइफ हैं, ओके। तो बताइएगा फैमिली में आज कितना काम किया आपने?
1: मैं तो सुबह 5 बजे से शाम 10 बजे तक करती रहती
0: हूँ। अरे बाप रे, सुबह 5 बजे उठती हो, रात को 10 बजे सोती हैं आप?
1: हाँ।
0: तो अकेले सारा काम मैनेज करती हैं या घर में कोई हेल्प कराते हैं आपकी?
1: नहीं, मेरे हस्बैंड मुरादाबाद चले जाते हैं काम पे, और बच्चे हैं वो स्कूल ट्यूशन।
0: ओके, तो मतलब घर का सारा काम आप ही मैनेज करती हैं?
1: सुबह का, दोपहर का खाना, शाम का खाना, और बच्चों की ड्रेस वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम।
0: हाँ जी, चलिए, आप पहली ऐसी लेडीज हैं, ऐसी मैम हैं जिन्होंने बोला है कि मैं घर में बहुत सारे काम करती हूँ। वरना मैं बहुत सारी मैम से मैंने बात कर चुकी हूँ, तो वो बोलते हैं कि हम तो कुछ नहीं करते मैम, बस घर पर रहते हैं। मैंने कहा घर में रहना आसान बात नहीं होती, बहुत काम होते हैं।
1: घर के बहुत काम होते हैं
0: जी। तो आप रेडियो सुनती रहती हैं मैम?
1: रेडियो मेरा चलता रहता है सुबह से शाम तक।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है, बताइएगा आज
1: टाइम बहुत अच्छा गुजरता है रेडियो के सहारे।
0: मतलब काम करते रहते पता नहीं चलता है, राइट?
1: हाँ
0: जी। तो क्या फरमाइश है मैम आपकी?
1: मुझे ओल्ड सॉन्ग सुना, रिमझिम के गीत सावन गाए।
0: रिमझिम के गीत सावन गाए।
1: हाँ,
0: अरे वाह, चलिए सुनवाते हैं गीत आपको। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।

मोस्ट वेलकम मैम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं मैम की पसंद का बहुत ही प्यारा सा गाना, लता मंगेशकर जी साथ में मोहम्मद रफी साहब जी की बड़ी प्यारी सी आवाज में ये प्यारा गाना। बस मैं लौट कर आती हूँ।

0: 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: कोई मिल गया,
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और वक्त हुआ है 10:04 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। एंड अभी आपने प्यारा सा गाना सुना मोहम्मद रफी साहब साथ में लता मंगेशकर जी की बड़ी प्यारी सी आवाज फ्रॉम द मूवी अनजाना जो 1969 में आई थी। और इस गीत को लिखा था आनंद बख्श जी ने, म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, राजेंद्र कुमार साथ में बबीता जी पर फिल्माया गया प्यारा सा गाना। आप एंजॉय कर रहे थे एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका?
1: जी मुस्लिम बात कर रहे हैं, जिला मुरादाबाद।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं आप?
0: हाँ जी जी जी जी सर, सब बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा आज क्या सुनने का मन है आपका, क्या फरमाइश है आपकी आज?
1: जी फरमाइश है जुवा फिल्म का गाना है मैं माटी का गुड़िया।
0: अच्छा, मैं माटी का गुड्डा तो सोने की गुड़िया, राइट?
1: जी जी
0: जी सर, तो सुनवाते हैं गीत आपको। आपने हमें कॉल किया उसके लिए आपका धन्यवाद सर। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा गीत, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत। आपके पास भी है ये मौका, जल्दी से हमें कॉल लगाएगा आप। मोबाइल नंबर हमारा रहेगा 9837896896।

0: दोस्तों जिद पे तो आप पढ़ेंगे तभी तो आपका कॉल लग पाएगा ना। कहने का मतलब है कि जब आप कंटिन्यू ट्राई करेंगे तभी आपका कॉल लग पाएगा, क्योंकि इस शो में ना हमारे जो लिसनर्स हैं उनकी जो कतार है बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन इतनी दिव्यानियत है रेडियो के प्रति, इतना प्यार वो करते हैं कि कॉल लगाए बिना नहीं रह पाते हैं। और अच्छा लगता है कि जब हमारे श्रोता इतना प्यार करते हैं एफएम मुरादाबाद से। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बढ़िया।
0: ओके। हाँ जी हम भी बहुत अच्छे हैं, प्रभु की कृपा है। आप बताइएगा क्या सुनेंगे सर आज आप? जी बताइएगा। अच्छा कोई भी गाना सुनना है आपको, कोई भी ट्रैक सुनवा देना।
1: मैं भी शेर सुनाना था मैं।
0: जी जी सुनाइए सुनाइए सर।
1: मुझे याद करना भुलाने से पहले।
0: हाँ जी।
1: मुझे याद करना भुलाने से पहले कि दुनिया तुम अपनी बताने से पहले। नहीं फिक्र होती गहरों की हरगिज, नहीं फिक्र होती गहरों की हरगिज, खुद अपने ही आंसू बहाने से पहले। अगर सोचना है तो सोचो खुद ही को, किसी के भी उंगली उठाने।
0: बहुत खूब, बहुत प्यारी लाइनी थी आपकी सर।
1: ठीक है मैम,
0: आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद। और सुनवाते हैं प्यारा संगीत। अगर आप ऑन द वे अभी कार में राइट नाउ, तो सो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि केयरफुली गाड़ी चलाइएगा और अपने प्यारे से क्यूट से फेस पर ना प्यारे से स्माइल भी रखिएगा, क्योंकि जब आप सब मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। मुस्कुराते हुए घर जाइए और ये प्यारा सा गाना सुनते जाइए।

0: दोस्तों 90s के जो ट्रैक होते हैं ना, जब हम उनको सुनते हैं ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि सुनते ही रह जाओ। इतने खूबसूरत गीत होते हैं और मतलब सुकून मिलता है सुनकर, है ना। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमें हमारी पुरानी यादों में ले जाते हैं फिर से। तो अभी हम जानते हैं अपने अगले कॉलर की फरमाइश, उनसे जानेंगे वो कौन सा गाना आज सुनना चाहते हैं, क्या उनकी फरमाइश है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं ना इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना अपना कि काश मेरा भी कोई गाना जल्दी से प्ले हो जाए मेरी पसंद का, तो उसके लिए थोड़ा सी मेहनत तो आपको करनी होगी ना। और मेहनत करने के लिए आपको कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं दे रही हूं मैं, बस छोटा सा काम आपको करना है। जो आपके हाथों में फोन है ना इस वक्त जो आप चला रहे हैं, हाँ जी, इसी मोबाइल से आपको मुझे कॉल करना है और हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। आपको इस नंबर पे कॉल लगाना है, सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है, बस इसी सा काम है। एक दोबारा ट्राई करो, मुझे तो यकीन है कि आपका कॉल लग जाएगा। बाकी आपकी चॉइस है कि आप कितनी शिद्दत से नंबर लगा रहे हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मैम जी आदाब।
0: आपको भी आदाब, नाम बताइएगा अपना।
1: मैं ग्राम धनुपुरा जिला रामपुर से आपका अनीस रहमान बात कर रहा हूँ मैडम। आप
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: मैम अच्छा हूँ, अल्लाह का करम है, आप मेरी दुआएं हैं, आप बताइए आपके अपने परिवार में सब लोग कैसे हैं?
0: जी बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं, आप बताइएगा सर।
1: जी मैम बस आपको याद कर रहे थे मैम, और आपकी आवाज़ सुनी तो मैम मन को खुशी मिली
0: जी।
1: मैम से बात हो रही है तो और ज्यादा खुशी मिली।
0: थैंक यू सो मच सर। बताएगा आज कौन सा गीत आपको सुनना है?
1: जी मैम मैं पहले कुछ कहना चाहता हूँ आपसे।
0: हाँ जी।
1: फिलहाल मैं खानदान नर्सरी से ताल्लुक रखता हूँ और नर्सरी का काम करता हूँ मैम।
0: जी जी जी सर, आपने बताया था मुझे। जी
1: तो पौधे में ऑर्डर पर पौधे पहुँचाता हूँ।
0: ओके।
1: किसी भी प्रकार का पौधा हो।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो हाँ बताइएगा।
1: जी मैम मैं यही कहना चाहता हूँ क्योंकि फिलहाल इस टाइम बरसात का मौसम चल रहा है, ठीक है मैम?
0: जी जी जी।
1: और बाकी रास्ते में जो पानी खड़ा हो जाता है उसको साफ सफाई रखें, और अपने घर की और अपने घरों में और आस पास पड़ोस की सफाई रखें तो बहुत अच्छा रहेगा सर, इसलिए यही कहना चाहूंगा।
0: एग्जैक्टली राइट सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है क्योंकि मानसून है, मौसम बारिश का है और कहीं गड्ढों में कहीं ऐसी जगहें होती हैं जहां पर पानी भर जाता है, तो उसको नियमित रूप से साफ सफाई करना बहुत जरूरी है ताकि मच्छर ना पनपे, और हर एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है। बट आपने हमें कॉल किया उसके लिए धन्यवाद। सुनवाते हैं आपकी पसंद का प्यारा सा गीत। सर आप सुनना चाहते हैं आंदोलन मूवी का गाना, कितने दिनों के बाद मिले हो?
1: जी
0: तो सुनवाते हैं ये गाना, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। कितने दिनों

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हेलो, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स. वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी है आपके साथ और ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6. वक्त हुआ है 4:49 और खूबसूरत गीतों का ये सिलसिला चल रहा है. साथियों, आप भी इस फोन इन कार्यक्रम में मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने फेवरेट गाना सुन सकते हैं. उसके लिए आपको कॉल लगाना होगा और आप सोच रहे हैं कि बस एक बार ट्राई करते हैं, लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं. तो साथियों, बता देती हूँ, एक बार कोशिश करने से ना कामयाबी नहीं मिलती है. बहुत लकी होते हैं जिनका कॉल लग जाता है, बट थोड़ा तो मेहनत करनी होती है ना एवरीवन. तो अभी हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुई है. हेलो फरमाइश.
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: जी वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम रिहाना है.
0: रिहाना जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी रामपुर से.
0: रामपुर से, रामपुर से बात कर रहे हैं आप?
1: यस मैम.
0: ओके, बताइए रिहाना जी, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं फिलहाल तो पढ़ाई कर रही हूँ.
0: अच्छा, क्या स्टडी कर रहे हो आप?
1: बी ए थर्ड सेमेस्टर.
0: ओके, वेरी गुड. और एफ एम मुरादाबाद सुनना कैसा लगता है आपको?
1: जी बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है.
0: एंजॉय कर रहे हैं आप?
1: यस मैम.
0: ओके, तो बताइएगा आज आपका क्या सुनने का मन है?
1: जी एक सॉन्ग सुनवा दीजिए. आरजू की राहों में धड़कनों की बाहों.
0: ओके, तो रिहाना जी सुनवाते ही गाना, कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, टेल मी.
1: नहीं, कुछ तो नहीं कहना चाहते, बट हमारा भांजा बात करना चाहता आपसे.
0: ओके, कराइए.
1: काफी टाइम से बोल रहा हूँ, कर लीजिए.
0: हेलो, क्या नाम है आपका?
2: अब्दुल्ला.
0: अब्दुल्ला, अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है आपका. पढ़ाई करते हो आप? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? अच्छा, ओके, अभी आप बहुत छोटे हो. घर में सबको परेशान तो नहीं करते आप, या करते हो? ओके, फिर आप अच्छे लड़के हो. हाँ, गुड बॉय. चलो अब्दुल्ला, सुनवाते हैं प्यारा से गाना, आप एंजॉय कीजिएगा. ठीक है? ओके, बाय. तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद हम आपसे फिर से कनेक्ट होते हैं. आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइएगा.

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: जा जी रहे अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करो श्रोताओं, तो 5:00 यानी कि 14 मिनट हो चुके हैं राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। इवनिंग मस्ती शो में आप आर जरीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, और आज की तारीख यानी कि 23 जुलाई अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। और आज का जो टेम्परेचर है यानी कि प्रीटी सन निकली हुई है। आज प्रीटी सन उसको बोलते जो थोड़े से बादल, थोड़े धूप, कभी छाव कभी धूप निकल आती है, और हवाओं की बात तो मत करो यार। मतलब आज का जो मौसम है, देखिए गर्म धूप है, हवाएं हैं, बादल है, मतलब अभी ये जो ऐसा मौसम है यानी कि 15 अगस्त तक रहने वाला है ऐसा मौसम। और 15 अगस्त को आप देखेंगे सेम ऐसा ही वेदर होगा, हवाएं तेज चलेंगी, बादल होंगे, कभी धूप कभी छांव, इतना मजा आएगा ना। ऊपर से हवाएं, ओ माय गॉड, इतनी नमी वाली हवाएं चलेंगी जो आप धूप में भी खड़े रहेंगे ना तभी आपको सुकून मिलेगा। तो ये 15 अगस्त तक ऐसा वेदर रहने वाला है। बीच बीच में बारिश आएगी, लेकिन जो ये वाला वेदर है वो 15 अगस्त तक तो जरूर रहेगा श्रोताओं। और साथ ही साथ आप दिल्ली से हैं तो बहुत सारा अपडेट है आप सभी के लिए, मुरादाबाद के लिए तो है ही है। देखो, क्योंकि दिल्ली में इस टाइम बहुत सी चीजें हैं वो बंद भी हो रही हैं, और आखिरकार आज का जो 23 जुलाई आज का स्पेशल डे क्या है, आज का हिस्ट्री क्या कहता है, हर एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो बस बने रहिए आरजू रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और ऊपर से आपने गड्डी होले होले चलानी है, बिल्कुल भी जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। दाएं बाएं जरूर देखना है, रेड लाइन का भी आपने जरूर ध्यान देखना है। अगर आपने रेड लाइन का ध्यान नहीं रखा और अपनी गाड़ी आगे निकाले, वहीं कब आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। आप सोचते रह जाएंगे कि आखिरकार ओ माय गॉड ये हुआ क्या है। इसीलिए ध्यान से संभल के गाड़ी चलाइए और आगे बढ़ते रहिए अपनी जिंदगी में। और देखिए ये जो वेदर है, इस वेदर में ना मौसम हर किसी की तबीयत खराब होएंगी, जुखाम खांसी, किसी को फीवर बहुत होएंगे, तो इसमें अपने आप को ध्यान रखना है। अभी लगे आपको हल्का सभी की बॉडी में पेन हो रहा है, खांसी हो रही है, गले में खराश हो रही है, तो आपको उसको नजरअंदाज नहीं करना है, घर के नुस्खे नहीं अपनाने, आपने तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेकर आनी है, क्योंकि ये वायरल वाली जो बीमारियां ना वो यहां से अब शुरू हो जाएंगे श्रोताओ। चलिए फिलहाल लौट कर आते हैं आप सभी के बीच, फिलहाल गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार गदर 2 मूवी से गाना सुनते हैं। बस बने रहिए आरजरीना के साथ और सुनते रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए ईकेसीसी पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत केसीसी पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
1: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करो इवनिंग मस्ती शो में तो समय हो चुका है 5:24 श्रोताओं, और आज की तारीख 23 जुलाई, यानी कि आज की तारीख जिनका भी बर्थडे ही आप मैसेज करके बता सकते हैं जी। क्योंकि देखिए जब रेडियो पर आपके मैसेज यानी कि सेलिब्रेट किया जाता है, विश किया जाता है, तो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल वाली खुशी होती है। फिलहाल आज बॉलीवुड एक्टर और सिंगर यानी कि हिमेश रेशमिया जी का आज बर्थडे है। 23 जुलाई 1963 में इनका जन्म गुजरात में हुआ था, और इन्होंने यानी कि बचपन से इनको सिंगिंग का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा। और इन्होंने जब बॉलीवुड में अपना कदम रखा तो फर्स्ट मूवी है यानी कि जो 1998 में आई थी, प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन इस फिल्म के गाने से उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई, इतनी पहचान नहीं मिल पाई। फिर आया 2003 में तेरे नाम मूवी, तेरे नाम जो गाना इन्होंने गाया उसके बाद तो भैया इतनी पॉपुलर बन गई है कि हर लड़के की भाई चेहरे पे भी देखते तो उनके बाल तेरे नाम, बस बीच मांग तेरे नाम तो वहां से इनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और फिर ये आगे बढ़ते रहे। और देखिए अपनी जिंदगी में ना आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीछे जो हुआ होने दो, उसको पीछे पलट कर नहीं देखना चाहिए हमें। और ये जो संगीत का सपना था ये सिर्फ और सिर्फ इनके पिताजी के सपना था। इनके पिताजी एक सिंगर बनना चाहते थे जो कि नहीं बन पाए, तो इन्होंने अपने पिताजी का जो सपना है उसको पूरा किया है। और आज इनके इतने सारे गाने हैं, इतनी पॉपुलैरिटी वाले गाने हैं जो कि भाई क्या ही कह सकते हैं। और एक और गाना इनका जो बेहद खूबसूरत है जो 2005 में आया, आशिक बनाया आपने, मतलब इस गाने के तो हर कोई दीवाने हैं, हर कोई दीवाने है भैया। सो आज आपका भी बर्थडे है तो बिल्कुल हैप्पी वाला बर्थडे, और हिमेश रेशमिया जी को हमारी रेडियो की टीम की तरफ से हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। तो देखिए जी आपका बर्थडे है तो बिल्कुल मैसेज करके बता सकते हैं, वेटिंग फॉर यू मैसेज, हम वेट कर रहे हैं। फिलहाल एक हिमेश रेशमिया जी का गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार, जिनको बहुत हर किसी को पसंद है ये गाना और पॉपुलैरिटी भी मिली इस गाने से। चलिए आशिक बना।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
4: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना आपने एंजॉय किया है। मेरा नाम मैरी सतत कपैरी है। हाँ जी, हेलो जी, हेलो दोस्तों, आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आज की तारीख 23 जुलाई, यानी कि 23 जुलाई के इतिहास के जो पन्ने हैं, एक बार उसके तरफ बढ़ते हैं। कई खास घटनाएं हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, यानी कि आज ही के दिन 1927 में आज ही के दिन मुंबई में रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया था। और यही कारण है कि हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। रेडियो देखिए सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है, बल्कि शिक्षा, मनोरंजन, समाज से जुड़े रहने के लिए हर एक चीज रेडियो के थ्रू आप तक पहुंचता है और हमें अच्छा लगता है। रेडियो देखिए एक ऐसा माध्यम है जो सिर्फ आपको, आपके लिए समय नहीं मांगता है, बल्कि आप काम करते कहीं भी रहे तब भी आप रेडियो से एंजॉय कर सकते हैं, रेडियो से कनेक्ट हो सकते हैं। और वहीं यानी कि 1993 में भारत ने पहले स्वदेशी संचार उपग्रह यानी कि INSAT 2GB का भी लॉन्च आज ही के दिन किया था, जिसे दूर संचार, मनोरंजन की जानकारियां यानी कि टीवी के प्रसारण को और नई मजबूती मिली। तो श्रोताओं, आज के दिन इतिहास के पन्ने बहुत ही स्ट्रांग वाला है। अगर आपने अभी तक इतिहास के पन्ने नहीं देखे तो कोई बात नहीं, रीना है आप सभी को, ठीक है जी, बताने के लिए। फिलहाल लेते हैं यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद लौट कर आते हैं। बस बने रही आरजू रीना के साथ।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6। और समय की बात करूं तो 5:47 हो चुके हैं श्रोताओं। देखिए, अगर आप दिल्ली से हैं या फिर आप कहीं से भी हैं और दिल्ली में रहते हैं और मेट्रो से आप ट्रैवलिंग करते हैं रोज, तो आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो यानी कि दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। जी हाँ, अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो जरूर सर्च करके सफर करिए, क्योंकि पता चले कि आपको जाना है जिस स्टेशन पर, वही स्टेशन बंद होए तो थोड़ा दिक्कत परेशानी हो जाएगी। साथ ही साथ यानी कि 16 स्टेशन बंद हो चुके हैं, जिसमें है लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, राजीव चौक, भैया झटका लग गया मेरे को क्योंकि मैं भी राजीव चौक बहुत, जब भी घर जाती हूँ तो मुझे राजीव चौक से ही चेंज करना पड़ता है, लेकिन पता चल रहा है कि भैया अब तो मुझे या तो ट्रेन या बस। वही अगर मैं बात करूं रामकृष्ण आश्रम मार्ग और सुप्रीम कोर्ट, जनपथ, मंडी हाउस, ये जो स्टेशन है ये बंद कर दिए गए हैं। तो अगर आप रेलवे स्टेशन यानी कि मेट्रो स्टेशन से ट्रैवलिंग करते हैं तो एक बार सर्च जरूर करके जाइएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और साथ ही साथ भैया ये भी कहा जा रहा है कि हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय शौचालय स्टेशनों पर इन जो सुविधाएं हैं यानी कि सामान्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। भैया करा दो, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया है तुम्हारा, बहुत बहुत मेहरबानी है। चलिए जी, फिलहाल 16 मेट्रो बंद हो गए भाई दिल्ली में, तो इस चीज का ध्यान रखिए और यूं ही अपने सफर को आसान बनाइए और अपने सफर पर निकल जाइए, क्योंकि देखिए जब सफर पर निकल जाते हैं ना तो एक अलग ही मजा आता है। और कभी कभी देखिए सफर पर जाने के लिए ना हमें किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम बाहर जाते हैं तो मन में बस एक ही ख्याल आता है, यार अकेले कैसे सफर कर पाएंगे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए हर काम पॉसिबल है, जब आप आए अकेले तो जाएंगे अकेले, तो सफर भी अकेले करिए ना, करके देखिए। देखिए कभी कभी ना खुद के लिए रिस्क ले लेना चाहिए। आप कब तक डरते रहेंगे, कब तक डिपेंड रहेंगे किसी के ऊपर कि भैया वो चलेगा तभी जाएंगे। मान लीजिए अगर वो नहीं जाएगा तो इसका मतलब आप घूम ही नहीं पाएंगे कहीं भी, है ना। तो इसीलिए खुद के लिए स्टेप लीजिए, आप खुद बाहर निकलिए, आपका जो अंदर का हेजिटेशन है ना वो छू मंतर हो जाएगा। आई नो कि 2-3 दिन आपको लगेगा कि यार फर्स्ट टाइम जाऊंगा इस लोकेशन पर तो कैसा लगेगा, मैं किसी को जानता नहीं हूं, मैं किसी को जानती नहीं हूं, तो 1-2 दिन अजीब लगता है। फिर आपको पता चल जाता है जब आपकी डर अंदर से अच्छे से निचोड़ जाती है ना, तो फिर आप अच्छे से सफर कर पाते हैं, क्योंकि आपकी जो हेजिटेशन है ऑलरेडी वो दूर हो जाती है। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं श्रोताओं। फिलहाल आपसे यही कहना चाहेंगे, सुनते रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी समय की बात करूं तो 5:50 हो चुके हैं, ठीक है जी।

हाय, क्या बात है जी। लेकिन दारू पी के डांस भी मत करिए और दारू पी के गाड़ी भी नहीं चलानी चाहिए। अगर आप दारू पी के गाड़ी चलाते हैं तो कब आपका चलान कट जाता है आपको भी नहीं पता चलेगा। श्रोताओं, फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहेंगे, देखिए आप ऑन द वे हैं, यानी कि घर के लिए रवाना हो चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जो पैदल सवारी है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, जो ई रिक्शा में जाने वाली उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। अच्छे से अपने घर पहुंचिए क्योंकि घर वाले इंतजार करते रहते हैं। लेकिन एक बात जो बहुत कॉमन है भैया, अगर घर जाते हैं ऑफिस से निकल के ना, तो देखिए थोड़ा सा मूड अगर खराब है तो उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि घर पर बच्चे भी हैं, मम्मी भी है, फैमिली भी है, वो बस यही कामना करती है, ये उम्मीद करती है कि जब आप घर जाए तो एक मुस्कान के चेहरे के साथ घर जाए, यानी कि आपके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए ताकि घर वाले भी देखकर आपको खुश हो जाए कि हाँ चलो बेटा अच्छा है, अच्छी है, खुश है। तो हमें भी मतलब जो हमें कोई प्रॉब्लम है वो घर वालों के किसी के आगे शो नहीं करना चाहिए। आप जैसा जहां हो, जिस एनवायरनमेंट में हो, उस एनवायरनमेंट में घुल जाओ। आई नो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है, हम कर सकते हैं, उस चीज को करिए ताकि आपको देखकर, भाई हर किसी के जिंदगी में टेंशन है, प्रॉब्लम है, बस एक ही काम करिए, खुश रहिए। खुश रहना बहुत जरूरी बात है, और सफर में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, हॉर्न बार बार आपको नहीं बजानी है, क्योंकि आप हॉर्न बजा तो देते हैं लेकिन जो बाहर वाला इंसान है बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है आपको, बाहर से वो गालियां वालियां भी दे देगा ना, आपको भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए थोड़ा संभल के हॉर्न नहीं इतनी बजानी है आपने, इरिटेट नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक अगला नहीं निकलेगा तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। और रेड लाइन का पूरा ध्यान रखिए, इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इस टाइम अगर आप ट्रैफिक में हैं कहीं पर, काफी टाइम से जाम लगा हुआ है, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9803789689 ताकि उस रूट से जो भी आने वाले हैं वो थोड़ा संभल जाए और भीड़ से बच सके। चलिए, यानी कि फिलहाल न्यूज का टाइम हो गया है श्रोताओं, देखिए हर किसी को बेसब्री से इंतजार

0: इंतजार होता है कि आज का ताजा खबर क्या है। तो देखिए आरजे रीना आपके साथ है, बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए, बस चाहे आप मुझे गाड़ी में सुन रहे हैं, चाहे घर पर सुन रहे हैं, आप कहीं भी सुन रहे हैं, बस मुस्कुराइए और इंजॉय करिए इस पल को, इस शाम के पल को इंजॉय करिए, क्योंकि शाम का जो पल होता है बहुत शांत वातावरण होता है। तो इसी वातावरण के साथ अपना शहर का सामुदायिक रेडियो सुनते रहिए। फिलहाल म्यूजिक यानी कि न्यूज ब्रेक का टाइम, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोता आप सभी के बीच।
1: और मुझे रेनू को दीजिए इजाजत।
2: नमस्कार
1: नमस्कार।
3: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट पेपर लीक मामले पर फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने के निर्णय की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये निर्णय युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया है।
1: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर श्री साइकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में डॉ सिंह ने कहा कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता के 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती हुई घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी स्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में शनिवार तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। प्रशासन ने पुणे और कोंकण की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 5 विकेट पर 108 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी।
5: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है, आर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं श्रोताओं, तो देखिए घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:07 हो चुके हैं। और श्रोताओं, अगर आप मैच देखने के भैया दीवाने हैं तो मैं आपको बता दूं, यानी कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच यानी कि T20 मैच है वो शुरू हो चुका है, यानी कि 4:30 से मैच शुरू हो गया था। और ये मैच यानी कि किस किस दिन है, एक तो आज यानी कि 23 जुलाई, दूसरा जिम्बाब्वे के साथ यानी कि मैच है 25 जुलाई को, और थर्ड मैच है यानी कि T20 मैच थर्ड है 26 जुलाई को। तो बिल्कुल अब मैच देखने के दीवाने हैं, तो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच मैच चल रहा है भैया, आप ऑफकोर्स मैच देख सकते हैं, मैच का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि दीवाने वही भाई जो मैच के दीवाने हैं ना, वो किसी के रोकने से नहीं रुकते, उन कुछ भी हो जाए भाई मैच तो देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिलहाल अर्जुनीना आप सभी के बीच भैया टाइम टू टाइम अपडेट देने के लिए, और आपको पता ही चल गया है कि 25 यानी कि सेकंड मैच होने वाला है 25 तारीख और थर्ड मैच होने वाला है 26 जुलाई को। चलिए इसी के साथ एक और म्यूजिकल ब्रेक और फिर लौट कर आएंगे, और आपको मैं बताने वाली हूँ वेदर अपडेट और जो रामायण मूवी आने वाली है, यानी कि दिवाली के मौके पर वो मूवी रिलीज होने वाली है। तो आपको बताने भैया कि ये जो रणवीर कपूर वाली, जो रणवीर कपूर यानी कि जो राम बनेंगे, या फिर वो आपको रामायण, कौन सी आपको रामायण अच्छी लगती है, जो एक रामानंद सागर वाली रामायण अच्छी लगती है या फिर ये वाली रामायण। मैं तो सच बताऊं, मुझे रामानंद सागर वाली बहुत अच्छी, वो सिंपल सादगी और एक संस्कृति जो हमारे इंडियन की है कल्चर, वो पूरा उसमें दिखाया गया एक समूद सादगी के साथ। लेकिन उसके बाद जो और रामायण बने तो ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन वो रामानंद सागर वाली रामायण अलग ही नेक्स्ट लेवल वाली। तो आपने मैसेज करके बतानी कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी वाली रामायण अच्छी लगी, रामानंद वाली या फिर रामानंद सागर वाली या फिर जो और रामायण बनी है वो अच्छी लगी, आप मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9837896896। इसके ऊपर भी बात करने वाले, फिलहाल गाना सुन लेते हैं जी।

0: गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 और समय की बात करूं इवनिंग मस्ती शो में तो समय हो चुका है भैया देखिए यानी कि 6:17 हो चुका है। अगर वेदर की बात करूं तो अगले यानी कि 3 से 4 दिन के बीच यानी कि रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब हर जगह यानी कि तबाही मचने वाली है यानी कि बारिश आंधी आने की संभावना जताई जा रही है भैया। तो इसीलिए 3 से 4 दिन के बीच अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के अपनी सेफ्टी के साथ घर से बाहर निकलिए क्योंकि इस समय अगर आप सेफ रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे जी। और बरसात के मौसम में तो आपसे यही कहना चाहेंगे देखिए अगर शाम को आप घर से बाहर निकलते हैं तो फुल स्लीव के कपड़े पहनकर निकलिए और देखिए गर्मी भी है तो थोड़ा कॉटन के कपड़े मतलब डार्क कपड़े मत पहनिए, हल्के कलर के कपड़े पहनिए, फुल स्लीव के कपड़े पहन के बाहर निकलिए क्योंकि इस टाइम जब बरसातें आने शुरू हो जाती है ना तो मच्छरे भी भैया अपने रुद्र अवतार में हो जाते हैं। उनका ये कहना होता है कि भाई अपना टाइम आ गया है, हम हैं अब जबरदस्त धुरंधर, तो इन धुरंधर से आपको बच कर रहना है अदरवाइज बीमारियां एकदम घर कर लेंगी। और थोड़ा सा भी खांसी जुकाम होता है तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए क्योंकि आप ही अपनी बॉडी का केयर कर सकते हो, दूसरा कोई भी नहीं आएगा। और बताऊंगी कि आपको तुलसी अगर आप खाते हैं तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ये कहा जाता है कि एक दिन में 10 से 12 तुलसी के पत्ते हैं वो चबा लेनी चाहिए, उसके क्या क्या फायदे होंगे वो भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया श्रोताओ।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
2: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
1: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

भाई साहब दिलजीत सिंह के गाने सुनकर तो भाई मजा ही आ जाता है, बल्ले बल्ले दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। जी आज रीना के साथ अब कनेक्टेड श्रोता, और समय की बात करूं तो 6:22 हो चुके हैं, और अभी हम तुलसी की बात कर रहे थे, तुलसी के पत्ते के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप तुलसी के पत्ते अगर खाते हैं तो क्या क्या फायदे आपको मिल सकते हैं, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिलता है, साथ ही साथ सर्दी खांसी और गले की खराश से, गले में अगर खराश हो तो उससे भी राहत मिलती है, पाचन को बेहतर करता है, शरीर में अगर सूजन है बॉडी में तो उसको कम करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रण रखने में मदद करता है, तनाव को कम करता है, मानसिक शांति बहुत अच्छा मिलता है, रिलैक्स मिलता है, और साथ ही साथ मुंह से अगर बदबू आ रही हो वो भी ठीक करता है, ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है ये। और ये कब खाने चाहिए, यानी कि सुबह के समय खाली पेट 3 से 5 पत्तियां चबा सकते हैं, या फिर नाश्ते के बाद भी आप ले सकते हैं, या फिर गर्म पानी में बॉईल करके आप सिप सिप करके पानी पी सकते हैं। और ज्यादा आपने पत्ते नहीं खाने, कम से कम 3 से 4-5 पत्तियां होनी चाहिए जिसको आप खा सकते हैं, और ये आपको बेहद फायदा देने वाला है, बेहद फायदेमंद होता है श्रोताओं। और इसी के बीच आप सभी के बीच लेकर आने वाली कड़क सवाल, लेकिन मैसेज है कुछ, वो भी शामिल कर लेते हैं। हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, इवनिंग मस्ती शो में आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जी, गाने बिंदास सुना रही हो। ये कनेक्ट होती है ललिता कश्यप जी नवीन नगर मुरादाबाद से। मैम चाय पी लीजिए, मौसम बहुत ही अच्छा है, हवाएं अच्छी ठंडी चल रही हैं, क्या बात है जी। मैम हमें रामायण सादगी वाली बहुत अच्छी लगती है, क्या बात है जी। और आज हिमेश रेशमिया एक्टर का बर्थडे है, तो हैप्पी वाला बर्थडे, क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, उनकी तरफ से मैं बोल देती हूँ। और आज जिनका जिनका भी बर्थडे है तो हैप्पी वाला बर्थडे। चलिए जी, हिमेश रेशमिया के एक गाना सुनना है इनको, बिल्कुल डेफिनेटली हम आपको उनका एक गाना सुनवाएंगे। और फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो हमारे पास मैसेज आता है दीपक जी का, मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं, और इन्होंने कहा कि आज जो आपने हिस्ट्री के बारे में बताया है बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच जी। उमेश जी कनेक्ट होते हैं दिल्ली से, और इनका कहने की मैं FM रेडियो मुरादाबाद है वो बहुत सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हालांकि हमारे दिल्ली में भी बहुत रेडियो है, जब देखो रेडियो रेडियो, लेकिन मुरादाबाद का रेडियो की बात ही अलग है, कुछ मतलब अच्छा लगता है सुनना, क्या बात है, थैंक यू सो मच। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
3: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
2: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: ओए होए, हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। समय की बात करूं तो 6:33 हो चुके श्रोताओं, और इसी बीच मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के बीच कड़क सवाल, यानी कि आरजे रीना कनेक्ट हो गई है भैया इवनिंग मस्ती शो में। जो कि देखिए, आरजे रीना आए और आपसे कड़क सवाल ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है जी। तो आज का हमारा कड़क सवाल है, बहुत ही सिंपल फैंटास्टिक वाला है, बहुत ही आसान है, बस विमेन के लिए ही है और आसानी से आप बता पाएंगे जी। यानी कि देश की बेटियों ने इतना नाम रोशन किया है, जो कि उनके बारे में जाना तो भाई बनता है ना, तो चलिए जानते हैं। यानी कि आज का कड़क सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? मैसेज करके बताना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896। आपने मैसेज करके बताना है जी, यानी कि भारत की पहली, यानी कि भारत की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति कौन थी। देखिए, महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाओं के बारे में बताना है, यानी कि भारत की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति कौन थी। सोचिए, मैसेज करिए, हमें आपके मैसेज का इंतजार रहेगा, क्योंकि देखिए भारत की बात है और पता तो होना चाहिए, क्योंकि हम सब इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में रह के अगर पता ना हो कि भारत की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये तो गलत बात है जी, बिल्कुल गलत बात है। सोचिए, एक और प्यारा सा गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: अपडेट है मेरे पास इतना सारा, मतलब एक गाने के विवाद भी मैं अगर लाइव आऊंगी ना तभी भी मैं आज पूरी अपनी जो पिटारे की जो मैं आज पिटारे में भर के लाई हूं ना वो नहीं बता पाऊंगी। सो आज यानी कि चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती मनाई जाती है, जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। आजादी उनका सिर्फ नाम नहीं बल्कि उनका संकल्प था कि उन्हें अंग्रेजों के सामने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, दुश्मनों की गोलियों का सामना हम डटकर करेंगे, आजाद ही थे आजाद ही रहेंगे और हमेशा हमारा देश आजाद रहेगा। तो आज उनकी जयंती है चंद्रशेखर आजाद जी के, उनकी वजह से आज हमारा देश है जो खुलकर सांसें ले पा रहा है। क्योंकि 23 तारीख सिर्फ कैलेंडर का ही दिन नहीं बल्कि हमारे देशभक्त और साहस की पहचान है। तो इसी के साथ बहुत आज ढेर सारी बातें हैं और मैंने आप सभी से आज का कड़क सवाल भी बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल वाला पूछा है, जो कि हर बच्चे हर किसी को पता होना बहुत जरूरी है। मैंने आज आप सभी से कड़क सवाल में यही पूछा है कि भारत की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति कौन थी, वो आपने मैसेज करके बताना है। नंबर है 9837896896, यानी कि भारत की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति कौन थी। सोचिए, लौट कर आते हैं और फिर करते हैं बातें आप सभी से। श्रोताओं बने रहिए आर्जुरीना के साथ, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
1: बेबी नी बेबी तेरी अख देवे डोपामीन, हल्का जा सानू तेरा टच देवे डोपामीन।

भाई साहब, ये वो गाना है जो इंस्टाग्राम पर ना तहलका मचा रखा है भैया। इस गाने ने, सच बताऊं फिलहाल तो जंतर मंतर ने तहलका मचा रखा है, यानी कि बच्चों ने जो अपने लिए खुद के लिए आवाज उठाया है। और अपने लिए आवाज उठाना भी चाहिए, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना, अगर आप चुप रहो तो बहुत सिंसियर, बहुत संस्कारी हो, अदरवाइज अगर आप उठाते हो आवाज, अपने लिए स्टेप लेते हो, तो आप बहुत बड़े बदतमीज हो, ये कहा जाता है। मुझे लगता है कि अपने लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। जब तक आप आवाज नहीं उठा पाएंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा। और जब बात हो एजुकेशन की, तो उसके लिए तो भाई उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई बच्चे इतने मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया, वो पेपर दोबारा होएगा, तो देखिए कितना दुख आता है। ऊपर से आजकल के जो जेंजी

उनके अंदर पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस बना के रखने चाहिए। और देखिए सावन का महीना है, बहुत ही कम समय रह गए, यानी कि आज 23 तारीख है, यानी कि 30 जुलाई

यानी कि 23 जुलाई से जो कावड़ यात्रा है वो शुरू हो जाएगी, जिसके लिए तैयारियां बहुत दमदार तरीके से किए जा रही हैं। यानी कि सड़कों की जो सफाइयां है वो अच्छे से की जा रही है। अब की बार पानी वगैरह की व्यवस्था बहुत अच्छे से रहने वाली है। और साथ ही साथ जब भी कावड़ की भाई ये होता था कि सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो जो डीजे वगैरह की भाई तैयारियां बहुत पहले से तैयारी हो जाती थी। इतनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची जो डीजे की जो भाई लेकर जाते हैं, वो कहा जा रहा है कि अब की बार ये बैन कर दिया जाएगा। देखिए, जब हम इतने बड़े बड़े डीजे लेकर जाते हैं, और आप यकीन मानिए कि अगर आप डीजे के पास खड़े होंगे ना, तो आपकी बॉडी के हर एक पार्ट रोम रोम ऐसे झटका लगता है ना कि भाई कुछ कह नहीं सकते। एक टाइम के लिए तो ऐसा लगता है कि बहरे हो गए, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सच में। और ऐसे में जो ये सबसे ज्यादा हार्म होता है, यानी कि जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और कभी कभी आप इतने लाउड स्पीकर डीजे के पास रहते हैं ना, तो आपकी सुनने की जो शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है। इसी को देखते हुए अब की बारी ये कहा जा रहा है कि डीजे की जो व्यवस्था है वो बहुत कम रहने वाली है, यानी कि नाम मात्र के बराबर ही कहा जा रहा है। और साथ ही साथ जो रूट है वो भी एक जो रूट है वो चेंज हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि जब से कांवड़ की यात्रा शुरू हो जाएंगी, तो जिस तरफ से रूट होएगा उस तरफ से जो गाड़ियां है वो बंद कर दी जाएगी। यानी कि पहले के मुकाबले अब बहुत ज्यादा सेफ रास्ता मिलने वाले आप सभी को, हर जगह जगह पर आप सभी के लिए सुविधाएं उपलब्ध होगी। और बाकी आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। आज का कड़क सवाल भी बहुत ही आसान मैंने आप सभी से पूछा है श्रोताओं, यानी कि भारत की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति की आपने नाम बतानी है, यानी कि भारत की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति कौन थी। मैसेज आ गए हैं, लेकिन देखिए अगर आप सोच रहे कि हम मैसेज करें हम भी, तो बिल्कुल अगर नहीं कर सकते तो वॉइस मैसेज भी पहुंचा सकते हैं जी। जरूरी नहीं कि आपने चैटिंग ही करनी है, वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप खुद की अपनी आवाज खुद भी सुन सकते हैं। चलिए फिलहाल एक गाना, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं।

कुड़िया शहर दिया। आए हाय क्या बात है जी, दिलेर मेहंदी की आवाज में भाई बहुत ही खूबसूरत गाना। और ये गाने शादी में ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई, मजा आ जाता है इनके गाने सुनकर, पैर ऑटोमेटिक थिरकने लग जाते हैं और डांस करने का मन कर जाता है ना। और भी बहुत सारी अपडेट रह गए श्रोता जो कि मैं कल अपने शो में शामिल करने वाली। फिलहाल अभी एक बार और आपके पास मौका है, चांस है महसूस करने के लिए, यानी कि भारत की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति कौन है, कौन थी, है नहीं थी। हमने मैसेज करके बताना। चलिए जी लौट कर आते हैं इस गाने के बाद।

जैस्मीन। अरे भाई साहब, नाम ही इतना शानदार है तो गाने कितने खूबसूरत होंगे। फिलहाल आरजेडी ने आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 6:54 हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में। और अब जो मैसेज है आप सभी के प्यारे प्यारे, चलिए देखते हैं किनका क्या मैसेज आया है। यानी कि आज का कड़क सवाल यही है, भारत की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति की आपने नाम बतानी थी। चलिए जी देखते हैं किनका मैसेज सबसे पहले आया हमारे पास। यानी कि प्रतिभा पाटिल, ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं भूपेश शर्मा नगर पंचायत पागबड़ा से। ललिता कश्यप जी का कहना है कि प्रतिभा पाटिल

0: प्रतिभा पाटिल जी, विकी सागर जी कनेक्ट हो गए हैं। रीना जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? बहुत अच्छे जी, आप बताइए। अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से, मंसूरी कॉलोनी करूला मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, इनके दोस्त है सैयद सारिक अली। गुड इवनिंग रीना जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? और आपका शो यूनिंग मस्ती सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रही हो आप, और अभी आपने तुलसी के फायदे बताए, बहुत ही अच्छी जानकारी रही, और साथ ही साथ आप गाने बहुत अच्छे प्ले करती हो, थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया। और ये कहते कि राइट आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, ओके। और एक हमारे पास वॉइस मैसेज आ गया है, चलिए सुनते हैं कि ये भैया अपनी वॉइस मैसेज में आखिरकार कहना क्या चाह रहे हैं।
1: आपका शो बहुत जबरदस्त होता है, और मैं कराची पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, राशिद नास, क्योंकि मुझे मैसेज करना नहीं आता, वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ, इसलिए मेरा जवाब जरूर सुनाइएगा।
2: आदाब अर्ज है, मैं पाकिस्तान कराची से राशिद नास बात कर रहा हूँ। आपने कहा हमारे शो में शामिल हुआ, तो हमने फिर सोचा कि क्यों उन्हें शो में शामिल किया जाए, कोई इतने प्यार से बोल रहा है, तो आपके शो में शामिल भी हो गए, और गाने जो आप सुना रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, जबरदस्त गाने हैं, और आपने अगर इसका जवाब दिया कुछ, तो फिर मैं आइंदा भी आपके प्रोग्राम में इसी तरह शामिल होता रहूंगा। थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे शो में शामिल हुए, बहुत अच्छा लगा। और देखिए, जरूरी नहीं कि आप मैसेज करें, रिटर्न मैसेज करें, कोई बात नहीं, आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, आप खुद की आवाज तो खुद सुनेंगे ना, इसीलिए वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, आपका मैसेज है वो जरूर शामिल किया जाएगा। तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है सर कि आपने इतनी पाकिस्तान से हमारा रेडियो सुन रहे हैं और वहां से मैसेज कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए प्राउड होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए कि आप इतनी दूर से हमारा रेडियो सुन रहे हैं और अपना प्यार हमारे तक पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि भैया अगला मैसेज किनका आया है हमारे पास।

0: हाँ जी, अगले मैसेज की बात करूँ तो गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग सर, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं नाजमिन हासमिन जी ग्लोबल से। इनका कहना है कि राइट आंसर, मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि राइट आंसर है प्रतिभा सिंह जी। ओके, सृष्टि हमारे साथ कनेक्ट हो गई है, और इनका कहने की राइट आंसर होता है प्रतिभा पाटिल जी। भारत की फर्स्ट महिला जो कि राष्ट्रपति थी, बिल्कुल जी। और हमें पता होना बहुत जरूरी है श्रोताओ, तो कल भी इसी तरीके से मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगी। और आपको बता दूं कि आज इवनिंग मस्ती शो में जो विनर बनते हैं वो है भूपेश शर्मा जी, जो कि कनेक्ट होते हैं नगर पंचायत पागबाड़ा से। तो आज आप हमारे शो के विनर बने हैं, तो एंजॉय करिए और शाम को और भी अच्छे से एंजॉय करिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत श्रोताओं, कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह। बाकी आप सभी ने भी राइट आंसर दिया है और बहुत अच्छा लगा, कहेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह। बाकी आप सभी ने भी राइट आंसर दिया है और बहुत अच्छा लगा कि देखिए जब आप सभी के राइट आंसर आते हैं ना तो दिल खुश हो जाते हैं, अलग ही एकदम मजा आ जाता है। लेकिन दो तीन और मैसेज रह गए हैं, वो भी शामिल करना बहुत जरूरी है। ये हमारे साथ कनिका जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि प्रतिभा पाटिल जी है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। और जल्दी जल्दी मैसेज, एक तो भैया मैसेज कर रहे हैं, जल्दी करिए थोड़ा, क्योंकि मैं अभी न्यूज का टाइम भी होने वाला है। और फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होती है सृष्टि जी, जो कि दिल्ली से है। और इनका कहना है कि मैं आपका रेडियो लगभग यानी कि दो वीक से सुन रही हूं, जो कि मुरादाबाद में मेरी फ्रेंड है उसने बताया था, और मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आपके रेडियो सुनकर गाने और बातें बहुत फैंटास्टिक, बहुत अमेजिंग है। आप जो बोल रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर। थैंक यू सो मच मैम, शुक्रिया। और इनका कहना है कि राइट आंसर है, और इनका कहना है कि मैम कौन नहीं जानता है कि हमारे देश की पहले राष्ट्रपति महिला यानी कि प्रतिभा पाटिल जी थी। और मुझे लगता है कि वुमेन को हमें सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल जी सही बात है, करना चाहिए। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये कृष्णा जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, इनका कहना है कि प्रतिभा पाटिल जी है। ओके जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया तहे दिल से कि आप सभी ने राइट आंसर पहुंचाया है। सो इसी के साथ मैं लेती हूँ जाने की इजाजत श्रोताओं, कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह, ढेर सारी बातें करेंगे। अभी के लिए बब्बा, टाटा टाटा, टेक केयर।
1: परिवारों को आश्वस्त करना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भंग करने के लिए जिम्मेदार लोगों को शीघ्रता से दंडित किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने आज बताया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए कुल 1000 तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि विदेश मंत्रालय स्वयं के खर्च पर यात्रियों को परिवहन, आवास, भोजन, चिकित्सा परीक्षण, मार्गदर्शन आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है। सिक्किम में नामची जिले के समरदुंग में एनएचपीसी तीस्ता जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे सभी 25 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही 4 दिन के बाद बचाव अभियान समाप्त हो गया। सिक्किम सरकार ने इस दुखद घटना के कारणों का पता लगाने के लिए 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ये कदम विशेष रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में व्यापक अनियमितताओं का पता चलने के बाद उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोटरोसेनी पैलेस में राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। इस दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में शनिवार तक तेज बारिश की संभावना है। प्रशासन ने पुणे और कोंकण की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत को 126 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में

0: समाचार मिलने तक भारत ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आज हमारा एपिसोड बहुत खास है, अयोध्या का स्वाद, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश से, जो परंपरा और प्रगति की सुंदर संगम है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। आज लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है आस्था की मिठास, संस्कृति की खुशबू और स्वाद का ऐसा जादू जो सीधे दिल तक पहुँच जाता है।
0: जी हाँ दोस्तों, आज हम चलेंगे उस नगरी में जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि, सरयू की पावन धरती और अब स्वात की नई राजधानी।
1: सुबह का समय, सरयू के घाटों पर उगता सूरज, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और गलियों में उठती ताजी कचौड़ियों, जलेबियों और पेड़ों की खुशबू।
0: वाह, ऐसा लगता है जैसे अयोध्या सिर्फ दर्शन नहीं कराती बल्कि अपने स्वाद से भी आपका स्वागत करती है।
1: और यही कारण है कि आज लाखों श्रद्धालु सिर्फ रामलला की दर्शन ही नहीं बल्कि अयोध्या के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने भी पहुंच रहे हैं।
0: भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बना चुकी है। सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, घाट, हर क्षेत्र में विकास की एक कहानी लिखी जा रही है।
1: लेकिन विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों का नहीं होता, असली विकास तब होता है जब स्थानीय लोगों की कला, संस्कृति और स्वाद को भी नई पहचान मिले। और यही काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या की पारंपरिक खाद्य विरासत को भी नई उड़ान दी जा रही है।
1: और इसी प्रयास का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
2: फिलहाल मैं मौजूद हूँ मौर्य मिष्ठान भंडार में। यहाँ मौजूद होने का मेरा कारण है ODOC में चुने गए हमारे शहर के और इस दुकान के कुल्लड़ वाली दही जलेबी, जिसको हमारे प्रदेश में एक नई पहचान मिली है और इससे हमारे प्रदेश को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। अब जब शहर में लोग आएंगे, जब टूर से लोग आएंगे और जब वो ये कह के आएंगे कि भाई अयोध्या जाना है और हमें कुल्लड़ वाली दही जलेबी खानी है, तो अयोध्या का नाम और अयोध्या का व्यापार दोनों बढ़ेगा। और इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौर्य मिष्ठान भंडार से इसके ओनर।
3: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के बाद अयोध्या वासी तो भाई बोलते जो आमदनी बढ़ी तो सही चीज है। कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं तो आमदनी जाती बात यहाँ लोगों को बढ़ेगी। रही बात होती ओके की, तो अयोध्या में दही जलेबी हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है
4: जी।
3: और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर आते ही रहते हैं अयोध्या में, तो जो है आपके यहाँ प्यारी लोग जो है आपका दही जलेबी लेके जाते हैं, तो इतने भक्ति सब शायद माइंड में रहा होगा। अच्छा लगा हमको भी कि चलिए अयोध्या में पानी तो गई ऊपर तक।
4: बहुत अच्छी बात है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह अपना धन्यवाद आप प्रकट करेंगे?
3: उनके लिए जितना कहा जाए उसमें कम ही है। अयोध्या क्या था और क्या बना दिए तो भाई अभी देख रहे हैं, उसमें कहना ही नहीं, कोई शब्द नहीं है
4: जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार
3: जी। नमस्ते
0: दोस्तों, अगर अयोध्या के स्वाद की बात हो, खुरचन पेड़े का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है।
0: कल्पना कीजिए, बड़े से कढ़ा में घंटों तक पकता दूध धीमी आंच, धैर्य और अनुभव।
1: जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता है, कढ़ाई के किनारों पर मलाई की सुनहरी परत जम जाती है। कारीगर इसे बड़ी ही सावधानी से खुरचते हैं और फिर उसी से तैयार होता है खुरचन।
0: इसके बाद उसमें देसी खांड, इलायची और पारंपरिक तकनीकी का जादू मिलाया जाता है।
1: जब ये पेड़ा तैयार होता है तो उसकी हर परत में दूध की मिठास और मेहनत की कहानी छिपी होती है।
0: कहते हैं कि एक अच्छा खुरचन पेड़ा मुंह में जाते ही घुल जाता है, लेकिन उसका स्वाद देर तक याद रहता है।
1: यानी दर्शन का प्रसाद दिल में बसता है और खुरचन पेड़ा स्वाद की याद बनकर साथ चलता है।
0: तो दोस्तों, अब बात उस जोड़ी की है जिसके बिना अयोध्या का फूड टूर अधूरा माना जाता है।
1: गर्मा गर्म जलेबी और ठंडी मलाईदार दही,
0: और सबसे खास बात, ये परोसी जाती है मिट्टी के कुल्हड़ में।
1: कुल्हड़ सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। मिट्टी की सौंधी खुशबू दही के स्वाद को और बढ़ा देती है।
0: सुबह सुबह दुकानों के बाहर लगी कतारें, चाशनी में डूबी सुनहरी जलेबी और ताजी दही,
1: ऐसा लगता है जैसे स्वाद और संस्कृति एक साथ थाली में परोस दिए गए गए हैं।
0: जलेबी की तैयारी भी कम दिलचस्प नहीं है। खमीर उछे हुए घोल को गोल गोल आकार देकर घी में तला जाता है, फिर उसे मीठी चाशनी में डुबोया जाता है।
1: और जब वही जलेबी ठंडी दही के साथ मिलती है और स्वाद का ऐसा संतुलन बनता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
0: तो श्रोताओं, यही वजह है कि अयोध्या की दही जलेबी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है और फूड फेस्टिवल में लोगों का दिल जीता है।
1: लेकिन अयोध्या का स्वाद सिर्फ मिठाइयों तक सीमित नहीं है।
0: बिल्कुल, यहाँ की मसालेदार कचौड़ी और कुरकुरी टिकिया भी उतनी ही मशहूर है।
1: सुबह के नाश्ते में कचौड़ी, सब्जी और शाम को चटपटी टिकिया, यहाँ के लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है।
0: हर दुकान की अपनी विशेष रेसिपी है, अपना स्वाद और अपनी पहचान होती है।
1: दोस्तों, इन व्यंजनों की लोकप्रियता के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य है कि हर जिले के विशेष व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले।
1: इसके तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: उन्हें आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, FSSAI मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है।
1: अब अयोध्या की स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचेंगे।
0: यही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करेगा।
1: आज सोशल मीडिया पर हैशटैग अयोध्या फूड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
0: लोग कुल्हड़ वाली दही, जलेबी, खुरचन पेड़ा और अयोध्या के स्ट्रीट फूड की तस्वीरें साझा कर रहे हैं।
1: एक समय था जब लोग अयोध्या को सिर्फ धार्मिक दृष्टि की सोच से जानते थे
0: और आज अयोध्या अपनी संस्कृति, पर्यटन और खान पान के जरिए एक नए भारत की तस्वीर पेश कर रही है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप अयोध्या जाएं,
0: रामलला के दर्शन कीजिए,
1: सरयू आरती का आनंद लीजिए
0: और फिर जरूर चखिए खुरचन, पेड़ा, लड़वाली दही, जलेबी, कचौड़ी और टिकिया,
1: क्योंकि ये सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि अयोध्या की आत्मा का स्वाद है।
0: और जब स्थानीय परंपरा को विकास का साथ मिलता है
1: तो एक शहर की पहचान पूरे देश की शान बन जाती है।
0: विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: हेलो नमस्ते आदाब, मैं हूँ आपकी दोस्त व होस्ट छाया। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। वैसे आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आज के खास बातचीत में डॉक्टर गौरिका सिंघल। तो आइए मैम से मिलवाते हैं आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू छाया जी।
1: वैसे तो बहुत सारी बातचीत करेंगे आगे, लेकिन अपना इंट्रो दे दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को।
2: मैं डॉक्टर गौरिका सिंघल, मैं नवजात शिशु व बच्चों की स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अभी अपना क्लिनिक रीजन क्लिनिक्स में हूँ और साथ ही मैं एपिक्स अस्पताल के साथ एसोसिएटेड हूँ। इससे पहले 10-12 साल मैं GTB अस्पताल दिल्ली में थी और साथ ही मैं शांति गोपाल अस्पताल गाजियाबाद में भी मैंने काम।
1: वैसे मैम अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त का जो पहला हफ्ता होता है उसको हम मनाते हैं स्तनपान दिवस के रूप में। तो ये पूरा हफ्ता जो है स्तनपान दिवस पे लोग बात कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आप हमारे श्रोताओं को ये पहले समझा दीजिए स्तनपान सप्ताह है क्या।
2: बेसिकली इस सप्ताह का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम जनता को जागरूक कर सकें कि बच्चे के लिए माँ का दूध व माँ को बच्चे को दूध पिलाना कितना फायदेमंद है और इसका क्या क्या फायदा बच्चे व माँ को मिलता है।
1: जी, तो अभी हम शुरुआत करते हैं इसके फायदे के बारे में। तो स्तनपान के फायदे क्या होते हैं शिशु के लिए।
2: माँ का दूध शुरू के 6 माह में शिशु के लिए पूर्ण व सर्वोत्तम आहार है। माँ के दूध में हर जरूरी पोषक तत्व होता है। शिशु के आंते जो है वो माँ के दूध के लिए ही अनुकूल है, इसीलिए इसे बच्चे को पचाने में बहुत आसानी होती है। साथ ही में जब माँ बच्चे को गोद में लेकर उसे स्तनपान कराती है तो माँ और बच्चे में भावनात्मक बंधन जो है वो और मजबूत हो जाता है। इसमें कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं जो शिशु को सर्दी खांसी, जुकाम, पेट, कान के इन्फेक्शन इन सबसे रक्षा करती है। साथ में माँ के दूध पे बच्चे का मस्तिष्क का विकास सबसे ज्यादा पूर्ण होता है। 6 माह तक जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसमें जब हम 6 माह के बाद ठोस आहार शुरू करते हैं तो आहार से होने वाली एलर्जी के प्रति सुरक्षा भी बच्चे को मिल जाती है। जो बच्चे स्तनपान कर रहे हैं उन शिशुओं में सामान्य से अधिक मोटा होने का कारण वह मधुमेह की संभावना भी कम हो जाती है।
1: ये तो रही शिशु के फायदे की बात, अब जरा हम आपसे जान लेते हैं कि माँ को क्या फायदे होते हैं।
2: स्तनपान से जितने फायदे शिशु को होते हैं उतने ही फायदे स्तनपान कराने से माँ को भी मिलते हैं। माँ का जो गर्भाशय यूट्रस होता है वह सिकुड़ कर वापस अपनी गर्भावस्था की पहली स्थिति जाने में भी इस स्तनपान से मदद मिलती है।
1: जी।
2: साथ ही माँ को अपना जो बढ़ा हुआ वजन है वो कम करने में भी मदद मिलती है। एक दिन में स्तनपान कराने से लगभग 500 कैलोरी तक माँ बर्न कर सकती है। साथ में इसमें जिंदगी में आगे चलकर माँ को होने वाले टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुमेह, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर इन सब से भी माँ को खतरा कम होता है। माँ को ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और हृदय रोग संबंधी जो खतरा होता है वह सब भी कम हो जाता है। ये एकमात्र ऐसा भोजन है जो हर समय, हर जगह और हर अवधि पे हर सही तापमान में उपलब्ध रहता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि दूसरी महिलाओं के कंपैरिजन में मुकाबले में जो माँ स्तनपान करवाती है उसमें डिप्रेशन का खतरा भी कम हो जाता है।
1: जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रही है। आई होप एकदम मतलब मस्त वाला दिमाग में घुसेगा। वैसे मैम बच्चे कई बार दूध पीने के बाद भी रोते हैं, तो ऐसा क्यों होता है।
2: बच्चों के रोने के बहुत से कारण होते हैं। बच्चे का अगर डायपर गीला हो, उसे ठंड लग रही हो, उसे गर्मी लग रही हो, उसे गोद में आकर घूमना हो तो वह बच्चा रोकर ही बता पाता है। बच्चे का रोने का मतलब ये नहीं है कि माँ का दूध पूर्ण नहीं है। माँ का दूध पूर्ण हो सकता है, उसके बाद भी बच्चे का रोने का मतलब ये है कि वह दूध के सिवा और किसी चाहत की इच्छा रखता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर हमारी भी आदत होती है बच्चे रो रहे होते हैं, हमारा एक सिंपल सा फंडा होता है कि भाई उसको भूख लगी है, पर हम अदर चीजों पर ध्यान नहीं देते। सो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट थी। कैसे जाना जाता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है या नहीं।
2: अगर बच्चा दूध पीने के बाद आराम से 1-1.5 घंटा सोता है, दिन में 6-8 बार यानी कि 24 घंटे में 6-8 बार सूसू जाता है और उसका वजन अगर सही तरीके से बढ़ रहा है यानी कि 1 महीने में कम से कम 500 ग्राम के करीब उसका वजन अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है।
1: जी अगर माँ को खांसी जुकाम हो रहा है उस टाइम में बच्चे को दूध पिलाना सही होगा?
2: बिल्कुल, माँ के दूध से बच्चे को वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर माँ को वायरल इन्फेक्शन है तो बस वो सावधानी के तौर पे अच्छे से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोकर और अगर बहुत ज्यादा खांसी है तो मुंह पर मास्क लगाकर बच्चे को दूध पिला सकती हैं। बल्कि ऐसा करने से माँ के दूध से जो माँ ने एंटीबॉडीज बनाई है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो बच्चे को मिल जाएंगी, इससे बच्चे में वो बीमारी होने का खतरा और कम हो जाएगा।
1: अगस्त का महीना है और गर्मी भाई साहब बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैम अगर बच्चे को प्यास लग रही है उस वक्त में हम क्या बच्चे को पानी भी थोड़ा बहुत पिला सकते हैं?
2: बिल्कुल भी नहीं। शुरू के 6 माह में हमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। माँ के दूध के ना 2 हिस्से होते हैं। जो शुरू का दूध एक छाती से आता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जो बाद का दूध होता है उसमें बच्चे का पेट भरने वाला तत्व फैट्स ज्यादा होते हैं। तो अगर गर्मी ज्यादा होती है तो माँ का शरीर अपने आप उस चीज को पहचानता है और शुरू के दूध में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और वो जो पानी है वो माँ के दूध का पानी वो बच्चे के लिए उसकी प्यास मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। इसीलिए माँ के दूध के सिवा बच्चे को ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी
1: जी,
2: कि शुरू के 6 माह में बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध देना है। बच्चे को कोई घुट्टी 555 घुट्टी, 112 बाल जीवन घुट्टी, कोई भी घुट्टी बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है।
1: जी ये बहुत बढ़िया आपने बात बताई, हाईलाइट किया इसको, क्योंकि अक्सर लोग घुटियां पिलाते रहते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि माँ दिन भर थक हार के काम करके और रात में सोने जाती है और उस वक्त आधी रात को बच्चा उठ जाता है, उसको भूख लगती है वो उठ जाता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका जिससे कि माँ की नींद भी खराब ना हो और बच्चे की भूख भी मिट जाए?
2: बिल्कुल, माँ का दूध ही तो एकमात्र ऐसा भोजन है जो हर समय हर जगह हर मात्रा में सही तापमान पर उपलब्ध है। कुछ समय बाद दूध पिलाने के बाद तो माँ को पता चल जाता है कि वो जिस तरह बच्चा माँ दोनों कंफर्टेबल है किस तरह से वो उस बच्चे को दूध पिला सकती हैं।
1: जी
2: रात में बच्चे को गोद में लिया और उसे दूध पिला दिया और उसके बाद सुला दिया। बल्कि अगर बच्चा ऊपर के दूध पे है तो पहले दूध को बनाएं, उसे गर्म ठंडा करें, उसको लेकर आए, फिर धीरे धीरे बच्चे को पिलाएं, उससे तो माँ की नींद और ज्यादा खराब होगी।
1: आई होप उन महिलाओं को जो माँ बनी है पहली बार बहुत ही ज्यादा आपसे जानकारी मिली होगी और बच्चे को स्तनपान कराने में सही एक गाइड मिल पाया आपकी बातों से। मैम जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को, उन सभी महिलाओं को जो पहली बार माँ बनी है या स्तनपान की सही जानकारी नहीं है, तो एक छोटा सा मैसेज पहुँचाइए।
2: मेरा सबसे छोटा सा और सबसे सरल मैसेज एक ही है कि माँ का दूध शुरू के 6 महीने के लिए शिशु के लिए पूर्ण व सर्वोत्तम आहार है। इसके सारे फायदे बच्चे व माँ दोनों को ही मिलते हैं और शुरू के 6 महीने में ऊपर का दूध बच्चे को आगे के इन्फेक्शन से नहीं बचा सकता और साथ में माँ का दूध जो बच्चे की मस्तिष्क के डेवलपमेंट में हेल्प करता है वह ऊपर का दूध कभी नहीं कर सकता।
1: जी बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, आपसे बात करके, इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: वर्षों से लंबित 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि कर्तव्य के निर्वहन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान का स्मरण और उनके परिवारों के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता सदैव सर्वोपरि रहेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि राजधानी दिल्ली में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की हैं। दक्षिण दिल्ली से लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री गडकरी ने बताया कि इस परियोजना से दिल्ली में 2,105 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
4: श्री गडकरी ने बताया कि दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे की योजना के अंतर्गत DND से फरीदाबाद और सोहना होते हुए 6 लेन का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी लागत 4,583 करोड़ रुपए है। इसके अलावा लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को नेल्सन मंडेला मार्ग वसंत कुंज से जोड़ने के लिए शिवमूर्ति से 6 लेन की टनल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इन सभी योजनाओं पर व्यय की जाने वाली कुल राशि 1,04,145 करोड़ रुपए है। आश्रम से बदरपुर बॉर्डर तक महरौली गुड़गांव रोड, INA से महिपालपुर और कालिंदी कुंज जंक्शन से ओखला बैराज तक एक इंटरचेंज के निर्माण की अन्य परियोजनाओं का प्रस्ताव है। नितिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 917 कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
5: यह डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना पश्चिमी दिल्ली नगर निगम के 25 वार्डों के लगभग 4.5 लाख परिवारों को कवर करेगी। इसकी शुरुआत पहले चरण में 6 वार्डों से हो गई है, जबकि शेष 19 वार्डों को इस वर्ष 31 अगस्त तक जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ, हरित और विकसित दिल्ली का निर्माण केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जन भागीदारी से ही संभव है। उन्होंने नागरिकों से घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था का सहयोग करने, गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करने तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने का आह्वान किया। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने नगर निगम को निर्देश दिया कि इसके लिए जो भी फंड चाहिए वह सरकार प्रदान करेगी।
6: दिल्ली सरकार ने भी नगर निगम को ये कहा कि जितना भी फंड लगेगा, परंतु दिल्ली सरकार की ये प्रायोरिटी है कि दिल्ली साफ होनी चाहिए, दिल्ली सुंदर होनी चाहिए। किसी भी शहर की सुंदरता जो सबसे पहले आती जाती है वो वहाँ की सफाई व्यवस्था से आती है।
5: उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक तकनीक, मजबूत बुनियादी ढांचे और जन सहभागिता के समन्वय से दिल्ली देश की सबसे स्वच्छ और सुव्यवस्थित राजधानी के रूप में स्थापित होगी। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, महापौर परवेश वाही और नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्णय हर परीक्षा में छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों के अधिकारों और उनके परिश्रम पर आघात करने वालों के विरुद्ध कानून पूरी कठोरता के साथ काम करेगा। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि डॉ राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना हो या प्रधानमंत्री द्वारा आज सुबह बताए गए फास्ट ट्रैक कोड बनाना हो, सरकार कोई भी अस्थायी समाधान या जल्दबाजी में किए जाने वाले उपाय नहीं कर रही है। एक प्रेस वार्ता में श्री सूद ने कहा कि सरकार उन सभी कमियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह बैठक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में ब्रिक्स सहयोग के विकास में महत्वपूर्ण है। मंत्रालय के अनुसार बैठक इस बढ़ती वैश्विक समझ को दर्शाती है कि आपदाएं सतत विकास, जलवायु अनुकूलन, आर्थिक स्थिरता और मानव सुरक्षा के लिए व्यापक और गंभीर जोखिम उत्पन्न करती हैं। बैठक में ब्रिक्स के 10 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज पीएचडी चैम्बर हाउस में सेफ स्कूल्स लीडरशिप 2026 पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में स्कूल की सुरक्षा और मुश्किल हालात का सामना करने की क्षमता के लिए एक व्यापक और भविष्य के हिसाब से तैयार दृष्टिकोण की जरूरत पर जोर दिया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि अब स्कूल की सुरक्षा का दायरा केवल भौतिक बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, इसमें साइबर सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, आपदा की तैयारी और अप्रत्याशित स्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी शामिल है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। हालांकि डीएमआरसी ने बताया कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा की समस्या को रोकने के लिए आज दिल्ली शाहदरा शामली रेलखंड के लोनी रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले कुल 71 मामले पकड़े गए और 37,210 रुपए का रेलवे राजस्व वसूला गया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को दी गई हिरासत में लेने की शक्तियां नई नहीं है, बल्कि ये शक्तियों का नियमित विस्तार या नवीनीकरण है। एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा कि आदेश हर 3 महीने में जारी किया जाता है और वर्तमान नवीनीकरण 7 जुलाई को इस वर्ष 19 जुलाई से 18 अक्टूबर की अवधि के लिए जारी किया गया था। पुलिस ने कहा कि ये नवीनीकरण छात्रों के विरोध प्रदर्शन शुरू होने से काफी पहले जारी किया गया था। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित जवाब में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आज कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा। प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के बारे में श्री द्विवेदी ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के पहले से ही लगभग 1,10,00,000 उपयोगकर्ता हैं और ये तेजी से बढ़ रहा है।
2: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऐसा माध्यम है जो देश को जानकारी देता है, प्रेरित करता है और एकजुटता करता है, साथ ही विकसित भारत की भावना को भी आगे बढ़ाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर सभी श्रमिकों और समर्पित कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी के मार्गदर्शन में स्थापित भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रहित, उद्योग हित और श्रमिक हित के आदर्शों को आधार बनाकर श्रमिकों के सम्मान, अधिकारों और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वराज और स्वदेशी के प्रबल समर्थक लोकमान्य तिलक ने भारतीयों में आत्मगौरव और राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनके विचारों, साहस और नेतृत्व के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और स्वाभिमान का संदेश सदैव स्मरणीय रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के लिए चंद्रशेखर आजाद का अदम्य साहस, अटूट स्वाभिमान और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान

का स्वरूप प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और स्वाभिमान का संदेश सदैव स्मरणीय रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के लिए चंद्रशेखर आजाद का अदम्य साहस, अटूट स्वाभिमान और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान में गंभीर रूप से घायल हुई महिला जीवित है और इसका इलाज जारी है। तथ्य जांच इकाई ने बताया कि उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है और वेंटिलेटर से हटा लिया गया है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और सोशल मीडिया पर अपुष्ट दावों को साझा न करने का आग्रह किया। अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड-19 में कर्तव्य निर्वहन के दौरान जान गंवाने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का शुभारंभ किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दिल्ली में यातायात भीड़ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई परिश्रमी छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा और आज विश्व प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नीति ये आ जा।
1: की हो गया
2: बेबे? मैं ते ना तू तंग आ।
1: क्यों, की होया?
2: बेबे पता नहीं केड़िया फ्रेंडा ने इना दिया जिन्हां फोन ते हस हस के गल्लां करदे रहंदे ने, वेले इक वेले उन्हां नूं मिलन तुर जांदे ने। बेबे मैं लाख कोशिश कीती कि मैं शक ना करा, पर हुण बंदे नूं शक हो ही जांदा है। मैया खसमां नूं खानी
1: धीए, बंदे ते तीवी दा झगड़ा तां मुढ़ कदीम।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
5: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: कहते हैं कि ये दुनिया के सारे रंग हमारी आंखों से ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर यही नजरें धीरे धीरे धुंधली होने लगे और हमें इसका पता भी ना चले तो क्या होगा। डायबिटीज यानी शुगर सिर्फ दिल किडनी या शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी आंखों की रोशनी पर भी गहरा असर डालती है। आज हम इसी बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हेलो हाय नमस्ते, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और आज आपकी आंख के पर्दे के विषय में तमाम छोटी छोटी बातों पर आज हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वेलकम टू FM मुरादाबाद। जोरदार तालियां। हाउ आर यू डूइंग, कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं।
1: थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया इस चीज के लिए, और आई थिंक ये बहुत जरूरी है हमारे सारे
0: जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी ऑडियंस हैं,
1: बिल्कुल लिसनर्स हैं, हम लोग के लिए बहुत जरूरी ये मुद्दा है जो कि पता होना चाहिए।
0: क्योंकि मैम होता क्या है ना ईशा मैम, मैं बीच में बोल रहा हूँ, क्योंकि आंखों को सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि आंखें जो है सिर्फ उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, काला मोतिया और मोतिया बिंद सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें पता होती है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनपे हमें बात करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज हम बात करने वाले आंख के पर्दे के बारे में जो कि बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी आंखों का, तो आज इस पर ही बात करने के लिए डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे बीच में है। सो मैम मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा आपको हमारे FM स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है?
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है।
0: पहले आपके बारे में जानना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लिसनर्स को अपने बारे में बताएं।
1: तो मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ और CL गुप्ता में काम करती हूँ मुरादाबाद, और इसमें बेसिकली रेटिना के बारे में लोगों को पता नहीं होता। रेटिना होता है आंख का पर्दा, तो पर्दा सबसे जरूरी अंग इसलिए है क्योंकि जो भी दिखाई देता है वो उसी के वजह से दिखाई देता है। अगर पर्दा सही नहीं रहेगा तो शायद लोग कुछ ना देख पाए। तो इसलिए पर्दे के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता। कोई भी आंख के बारे में सोचता है तो हर कोई सबसे पहले मोतियाबिंद ही सोचता है। सिर्फ मोतिया ही आंख का भाग नहीं होता है, और भी जरूरी हिस्से होते हैं जिसमें से सबसे जरूरी अंग जो है वो है पर्दा। और इसमें काफी सारी बीमारियां होते हैं, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के ऊपर है, पर इसमें और भी बीमारियां होती है जो कि हम वो वक्त के साथ पता लगे।
0: बिल्कुल। अच्छा मैम सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जरा हमारे लिसनर को।
1: हाँ जी, तो बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम में ही लिखा है कि डायबिटिक मतलब जो भी लोगों को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, वो चीज पर्दे में भी असर करने लग जाती है। तो इसको देखने के लिए हमें पर्दे का ही चेकअप कराते रहना चाहिए। तो ये पर्दा क्या है इसको समझाने के लिए मैं यही कहूंगी कि जैसे मान लीजिए एक कैमरा होता है, कैमरा का जो आगे का शीशा होता है वो तो हो गया आपका लेंस, जिसको हम मोतिये के लिए बोलते हैं, पर उसके बाद भी जब हम फोटो खींचते हैं तो जो फिल्म में सब कुछ कैप्चर होता है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर फिल्म ही नहीं हुई तो आगे फोटो भी नहीं निकलेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो फिल्म है यही हमारा पर्दा होता है, यही हमारा रेटिना होता है। तो अगर यही नहीं रहेगा तो आगे कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए हमें डायबिटीज में सबसे जरूरी चीज जो है वो है पर्दा, वही अफेक्ट होने लग जाती है, इसलिए हमें पर्दे का चेकअप कराते रहना चाहिए, और उसी से ही हम डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी बीमारियों को पकड़ सकते हैं।
0: सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, जिसमें आज आपका साथ निभा रहे आरजे आनंद, और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे एक और सवाल के लिए, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
2: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
3: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 बजे FM मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 बजे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आनंद है, शो का नाम है हेलो डॉक्टर, और आज हमारे साथ CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। ढेर सारी बातें कर रहे हैं आज हम। डॉक्टर साहब मुझे तो सिर्फ अभी तक यही पता था कि आंखों में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आंखों का एक ही डॉक्टर होता है, एक ही स्पेशलिस्ट होता है, और आज भी बहुत सारे लोगों को यही पता है। तो क्या जैसे आपने अभी आंख के पर्दे के बारे में बात करी, क्या इसका कोई अलग स्पेशलिस्ट होता है?
1: हाँ जी बिल्कुल। तो बेसिकली पहले मैं थोड़ा इंट्रो दे दूं कि मैंने MBBS और अपना MD दोनों ही दिल्ली से करा है। तो MBBS तक तो हम लोग डॉक्टर हो गए, लेकिन MD में हम बनते स्पेशलिस्ट जब मैं बनी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिसे हम बोलते हैं आंखों की डॉक्टर। पर उसके बाद भी एक सुपर स्पेशलिटी होती है जिसका हम फेलोशिप करते हैं, वो मैंने नारायण नेत्रालय बैंगलोर से किया है। वहाँ पे मैंने पर्दे का पूरा स्पेशलाइजेशन अपना करा जो कि 2 साल की और होती है स्पेशलाइजेशन।
0: ओके, तो मैम मेरा यही क्वेश्चन था आपसे अभी, आपने बहुत अच्छे से अपने बारे में बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा ये बताइए मैम कि जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि आईज के बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, क्या मुझे तो नहीं पता था, आप जैसे आंखों के पर्दे की स्पेशलिस्ट हैं अलग से, तो हमारे लिसनर्स को तो ये पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था अभी तक, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या सच में अलग अलग आंखों में जो समस्याएं होती है उसके अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कॉर्निया के अलग हो गए, मोतिया बंद के, इस तरीके से?
1: हाँ जी बिल्कुल, तो जो मैं ये फेलोशिप की बात कर रही थी यहीं पर ही आके हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं, जहाँ पे बेसिकली कॉर्निया होता है जिसको हम पुतली के डॉक्टर बोलते हैं, बाकी मोतिये का तो होता ही है, उसके अलावा काले मोतिये का अलग होता है, और फिर हम पर्दे के डॉक्टर हो गए, ऐसे और भी स्पेशलाइजेशंस होते हैं जिसमें लोग करते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आंख का डॉक्टर होने से कंप्लीट हो गया, आंख का डॉक्टर मतलब वो सिर्फ MD है, पर उसके बाद जिसने स्पेशलाइजेशन किया है वो जाके फाइनली एक सुपर स्पेशलिस्ट बनता है, जैसे मैं पर्दे की डॉक्टर।
0: ओके, सो लिसनर्स आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आंख में कोई भी समस्या है तो उसका एक डॉक्टर नहीं है, हमारी आंखों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अलग अलग स्पेशलिस्ट है, जैसे आंख का पर्दा, अभी उसके स्पेशलिस्ट हमारे बीच में मैम मौजूद है। मैम क्या हर डायबिटीज के मरीज को ये बीमारी हो सकती है, और या फिर कुछ लोगों में इसका खतरा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है?
1: तो ये जरूरी नहीं है कि हर डायबिटीज के मरीज को ही ये बीमारी हो, पर हर डायबिटीज का मरीज बिल्कुल एक रिस्क में जरूर होता है, उसको ये डायबिटिक रेटिनोपैथी बनने का रिस्क जरूर हो सकता है,
0: ठीक है।
1: पर जो कुछ मरीज जिनमें ये रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है वो तब जब या तो उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड रहे, सही ना रहे, बहुत लंबे समय तक उनको शुगर रहे, और उसके अलावा उनको अगर BP की भी दिक्कत रहती है साथ में, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है, और भी कोई शारीरिक प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें भी डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है।
0: ओके, तो मैम इसके सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे किसी को कैसे पता चले, या ये बिना लक्षण के भी बीमारी बढ़ सकती है?
1: हाँ जी बिल्कुल बढ़ सकती है, एक्चुअली इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, ये शुरुआत होती है माइल्ड और मॉडरेट से, धीरे धीरे वो सीवियर पे पहुंचती है, और फिर उसके बाद सीवियर के बाद की भी कहानी होती है। जो माइल्ड मॉडरेट स्टेज है, हो सकता है ये पेशेंट को पता ही ना लगे, कोई लक्षण ही ना हो, पर इसके बाद जो स्टेजेस पहुंचते हैं वो ज्यादा सिवियर होने लग जाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि मरीज सीधा हमारे पास तब पहुंचे जब उसको लक्षण आया और उसकी सिवियरिटी बहुत बढ़ चुकी हो, तो इसीलिए उसको साल में एक बार न एक बार कराना चाहिए पर्दे का चेकअप, क्योंकि ये सारी चीजें पर्दे के चेकअप में ही पकड़ में आती है, शुरुआत लक्षण से नहीं होते, शुरुआत साइंस से होते हैं जो कि हम पकड़ते हैं।
0: ओके ओके, अच्छा मैम अक्सर कुछ लोग कहते हैं भाई शुगर कंट्रोल है तो इसलिए आंखें भी सुरक्षित होंगी, तो क्या ये पूरी तरीके से सही है?
1: नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत बार मरीज तो अपना शुगर नाप रहा है लेकिन उसको नहीं पता उसके पूरे दिन भर में कितना वेरिएशन हो रहा है। दूसरी चीज, कुछ कुछ टेस्ट भी होते हैं जो ये बताते हैं एवरेज शुगर कंट्रोल कितना है, वो भी कराते रहना चाहिए लोगों को, पर उसके बावजूद भी अगर सब कुछ सही भी चल रहा है, अगर मरीज को बहुत लंबे समय

0: शुगर है और साथ में जैसे मैंने बताया बीपी और इन सब की भी दिक्कत है, तो भी पर्दे में दिक्कत आना शुरू हो सकती है। इसलिए सिर्फ शुगर कंट्रोल रहने से ही वो चेकअप ना कराए ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, उनको हमेशा साल में एक बार चेकअप कराते रहना चाहिए।
1: ओके, अच्छा मैम अगर बात करें इनकी डाइट की, इनके खान पान की, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इनको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए?
0: देखिए शुगर के मरीज को ऑब्वियसली शुगर कंट्रोल तो रखना ही है, तो उनको अपने शुगर और कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है उसको कम करके रखना होगा। जितना हो सकता है अगर वो प्रोटीन्स बढ़ाए और गुड लो कार्ब में रहते हैं तो ही उनको फायदा देगा। बाकी उनको डेफिनेटली एक न्यूट्रिशनिस्ट और अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते रहना चाहिए अपने डाइट के लिए, और जितना हो सके अपना शुगर कंट्रोल में रखें।
1: ओके, सो आई होप लिसनर्स आज आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी जो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता है। एंड अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल 9837896896, हमारे स्टूडियो का नंबर है। अपना नाम और अपने शहर का नाम और अपना सवाल हमें जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप सोशल मीडिया हैंडल फॉलो करते हैं तो हमें भी फॉलो कीजिए। हमारा ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से। पानन के साथ है प्रोग्राम में आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में डॉक्टर ईशा आचार्य जी, आज उनसे ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं, आंख के पर्दे के ऊपर तमाम सारी बातें हो रही हैं। और मैम इसी बीच में आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको अपनी आंखों की जांच कब और कितने समय में करानी चाहिए और ये कितनी इंपॉर्टेंट है?
0: हाँ जी, तो ये बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि डायबिटीज सबको लगता है शायद एक उम्र के बाद आती है।
1: हाँ जी मैम, और ये जरूरी है जानना कि किस एज में ये हो सकती है, ये प्लीज आप बताइए।
0: तो मेनली सबको यही लगता है कि ये बुढ़ापे की बीमारी है या एक एज के बाद जाके आएगी। वो जो हम बोल रहे हैं वो होता है टाइप 2 डायबिटीज,
1: ठीक है।
0: पर अभी ये भी है कि टाइप 1 डायबिटीज भी एक चीज होती है, जिसमें जो बच्चा होता है, बल्कि शुरुआत में ही ये डिटेक्ट हो जाता है कि उसमें इंसुलिन ही नहीं बन रहा होता है, तो शुगर अपने आप ही बढ़ता रहता है इन बच्चों का। तो इन लोग को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोला जाता है, क्योंकि वो इंसुलिन उनको बाहर से देना पड़ता है तब जाके उनका शुगर कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे बच्चों को भी डायबिटीज की शिकायत हो जाती है। अब कब कब चेकअप होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि वो टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 है। टाइप 2 जैसे कि मैंने कहा एक उम्र के साथ जैसे जैसे बढ़ के आती रहती है। टाइप 2 डायबिटीज वालों को तो जैसे ही डिटेक्ट हुआ उसी टाइम एक बार पर्दे का चेकअप करा लेना चाहिए। जबकि टाइप 1 डायबिटीज जो होता है उनके शुरुआत के 5 साल में वो डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क इतना नहीं होता है, तो उनको शुरू के 5 साल के बाद जाके एक चेकअप करा लेना चाहिए, भले उसके बाद हर साल एक एक बार चेकअप कराते रहना चाहिए। फर्क क्या है, जो ये यंग लोग हैं जिनमें टाइप 1 डायबिटीज होती है काफी हद तक सिवियर हो सकती है वक्त के साथ, तो उनको भी एक टाइम के बाद रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया 5 साल के बाद से उनको रेगुलर चेकअप शुरू करवा देना चाहिए, क्योंकि वो भी उतने ही रिस्क में होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के जितना एक टाइप 2 डायबिटिक होगा। तो इसीलिए उम्र की बात की जाए तो दोनों ही यंग या फिर जो ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं उन दोनों में ही हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग करती रहनी चाहिए।
1: ओके, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम, जैसे कुछ ग्रामीण इलाके में लोग होते हैं, शहरी लोग हो या गांव के लोग, अक्सर जांच को टाल देते हैं कि अभी नहीं, फिर करा लेंगे, बाद में करा लेंगे, तो इस तरीके के जो लोग टाल मटोल करते हैं और ये रिस्क लेते हैं अपनी आंखों के प्रति, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए
0: ये बहुत बड़ा रिस्क है? क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी जो मैं बोल रही हूँ ये अंधेपन तक मरीज को ले जा सकती है, इसलिए इतना इंतजार ना करे कि अंधापन पहुंच जाए और हम उसके आगे जाके कोई ट्रीटमेंट ना कर पाए। इसलिए उसको उसी स्टेज पे पकड़ना है जब वो ट्रीटेबल हो, जब उसका हम इलाज कर सके, तो इसलिए उनको रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराना ही चाहिए, टालने से कोई फायदा होना नहीं।
1: मैम अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाए तो क्या उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है?
0: हाँ जी, जैसे मैंने कहा कि इसके स्टेजेस होते हैं, सही स्टेज पे सही इलाज किया जाएगा तो रोशनी आ सकती है, एंड स्टेज तक नहीं पहुंचने देना है क्योंकि तब आंख की रोशनी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ अगर आप कुछ भी आंखों से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, कोई भी आप अगर सवाल करना चाहते हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो के नंबर के जरिए 9837896896 पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैम एक और सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा, क्या मोबाइल, लैपटॉप या लंबे समय तक जो स्क्रीन देखते हैं क्या उनको ये समस्या और ज्यादा गंभीर उनको हो सकती है?
0: नहीं, इसका रिलेशन लंबे टाइम या स्क्रीन यूसेज से नहीं होता है, इसका प्योर रिलेशन होता है शुगर की वजह से। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जब ब्लड शुगर पूरे टाइम तक लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो आंखों की जो रक्त की नसें होती हैं उसमें सूजन आ जाती है, उसकी वजह से कभी कभी या तो सूजन पर्दे में बहुत ज्यादा आ सकती है या ये नसें अगर फट जाए तो आंख के अंदर अचानक से ब्लड भी आ सकता है। तो ये सारी वजह होती है जिससे रोशनी अचानक से गिर सकती है। तो इसीलिए हमें चेकअप कराते ही रहना चाहिए, क्योंकि एक बार वही जैसे मैंने बताया, अगर बहुत ज्यादा ब्लड आ जाए और धीरे धीरे पर्दा उखड़ने लगे, वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे मुश्किलें बढ़ जाती हैं और रोशनी आने की संभावना भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है।
1: ओके मैम, क्या धुंधलापन भी इन सब चीजों से कनेक्ट है क्या, आंखों में अगर हल्का हल्का सा धुंधलापन आने लगे?
0: आंखों का धुंधलापन इसी सबसे होता है, अगर पर्दे में सूजन आ जाए या पर्दे में ब्लड आ जाता है या खून आ जाता है तो धुंधलापन इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसके अलग अलग इलाज होते हैं जो हम करते हैं।
1: ओके अच्छा मैम, सपोज किसी को ये प्रॉब्लम है और उसको ये पता कैसे चले कि उसको ये समस्या हो रही है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं?
0: तो जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत स्टेज में तो हो सकता है सिम्टम्स हो भी नहीं पेशेंट को, और धीरे धीरे सिम्टम्स आना शुरू होता है मतलब ऑलरेडी बात बिगड़ चुकी है। तो धुंधलापन से ही शुरुआत होती है, कभी कभी काले तिलमिले जैसे अचानक से दिखने लग जाए तो इसका मतलब आपकी आंख में ब्लड आ रहा है, ये शिकायत हो सकती है। धुंधलापन, काले तिलमिले दिखना, ये सारी चीजें असर करा सकती है।
1: डॉक्टर साहब, एक तो हमारे भारत में मैं कहूंगा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारी आंखों में कुछ भी होता है ना, हम तुरंत मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, हम कोई भी एक ड्रॉप खरीदते हैं, आई ड्रॉप, और उसको अपनी आंखों में डाल लेते हैं बिना सोचे समझे, बिना पूछे। तो क्या ये करना चाहिए?
0: बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है और देखा भी है कि मरीज जाके बस फार्मेसिस्ट से पूछ लेते हैं और दवा डालने लग जाते हैं, वो नहीं जानते किस दवा का अपना खुद का साइड इफेक्ट होता है। वो तो लंबे समय तक डालते रहते हैं, अपना चेकअप टालते रहते हैं, पर तब तक में वो जो दवा है वो अपना साइड इफेक्ट कर चुका होता है। और जब वो हमारे पास आते हैं, बहुत बार उन्हें काले मोतिया की शिकायत या उनकी पुतली खराब होने की शिकायत, ये सारी चीजें भी हो सकती, तो ये चीज बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। उनको कुछ भी दिक्कत हो सबसे पहले किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए और उस हिसाब से ही दवा चलानी चाहिए।
1: ओके मैम, सो दोस्तों अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आते हैं, आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए ऐसे ही आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर।
2: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
1: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 बजे FM मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 बजे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप जुड़े हुए हैं आपके शहर के अपने रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM के साथ। गाड़ी अगर चला रहे हैं तो आराम से चलाइए, ध्यान सड़क पे और कान रेडियो स्टेशन पे लगाइए। हाँ जी, फिलहाल शो चल रहा है आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इसमें हम ढेर सारी बातें कर रहे थे आंखों के पर्दे के बारे में, और अब जाने का समय हो गया है, बहुत सारी नॉलेज हमने शेयर कर दी। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, आपने बीच में गाने भी सुने मुझे पता है। वेल वेलकम बैक है मैम, आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना, हमने आपसे ज्यादा सवाल तो नहीं पूछ लिए ना? हमारे लिसनर कह रहे होंगे ईशा जी को परेशान कर दिया आज आनंद ने, इतने सारे सवाल पूछ डाले। वेल मैम, सारे क्वेश्चन वो हैं जो हमारी ऑडियंस से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा क्योंकि अब चलने का समय हो रहा है। फिर जाने से पहले मैं चाहूंगा जितनी भी डिस्कशन हमने की, अगर इनमें से कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में आप बताना चाहें।
0: हाँ जी बिल्कुल, तो जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में या तो सूजन बन सकती है या ब्लड आ सकता है या पर्दा उखड़ भी सकता है, तो इनके अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अगर पर्दे में सूजन वगैरह आता है तो डॉक्टर आपको आंख में इंजेक्शन लगाने के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। जो ब्लड और ये सब आता है, कभी कभी उसमें हमें आंख में लेजर भी करना पड़ता है, पर कभी अगर एंड स्टेज तक पहुंच रहा है और पर्दा उखड़ने की स्थिति आ रही है या जो ब्लड आया है वो साफ हो नहीं रहा है तो हमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है, जिसे हम विट्रेक्टमी ऑपरेशन कहते हैं। तो ये सारे हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली ब्लड शुगर कंट्रोल और ये सब आपको ध्यान देना ही है, तो ये हमारा फुल ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं।
1: ओके, और मैम चलते चलते कोई एक संदेश जो आप देना चाहें हमारे तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त आपको मुरादाबाद में सुन रहे हैं, खास तौर पर उन लोगों को जो डायबिटीज से पीड़ित हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी जांच नहीं कराई है, उनको आप क्या संदेश देंगे? और साथ
0: देखिए, अभी सारी जनता के लिए आंखों का चेकअप का मतलब होता है कि बस चश्मे का नंबर ले ले और उनका काम हो गया, तो यही मैंने आज पूरे टॉक में अपना बताया है कि सिर्फ चश्मे का नंबर या सिर्फ मोतियाबिंद, यही दो चीजों से आंख की बीमारियां नहीं होती है, और पर्दे की प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी प्रॉब्लम भी होती है मरीजों को, तो इसलिए साल में एक बार चेकअप होते रहना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है, अगर आपकी शुगर की दिक्कत बढ़ गई है तो कुछ डॉक्टर आपको 3 से 6 महीने पे भी बुला सकते हैं, और अगर आपका इलाज भी शुरू हो गया है तो हो सकता है आपको हर महीने भी बुलाया जाए, तो इसलिए इस चीज को नजरअंदाज नहीं करनी है, आपको चेकअप कराते रहना है। और जब भी आप किसी जनरल ऑप्थल्मोलॉजिस्ट पे भी जाए जो सिर्फ जनरल चेकअप कर रहे हैं, उनको भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको पर्दे का चेकअप कराना है। पर्दे के चेकअप के लिए एक बहुत जरूरी संदेश ये है कि वो हम पुतली फैला के करते हैं, एक ड्रॉप डाला जाता है जिससे थोड़ा धुंधलापन रहता है कुछ समय तक, और वो पुतली फैला के ही हमें पर्दा ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है। तो कभी भी कहीं जाए सिर्फ चश्मे का नंबर लेके ना आए। और अगर आप जा रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको पर्दे का चेकअप कराना है, तो आपकी पुतली फैला के प्रॉपर चेकअप की जाए। ये सब चीजें अगर आप भी इन्फॉर्म्ड रहेंगे, तो अगर आपको कोई और डॉक्टर देख रहा है जिसने चेकअप नहीं कर रखा या किसी तरह से मिस हो गया है, आप उनको ये चीज बोल सकते हैं और आपका प्रॉपर थरो चेकअप हो सकता है।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे बीच में थी एंड इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से आज हम ढेर सारी बातचीत कर रहे थे मैम आंखों के पर्दे के बारे में। हमने तमाम छोटे छोटे मुद्दों पर जो आज तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं ऑफकोर्स उनको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगने वाला है एंड आई एम श्योर आप दोबारा फिर से आना चाहेंगे हमारी मुरादाबाद की जनता के लिए फिर से कुछ और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे।
0: बिल्कुल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया और ये बहुत जरूरी था कि आपके जनता तक ये बात पहुंचे
1: डेफिनेटली
0: और वो इस चीज की इम्पोर्टेंस को समझे।
1: थैंक यू सो मच
0: हमेशा स्वस्थ रहे और वो हमेशा ऐसे ही अच्छे से देखते रहे।
1: क्या बात। सो डॉक्टर ईशा चलते चलते मैं आपसे एक छोटी सी एडवाइस लेना चाहता हूँ पूरे मुरादाबाद क्या एक एडवाइस देना चाहेंगी चलते चलते।
0: हाँ जी, तो मैं एक ही लाइन में इस चीज को समाप्त करना चाहूंगी दैट राइट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम कैन सेव योर साइट।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। एंड गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए ऐसे ही आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। ये तो चल ही रहा था, बाकी रेडियो स्टेशन भी सुनते रहिए गाइज, फिर मिलेंगे एक और नए एक्सपर्ट के साथ कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, फिलहाल के लिए घड़ी की सुई मुझे टिक टिक करके इशारा करेगी आनंद अब तेरा जाने का समय हो गया है, बहुत बातें होगी, तो चलिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, पानी पीते रहिए और खूब सारा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। एक आंखों का बढ़िया गाना छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं मत जाइए, बाय बाय।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर

0: अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत केसीसी पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध।

जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंश

लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंश

0: और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
2: At the level of the Prime Minister,
3: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
0: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
4: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजोर डान के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
5: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
3: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.10 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
6: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, खराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो बजाते रहो और गुनगुनाते रहो। क्या हाल चाल है जी, कैसा मौसम है, गाड़ी तेज चल रही है या हल्की, या बगल वाले ने हॉर्न बजा बजा के कर दिया है सर दर्द, बताइए हमें और दीजिए ट्रैफिक अपडेट्स। पता चला है थोड़ा सा तो ट्रैफिक है स्टेशन के आगे, कहीं एक ऑटो गलत पार्क हो गया है, वो बेचारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, मगर कोई बात नहीं, नीचे नीचे रास्ता निकलेगा और आप निकल जाएंगे। तो हमें अपडेट भी करते रहिए और बताते रहिए 9837896896 पे कि कहाँ रास्ता स्लो है और कहाँ है रास्ता फास्ट। दोस्तों कहते हैं ना, वक्त सबको बदल देता है, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब इंसान खुद बदलना चाहे। तो थोड़ा तो समझ ही गए होंगे कि आज क्या टॉपिक है। टॉपिक इसी से मिलता जुलता है कि आपके अंदर ऐसा कौन सा बिहेवियर है या चेंज है जिसने आपको, कहते हैं ना, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर दिया और जिसने आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव भी लाया। क्या गुस्सा कम हुआ है आपका, या आपके अंदर ज़्यादा पेशेंस आया है, या कभी किसी को इग्नोर करना भी सीख लिया है। तो साहब, खुद को इम्पोर्टेंस तो देने चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि बदलाव सच में ज़रूरी है। तो हमें व्हाट्सएप करें और हमें कॉल करें 9837896896। बदलना अगर ज़रूरी हो तो आदत बदलो। चेहरे बदलने से तकदीर नहीं बदलती। मुस्कुराहट की आदत बना लो दोस्त, क्योंकि हंसी से ही ज़िंदगी है संभलती। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने अंदर बदलाव लाते रहो। इस छोटे से गाने के बाद हम करेंगे खूब सारी बातें। आप बिलाइए 9837896896 पे, करते हैं कुछ चटपटी और बदलाव वाली बातें। तब तक के लिए सुनते हैं कुछ तो नशे से चढ़ना चाहिए साहब।

0: familiares.
1: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो साहब, आज है थर्सडे और कल है फ्राइडे, तो जो जो मूवी के शौकीन हैं उन्होंने तो अपनी टिकट पहले से ही बुक कर ली होगी। बताइए, कल कौन कौन सी मूवी रिलीज़ हो रही है और कौन से ऐसे एक्टर की मूवी रिलीज़ हो रही है जो इस समय किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। तो मुझे पता है कई लोगों को तो ये जवाब ऐसे ही बता देंगे साहब इतनी देर में कि आपने क्या बोला है, मगर मैसेज करिए और एक बार हमें भी पता चले कितने लोग अवेयर हैं कि कल कौन से एक्टर हैं जिनकी मूवी रिलीज हो रही है और वो इस समय एक चीफ मिनिस्टर हैं प्रेजेंटली एक स्टेट के। तो हम अपने एक लिसनर से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि आज उनके अंदर ऐसा क्या बदलाव आया है और आजकल क्या बदलाव अपनी ज़िंदगी में लाने की सोच रहे हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ। आज
1: क्या कर रहे हैं आप धैर्य जी?
2: मैं कुछ नहीं कर रहा।
1: कुछ तो करते रहना चाहिए ना। तो आप ये काम तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब आप जब बातें कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि आज हम किस बारे में बातें कर रहे हैं, तो जरूर बताओ कि क्या ऐसा बदलाव है जो अभी आपको लगता है कि आपके अंदर आया है?
2: अभी थोड़ी बहुत मेरे अंदर सिंसियरिटी आई है।
1: थोड़ी सी सिंसियरिटी आई है?
2: हाँ।
1: तो वो कब कैसे लगा आपको कि आपके अंदर सिंसियरिटी आई है?
2: मतलब जैसे वो आते हैं,
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपको ऐसा क्या लगता है कभी कभी कि किसी को देख के कि यार ये चीज़ तो मेरे को भी सीखनी चाहिए और ये बदलाव मेरे अंदर भी आना चाहिए, कभी ऐसा लगा भी?
2: हाँ, मुझे बहुत बार ऐसा लगा है।
1: कभी कभी कोई आपके फेवरेट टीचर हैं जो जब आप उनके पढ़ाने का स्टाइल देखते होंगे तो कहते होंगे कि हाँ सर किस इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मुझे भी इसी तरीके से सीखनी है ये सब चीज़ें?
2: हाँ, मतलब हमारे सर हैं वो ऐसे ही पढ़ाते हैं हमें।
1: क्या नाम है उन सर का?
2: उमेश कुमार।
1: उमेश कुमार सर, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आपको?
2: हिस्ट्री से और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं।
1: तो इन तीनों में से कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सिविक्स?
2: हिस्ट्री।
1: सच में हिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती है?
2: हाँ।
1: चलो यार, वैसे मैंने देखा है मोस्टली लोगों को हिस्ट्री ज़्यादा ही पसंद होती है। मुझे भी अपने जब मैं स्टडीज़ करता था तो मुझे भी हिस्ट्री का सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था। और हिस्ट्री के बाद आपको लगता होगा ज्योग्राफी अच्छा?
2: ज्योग्राफी अभी हमने सिविक्स पढ़ा नहीं है।
1: सिविक्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है। हाँ, सिविक सब्जेक्ट इसलिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि आपको पता चलता है कि आपके यहाँ सिविलाइजेशन कैसा, मतलब क्या कल्चर है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, कैसे अपनी गवर्नमेंट के जो कहते हैं ना कार्यकाल है वो कैसे कैसे, हाँ कैसे वो गवर्नमेंट हमारी वर्क करती है। तो ज़रूर बढ़िया है, आप ये सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करें और अच्छा लगेगा आपको जब धीरे धीरे आप इसे पढ़ेंगे। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। तो आज कौन सा गाना सुन के बदलाव लाओगे अपने अंदर?
2: मन मेरा।
1: हाँ। चलो आज ये आपके भी मन की भी सुन लेंगे, अपने मन की भी सुन लेंगे, दोनों के मन मेरा सुनते हैं आज। ठीक है धैर्य, बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही बदलाव लाते रहो, अच्छे अच्छे बदलाव लेके आओ और जब भी कभी कुछ लगे तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करना, ठीक है?
2: हाँ।
1: ओके, बाय बाय, गुड नाइट।
2: बाय, गुड नाइट।
1: तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े थे श्रेया जी, ये हमारे कहते हैं ना कभी कभी फ्रिक्वेंट लिसनर नहीं, अब ये हमारे रेगुलर लिसनर है और कहते हैं कि भैया जब भी मैं आपको कॉल करता हूँ ना 9 बजने का इंतजार करता हूँ और सबसे पहले कॉल मैं ही करता हूँ। तो ये बात तो बिल्कुल सच है साहब, 9 बजने का इंतज़ार जितना मुझे रहता है उससे कहीं ज़्यादा हमारे धैर्य साहब को भी रहता है। तो धैर्य साहब, ये बदलाव बहुत ज़रूरी है और सुनते हैं आपका एक प्यारा सा गाना मन मेरा। तब तक सभी के लिए ये कहूँगा हमें कॉल करें, मैसेज करें 9837896896 पे। कुछ तो बदलाव आया होगा आपके अंदर, बताने में क्या जाता है यार, क्या पता आपके बदलाव से कोई सामने वाला भी बदल जाए। कभी कभी हम दूसरों के बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है खुद को बदलना। और जब इंसान खुद को बदल लेता है ना, तो उसको पूरी दुनिया, उसको मतलब कहते ना, उसकी पूरी दुनिया फिर बदल जाती है। तो सर सुनते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं हम सभी ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे।

0: अन्नयारे।
1: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और साहब जो अभी आपने गाना सुना था वो उनके जो सिंगर हैं गजेंद्र वर्मा, बहुत ही बढ़िया आवाज़ है उनकी और इतना हिट हुआ था ये गाना। कहते हैं कि उन्होंने भी अपने स्टार्टिंग के समय में बॉम्बे में खूब स्ट्रगल किया, खूब लड़ झगड़ के, जैसे कहते हैं ना हर कहानी में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपको अगर अपने मन को करना है, अपने मन का कुछ भी करना है तो कहीं ना कहीं से वो शुरुआत करनी होती है। थोड़ा सा समय लेके और उसके बाद मंजिल पे पहुंच के उन्होंने खूब सारे गाने गाए, उसके कई टाइम बाद वो एक नज़र में आए और तब जाके उनका ये गाना हिट हुआ। तो समय तो लगता है साहब, बदलाव कहते हैं ना, यही तो बदलाव है आपके अंदर का कि थोड़ा सा तो बदलाव लाना पड़ेगा, हल्की सी हिम्मत करनी पड़ेगी, कहीं तो उठ के जाना पड़ेगा। हमारे पास मैसेज आया है रोहित जी का हरपाल नगर से, कहते हैं पहले मैं हर बात पर रिएक्ट करता था, अब रेस्पॉन्स देना सीख गया हूँ। इस बदलाव में मेरी फैमिली लाइफ इम्प्रूव कर दी है। क्या बात है रोहित जी, बहुत ही बढ़िया। रिएक्शन और रेस्पॉन्स में बस कुछ सेकंड का ही डिफरेंस होता है और वही सेकंड रिलेशनशिप बचा लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा बदलाव मैं कहूँगा आप अपने लिए लेके आए हैं। और बदलाव तो है ही, साथ में एक छोटी सी पहेली आप सभी के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई तो उसका जवाब देगा ही देगा। मैं टूट जाता हूँ बोलने से और बन जाता हूँ चुप रहने से, बताओ मैं कौन हूँ। एक बार फिर से बताता हूँ, मैं टूट जाता हूँ बोलने से और बन जाता हूँ चुप रहने से, बताओ मैं कौन हूँ। बताइएगा इस ब्रेक के बाद। उससे पहले करते हैं अपने एक लिसनर से बात, क्या कह रहे हैं वो, क्या बदलाव लेके आए हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
2: शेख जफर हसन, क्वाट, जिला रोहतास, बिहार।
1: हसन साहब, क्या मौसम है उधर और क्या समय
2: मौसम,
1: आप
2: मौसम जी मौसम तो बहुत खुशगवार है, अच्छे है, रुक रुक के बारिश हो रही है, अभी तो रुकी हुई है, कल भी बारिश हुई, आज भी हुई।
1: तो ये जब रुक रुक के बारिश होती है तो हसन साहब आपको कैसे पता चलता है कि बारिश अभी रुकी और अभी हो गई?
2: ऐसी बात नहीं है, समझ गया।
1: आप मतलब आराम से ऐसी आपने जगह कुर्सी डाल रखी है कि सामने दिख रही है आपको, अरे बारिश हो रही है और फिर रुक गई? तो आज ऐसी ही इस रुकी हुई बारिश में कोई एक शायरी सुनाइए पहले तो आप।
2: दिल को
1: छूए
2: जब आपकी याद आती है तो
1: क्या बात है?
2: आंसू आ जाते हैं, जब आपकी याद आती है तो आंख में आंसू आ जाते हैं, मगर क्या करें आपकी तस्वीर देखकर मुस्कुरा लेते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया।
2: एक शेर आखिरी आप सुन लीजिए, आपकी
1: सुनाइए सर, सुनाइए।
2: मजबूरी में जब कोई जुदा होता है, मजबूरी में जब कोई जुदा होता है,
1: क्या बात है,
2: जरूरी नहीं कि वो बेवफा होता है।
1: बहुत खूब
2: जी। तो अब तो जो फरमाइश मैंने की है, हसीना मान जाइए इसको, दो लाइन सुन लीजिए।
1: सर आपने तो मतलब इतनी बातें कह दी है, इतनी दो दो शायरी सुना दी, अब तो हसीना मान ही जाएगी।
2: अभी आपको
1: जैसे पता होगा आज हम बात कर रहे हैं कुछ बदलाव की, तो आपके बाद ये शायरी सुनने के बाद आपके अंदर कुछ बदलाव आता है या सामने वाले के अंदर बदलाव आ जाता है?
2: वैसा तो मैं खुश मिजाज हूँ और रही बात की बदलाव ना बदलाव की बात नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से मैं रहता हूँ, कोई शिकायत नहीं है, ना कोई हमारे तो उंगली उठती है।
1: क्या बात है साहब
2: जी, बहुत आगे पीछे सब सोच समझ कर मैं चलता हूँ और ऐसी बातें सब, तो इस लाइन में जब मैं हूँ, बहुत सारे स्टेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ।
1: अच्छा जी,
2: जब आप बात कर दिया तो सन आपको 2008 से मोबाइल जब शुरू हुआ तो मैंने पकड़ा, अब तक पकड़ा हुआ हूँ।
1: हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
2: जिसमें की आपको बीजेपुर मुरादाबाद के आपके मकसूद हुसैन साहब भी है, वो भी हमारा प्रोग्राम बहुत सारे रेडियो से उन्होंने सुना है, मैं भी इनका सुना हूँ।
1: क्या बात है साहब, बहुत ही बढ़िया। ये तो आपने आज आज बहुत एक अलग सी बात बताई है, बहुत ही अच्छा लगा।
2: हाँ, तो आपसे तो इधर तो बंद था आपका रेडियो स्टेशन, तो अब तो खुल गया, तो बहुत अच्छी बात है। चंदना और अच्छे अच्छे इसमें आप
1: तो
2: यही बात गाने का।
1: हाँ हाँ, गाने का बता रहे थे अभी आप, तो दो लाइनें गुनगुना के
2: सुन लीजिए। तो हाँ, तुम गुनगुना दे, कुछ लंबा ना है। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ।

0: चले थे साथ मिलके। और यही बात दो दोस्त है मकसूद हुसैन अब भदरवा जम्मू कश्मीर के, पुरुषोत्तम कुमार और अनवर बिहारी, ये सब रेडियो स्टेशन से अभी जुड़े हुए हैं।
1: हाँ जी,
0: प्राइवेट चैनल स्टेशन हो या सरकारी, मैं सब जुड़ा, ये चारों जो है जुड़े हुए हैं।
1: क्या बहुत खूब, ऐसे ही जुड़े रहिए साहब। और कहते हैं ना कि कब जब जुड़ाव हो जाता है तो कुछ चीज़ें नई निकल के आती हैं, कुछ नई चीज़ें, नई बातें पता भी चलती हैं।
0: एक बात है, ये बहुत आनंद आ रहा है, ये बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है, आप भी खुश मिजाज है
1: सर,
0: कोई शक नहीं है
1: सर, ये तो बदलाव अपने अंदर लाना होगा सर।
0: ना, हम भी ठीक ठाक है, हमारे मिजाज के मुताबिक है।
1: हम तो बहुत, जब तक सामने वाला आप पे मुस्कुराए इससे अच्छा है कि पहले आप ही अपनी मुस्कुराहट दे दो उसे। तो बहुत अच्छा लगा हसन साहब, हसन साहब बहुत ही सच में अच्छा लगा आपसे जुड़ के आज, और बहुत ही उम्दा शायरी, बहुत ही अच्छी शायरी जो आज हमने सुनी है और हमारे सभी श्रोताओं ने सुनी है, और आपकी फरमाइश भी ज़रूर पूरी होती है सर।
0: जी जी, उम्मीद है कि आपको अच्छे से शायरी सुनाते रहूँगा।
1: धन्यवाद साहब, हम इंतज़ार करेंगे इसका।
0: जी जी, तब समझिए कि जब आप तो अब जाके लगा है।
1: जरूर सर,
0: बहुत सारे जुड़े हुए हैं आप इसके साथ।
1: हाँ सर, ये तो है सर, हमारे साथ वही है ना, जब कोई बात दिल से निकल रही होती है तो जरूर चाहते हैं कि उनकी भी बातें पहुँचे यहाँ तक।
0: जी,
1: धन्यवाद हुसैन साहब, बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बात करके।
0: जी जी, आपसे भी अच्छा लगा बात करके।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ हसन साहब, उन्होंने इतनी बढ़िया शायरी करी और अपनी बात भी बताई कि भाई मैं इस समय बदलाव को जिस तरीके से लेता हूँ, जिस नज़रिए से लेता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है, और हर बदलाव हर समय के साथ इंसान को भी बदलते रहना चाहिए। तो आज बिहार से इतना अच्छा मैसेज आया हमारे पास, तो चलिए सुनते हैं उनकी फरमाइश। और हाँ, आपकी भी कोई ऐसी हो ना बात, तो हमें करें 9837896896 पे। और मुझे पूरी उम्मीद है साहब, पहली अभी भूले नहीं होंगे आप, आपको याद होगी। हमारे एक और लिसनर हैं जिनका अभी मैसेज आया है, उन्होंने बताया है कि आपके पिछले जवाब जो पूछा था कि कौन से ऐसे हीरो हैं जिनकी कल मूवी रिलीज़ होने वाली है और वो इस समय करंट में चीफ मिनिस्टर हैं, तो बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, विजय थालापति जी। और कहते हैं, हेलो अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपकी आवाज़, बोलने का अंदाज़ बहुत प्यारा है। धन्यवाद ललिता कश्यप, नवीन नगर, मुरादाबाद से। तो ललिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही सही जवाब आपने दिया है, एकदम करेक्ट आंसर। सर, हमने अभी अभी FM ऑन किया है। अरे सर, हमने भी बिल्कुल अभी अभी थोड़ी देर पहले ही FM ऑन किया है, तो दोनों ने एक साथ ही FM ऑन किया है। सर, हम खुद को बदल सकते हैं पर दूसरे को नहीं, क्योंकि आज का समय कोई किसी की बात नहीं सुनता। ये तो है, कभी कोई तो हम कभी कभी तो अपने मन की बात नहीं सुनते, तो ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है। चलिए ललिता जी, आपका मैसेज आया, हमें बहुत अच्छा लगा, और सही जवाब के लिए आपको एक इनाम ज़रूर मिलेगा और वो आपके मैसेज पे पहुंच जाएगा। तब तक के लिए अगर आपको भी थोड़ा सा इनाम जीतना है ना, तो ये पहेली का जवाब दीजिए, मैं टूट जाता हूँ बोलने से और बन जाता हूँ चुप रहने से। 9837896896, मिलते हैं इस छोटे से गाने के बाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस टू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। इंसान तब नहीं बदलता जब उसकी उम्र बढ़ती है, इंसान तब बदलता है जब उसकी सोच बढ़ती है। तो

0: बात आपको भी समझ तो आई होगी कि हाँ कहीं ना कहीं ये बात इस शायरी में कितनी सच्चाई है। और दोस्तों कहते हैं ना कि जहाँ बदलाव ना हो वहाँ टकराव हो जाते हैं, तो अपने को तो अच्छा है टकराव होने से बचना है और बदलाव के साथ ही चलना है। हमारे साथ जुड़े हैं एक लिसनर, उससे पहले हम आपको बताते हैं इस पहेली जो मैंने आपसे एक पहेली पूछी थी, मैं टूट जाता हूँ बोलने से और बन जाता हूँ चुप रहने से, बताओ मैं कौन हूँ। हमारे पास कई लिसनर्स के मैसेज आए मगर उसमें जो सही जवाब आया है वो आया है आरुषि जी का। आरुषि जी लाजपत नगर से लिखती हैं, अखिल जी इसका जवाब है ट्रस्ट। क्या बात पकड़ी आपने आरुषि जी, बिल्कुल सही कहा, भरोसा। अगर बोलने से कहते ना मैं टूट जाता हूँ बोलने से और बन जाता हूँ चुप रहने से, बताओ मैं भरोसा ही तो हूँ, तो भरोसा रखिए और उसे कभी टूटने मत दीजिएगा। चलिए हम करते हैं अपने नए लिसनर से बात और पूछते हैं क्या है उनके अंदर का बदलाव। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: अखिल भाई नमस्कार।
0: नमस्कार जी नमस्कार, और क्या हो रहा है?
1: बहुत बढ़िया है, मैं कलकत्ता से रेहान बोल रहा हूँ।
0: तो रेहान जी कैसा है इस समय आपकी तरफ थोड़ा सा?
1: बहुत बढ़िया, मौसम ठंडा मौसम हो रहा, उसके बाद में सुबह से गर्मी इतनी लग रही थी तो मतलब दोपहर के बाद में मौसम सही हुआ।
0: थोड़ा सा मौसम दोपहर के बाद थोड़ा सा तो बदलाव आया है।
1: बदलाव तो हो रहा है, कल परसों तो बारिश हो गई थी।
0: बारिश? हाँ कल की बारिश से तो थोड़ा सा बदलाव आया है। तो आप इस समय मुरादाबाद का मौसम भी कहते हैं ना कि कल तो थोड़ा सा हो रहा था बूंदा बांदी वाला हल्का सा सुहाना सा, आज जो है उसमें से कुछ भी नज़र नहीं आया।
1: आज तो कुछ भी नज़र नहीं आया, आज तो फिर भी गर्मी तो लगी है मगर
0: हाँ
1: दोपहर के बाद मौसम सही हो गया था।
0: दोपहर के बाद थोड़ा सा अच्छा मौसम हो गया था, थोड़ा ऐसे कहते हैं ना घूमने लायक। इस समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाईवे पे गाड़ी में घूम ही रहा होगा।
1: अरे हाईवे रोड पे बस सर पूछो मत ही, अगर लोग जान पूछ के गाड़ी के नीचे आ जाते हैं ढूंढने के लिए और उल्टे गाली वाली पक देते हैं, क्या पता उन्हें कोई ऐसे उनको समझना चाहिए आदमी कौन सा समझा रहा है। और बस हम बस में आ रहे थे उस दिन तो जान पूछ के गाड़ी वाला
0: कोई बात नहीं साहब, अब तो अब क्या कहें, अब ये ना हमें खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ता है। आजकल जब भी आप सड़क पे चलें या कहीं भी चलें तो कुछ चीज़ें अपने साथ कहते हैं ना फॉलो अप करते जरूर चलें, अपनी लेन में चलें, अपने सीट बेल्ट का प्रयोग करें, हेलमेट का प्रयोग करें, यही मतलब बचाव कर सकते हैं अपने आप से, और कुछ नहीं है। ये बात तो है, तो ये बदलाव तो जरूरी है, बिल्कुल सही। आज मतलब हमारा टॉपिक भी बदलाव के ऊपर चल रहा है और आपने बात भी एकदम बदलाव वाली बात कही है कि कुछ ना कुछ तो उसमें बदलाव जरूरी है।
1: बहुत अच्छी बदलाव टॉपिक किया था ना मैंने आपको।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रिहान भाई। तो रिहान भाई आज कोई शायरी सुनाएंगे आप?
1: जी बिल्कुल, लंबी है मंजिल है पास है किनारा, दोस्त की नहीं है इसमें हमारा, भूल गए नंबर और नाम हमारा, दूसरा कोई मिल गया आपको प्यारा।
0: क्या बात है क्या बात है, आपने एकदम झटपट वाली शायरी सुना दी भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। तो किसे डेडिकेट करना चाहेंगे, अपने दोस्त का, किसी का दोस्त का नाम बोलना चाहेंगे, अपने किसी पड़ोसी का ही नाम बोलना चाहेंगे?
1: पड़ोसी का नहीं ले सकते, जैसे आप पूरा हमारे जो घर की जो टीम है वो सुनना चाहते हैं, वो तो दोस्त कौन हो बैठे हैं तो सुनने भी कहाँ जा रहे हैं, दुख के सुनते हैं बस हो गया।
0: चलिए साहब तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं सब?
1: फिल्म का नाम है तेरे नाम हमने किया है जीवन।
0: अच्छा पूरा किया है जीवन। चलिए साहब ये गाना भी बहुत अच्छा आपने चुना है, और सलमान खान साहब तो आजकल खूब अपडेट लेते रह रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा उनका लास्ट
1: सोशल मीडिया में, और मदद भी कर रहे हैं आज भी बहुत बढ़िया सलमान खान
0: जी। आज उन्होंने अभी एक दो दिन पहले अपना क्या कहते हैं अपडेट दिया था कि बताओ तुम लोगों की तबीयत कैसी है, तो आपने करा उस पे रिप्लाई नहीं किया?
1: मैंने आज सुबह फेसबुक को देखा था तो सलमान खान ये कह रहे हैं भैया जिसकी तबीयत खराब हो रही है तो हमें फॉलो करें और तुरंत हमें मैसेज करें, हम आपको मदद कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही, तो चलिए साहब अब हम आपकी मदद करते हैं ये बढ़िया सा गाना सुना के रहे हैं। धन्यवाद रिहान जी,
1: थैंक यू।
0: तो श्रोताओ हमारे साथ रिहान जी जुड़े थे, वो कह रहे थे बदलाव सच में ज़रूरी है, अगर चल रहे हैं सड़क पे, हाईवे पे खासकर, तो कोशिश करें अपनी लेन में चलें, ज़बरदस्ती ओवरटेक ना करें, सीट बेल्ट ज़रूर पहने, हंसी मजाक चलता रहेगा, मगर जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस हंसी मजाक को अपनी ज़िंदगी के साथ ना जोड़ें। थोड़ी बहुत मस्ती ज़रूरी है, मगर मस्ती में ना कहते हैं ना कोई चीज़ सस्ती ना चुनी जाए, तो उसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। हमारे पास एक मैसेज और आया है रितिका जी का। रितिका जी बुद्धि विहार से कहती हैं, मैं पहले सबको खुश करने में लगी रहती थी, अब खुद ही हैप्पीनेस को भी इम्पोर्टेंस देती हूँ। क्या बात है रितिका जी, बिल्कुल सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं होता, मतलब कहते हैं ना इमोशनल हेल्थ होती है, तो बहुत बढ़िया है कि अपने आप से भी प्यार करो, ये बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए तब तक हम आते हैं इस छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के बाद, और उसके बाद लेते हैं हम लास्ट सॉन्ग, तो देखते हैं क्या आप वो लकी हैं जिससे हम बात करेंगे, और आपकी फरमाइश का गाना प्ले होगा 9837896896 पे। बजाते रहो और गुनगुनाते रहो।

0: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे। अभी ये जो गाना आप सुन रहे थे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये अमित यादव जी ने अपनी वाइफ के लिए ऋतु यादव जी के लिए डेडिकेट किया था। और बहुत ही कहते हैं ना मैसेज में, ये साहब ये बदलाव भी ज़रूरी है, कुछ ना कुछ तो डेडिकेशन चलता रहना चाहिए अपने लिए अपने परिवार वालों के लिए। और थोड़ा सा तो कहते हैं ना मौसम बदले ना बदले, अपने को तो बदलना है ना। हमारे साथ कहते हैं ना बिहेवियर चेंज का मतलब सिर्फ पर्सनालिटी चेंज नहीं, बस अपनी बुरी आदतों को इम्प्रूव करना होता है। आज ही अगर आप घर पहुंच गए हैं या घर पहुंचने वाले हैं ना, तो घर पहुंच के किसी भी एक मेंबर को सिर्फ इतना बोलना है थैंक यू, देखिए उसके चेहरे की स्माइल कितनी स्पेशल होगी आपके लिए। लफ्ज़ों का लहजा ही इंसान की पहचान होता है, वरना चेहरे तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं। क्या शायरी भेजी है हमारे साथ पास आमिर जी ने। और आमिर जी बहुत ही कहते हैं ना, आपने इन दो लाइनों में इतनी सारी बातें बोल दी कि बदलाव जो आया कि भाई लफ्ज़ों का लहजा ही इंसान की पहचान होता है, तो बहुत ही सुंदर और एकदम सटीक बात कही है आपने। अमित जी का मैसेज आया, कहते हैं शादी के बाद मेरा बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। तो अमित जी बहुत ही बढ़िया है, ये मैसेज पढ़ के जितने भी शादीशुदा है ना, सब जो सुन रहे हैं आपको, वो सच में मुस्कुरा ही रहे होंगे मन ही मन में। भले ही बगल वाली सीट पे हॉट सीट पे कोई उनके साथ बैठा हो तो उसे देख के ना मुस्कुराए, मगर हाँ शादी के बाद तो थोड़ा बहुत ऑटोमेटिकली बिहेवियर चेंज हो जाता है। चलिए हमारे साथ हमारे एक लिसनर जुड़े हैं, करते हैं उनसे कुछ बात। ये है लास्ट कॉल इस शो की और वो है हमारे लास्ट लकी कॉलर, तो उनकी भी बात दिल की सुनते हैं, उनका भी कुछ बदलाव जो है पता चलेगा आज। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: नमस्ते सर।
0: क्या करते हैं, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नेक नेम आशु है और मेरा नेम फैजान है और मैं बरेली से बात कर रहा हूं सर।
0: और बरेली में इस समय कैसा मौसम हो रहा है फैजान साहब?
1: सर मौसम तो लगातार अच्छा होने की कोशिश कर रहा है पर हो नहीं पा रहा है। मौसम होता है बारिश का लेकिन हो नहीं पाती बारिश।
0: तो आप भी थोड़ी सी मदद कीजिए ना, थोड़ा सा बदलाव लेके आइए, कुछ बादल इधर उधर से हिला दीजिए, कहीं ना कहीं से तो बारिश हो जाएगी।
1: जिस चीज में बदलाव हमसे हो सकता है उस चीज में तो हम बदलाव कर सकते हैं, पर नेचर के साथ हम बदलाव नहीं कर सकते ना सर।
0: क्या बात कही है फैजान साहब, बहुत ही खूब। तो आज आपको जैसे पता है कि हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं एक बदलाव, तो कोई इसके इससे रिलेटेड आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट या आपके अंदर ही ऐसा कुछ बदलाव जो आया हो जो आप हम सभी श्रोताओं के साथ, हमारे सभी श्रोताओं के साथ बताना चाहते हैं?
1: जी जी जी जी सर, बदलाव हम लोगों की जिंदगी में हर चीज में होता है, ठीक है। और ये स्पेशली मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ बदलाव। जैसे कि एग्जांपल ये है कि कभी हम फोन पे मैसेजेस नहीं कर पाया करते थे, ठीक है। कि हम सिर्फ लेटर लिखा करते थे सबको और हमारे पास उस वक्त फोन नहीं हुआ करते थे। उसके बाद में कीपैड फोन आए, हमने मैसेजेस करना चालू किए और उसके बाद में आज देखिए सर, हम सेकंडों में कितनी भी दूर बंदा बैठा है बट हम वीडियो कॉल पे उसको देख लेते हैं। तो ये बदलाव है ना सर?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव लाया तो वो तो, और ये समय की मांग भी है फैजान जी।
1: जी जी,
0: तो
1: समय के साथ सर बदलते रहना बहुत जरूरी है। अगर हम समय के साथ नहीं बदलेंगे, हमें बदलना क्यों जरूरी है? हमसे जो गलतियां पीछे हो चुकी हैं, हमें उसको ठीक करने के लिए आगे जाना बहुत जरूरी है। हम उसके अंदर बदलाव तभी ला सकते हैं और हम उसको सुधार तभी सकते हैं जब उसके अंदर हम बदलाव लेके आएंगे। एग्जाम्पल जैसे हमें कल हमसे कोई गलती हो गई, अब हम आगे याद रखेंगे ना, हम उसको बदलेंगे तब जब हम उसको याद रखेंगे। अपनी गलतियों को हम सुधारना ये बदलाव है सर।
0: क्या बात है साहब, आपको कम से कम कहीं ना कहीं तो कुछ बात कहता हूँ कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ और बहुत ही अच्छी बात कही आपने। कहते ना हर दिन एक नई बिगनिंग है, बिल्कुल। जो कल वाला गुस्सा है ना, जो कल वाला गुस्सा है उसे आज वाली मुस्कुराहट में बदल दीजिए।
1: जी जी जी।
0: तो आप
1: तो सर आज सर आपके अंदर भी कभी कभी बदलाव होता है, थोड़ा सा आप कम कभी ज्यादा स्माइल करते हैं, थोड़ा कम स्माइल करते हैं, लेकिन जिस दिन ज्यादा करते हैं ना उस दिन ज्यादा अच्छा लगता है सर।
0: तो सर हम अब ज्यादा ही ज्यादा स्माइल किया करेंगे, हम कम स्माइल अब कम कर देंगे अपने। तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप फैजान जी? इतनी अच्छी बात करी आज आपने, मैं कहता हूँ कोई शायरी भी सुनाना चाहेंगे?
1: जी जी, दो लाइन इस पे जरूर कहना चाहूंगा।
0: बताइए बताइए, सुनाइए सुनाइए साहब।
1: जी जी, मैं एक ही तरह की या एक ही तरह की, नहीं नहीं सर दूसरा सुनाता हूँ आप।
0: कोई नहीं साहब, आप तीसरा भी सुना दीजिएगा तो भी हमें कोई टेंशन नहीं आज।
1: ओके ओके ओके, ये वाला सुनते हैं। वक्त के साथ बदलना ही जिंदगी का हुनर है।
0: क्या बात।
1: जो जो ठहर गया वो सिर्फ एक पत्थर है। परिवर्तन से मत डरो, नया रास्ता दिखाता है। वक्त के साथ हर बदलाव एक नया दौर लाता है।
0: क्या बात है साहब, क्या बात है।

0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कहते हैं ना, आपने इन लाइनों में पूरा जो है सब कुछ बता दिया कि हाँ ये जो है वक्त के साथ बदलाव तो आता ही है।
1: एक सर मैं एक बात सिर्फ और ऐड करना चाहूंगा, लेकिन कुछ चीजों में बदलाव अच्छा नहीं लगता है और होना भी नहीं चाहिए। जैसे कुछ रिश्ते होते हैं उनमें बदलाव नहीं होना चाहिए, जैसे भाई बहन का रिश्ता है या फिर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, ये जो भी कुछ रिश्तों में बदलाव नहीं होना चाहिए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें बदलाव होने के बाद में वो एक बुरी तरफ चले जाते हैं, कोई एक दूसरे को समझता नहीं है, उनमें बदलाव होना।
0: क्या बात फैजान साहब, चलिए इतनी सारी बातें हो गई, छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ खेलते हैं और आप उसका ना एक वर्ड में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना?
1: ओके सर।
0: मतलब जो मैं बोलूं उसको आप एक वर्ड में आप उसका जवाब देंगे, ठीक है?
1: ओके सर, हो सका तो मैं,
0: हाँ अगर हो गया और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप पास ऑन कर दीजिएगा।
1: ओके ओके ओके।
0: पहला वर्ड है गुस्सा।
1: जो है हम लोगों, हम
0: आपको एक वर्ड में जवाब देना चाहिए, गुस्सा क्या आपके नजरिए से, गुस्सा क्या?
1: जी मेरे नजरिए से गुस्सा होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी गुस्सा नहीं होना चाहिए जो अपने आप को या दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा दे।
0: स्माइल।
1: सर स्माइल तो हर बंदे के चेहरे पे हमेशा होना चाहिए, जब भी वो किसी दूसरे से बात करे तो स्माइल करके ही करे।
0: पेशेंस।
1: पेशेंस तो हर बंदे में, हर लड़के में और खासतौर से हर लड़की में होना चाहिए।
0: ईगो।
1: ईगो मैं नहीं मानता, ईगो तो किसी के अंदर नहीं होना चाहिए।
0: रेस्पेक्ट।
1: जी रेस्पेक्ट तो सर मेन, ये हमारी जिंदगी की मेन चीज जो है रेस्पेक्ट होती है।
0: तो इनमें से ये बताइए किसी किसी, मतलब ये मैंने आपके साथ इतने सारे वर्ड्स बोले, इनमें से किसी किसी वजह से आपकी लाइफ में कोई बदलाव हुआ, कोई चेंज आया था?
1: सर बदलाव तो बहुत हुए हैं, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे हैं जो मेरी जिंदगी एक अलग ही दिशा में ले गए हैं। मैं उसको ज्यादा जो है एक्सपोज नहीं कर सकता, बट जो जिस दिशा में मेरी जिंदगी गई है वो लोग आज मुझे इस वक्त सुन रहे हैं शायद।
0: तो साहब बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है सुन रहे हैं, और शायद कुछ लोगों ने तो दिशा पठानी को वेलकम मूवी में देख भी लिया होगा। तो बहुत अच्छा लगा फैजान जी आपसे बात करके, और आपका कोई फेवरेट गाना जो आप साएं जाने उस सुनना चाहें?
1: इस वक्त के हिसाब से और टॉपिक के हिसाब से मैं चूज करूंगा कि जगजीत सिंह का क्लासिकल एक है वो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो।
0: क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बहुत बढ़िया गाना आपने चुना, और ये गाना, इसी गाने से आज हम अपने शो को विदाई भी देंगे। तो धन्यवाद फैजान साहब, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात।
1: थैंक यू सो मच सर, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता
0: है। धन्यवाद फैजान साहब। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ फैजान साहब, जो जिन्होंने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करी एक बदलाव के ऊपर, कि कैसे कैसे बदलाव कितना ज़रूरी है और क्यों हमें किसी को इतनी अहमियत देनी चाहिए और किसको अपने ऊपर, मतलब कहते हैं ना कि अपने साथ साथ अपने परिवार को और रिश्तों को ज़रूर हमें बदलाव के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया हराना छोड़ देती है, बहुत ही सुंदर लाइन है और बहुत सारी बातें इसके अंदर छुपी होती हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात जो हमारे साथ रही चलने से पहले, कि बिहेवियर चेंज किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए कीजिए, क्योंकि जब आप बदलते हैं ना तब आपकी दुनिया भी बदल जाती है। एक शायरी फाइनल जो चलने से पहले कहना चाहूँगा आप सभी के लिए, बदलाव से मत डरो दोस्तों, ये ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र होता है, जो खुद के भीतर बना लेते हैं उसका हर कल आज से बेहतर होता है। तो ऐसी ही गाड़ी चलाते रहो बिल्कुल सेफ्टी जोन में, चाहे आप हो स्टेशन पे, चाहे हो बुद्धि विहार, चाहे हो MDH या फिर हो लाजपत नगर, लाभ ज़रूरी है साहब, बहुत बढ़िया करके। और इस गाने के साथ हम लेते हैं अलविदा, और कल फिर ठीक इसी समय 9 बजे मिलेंगे दिल से दिल तक अखिल संग, और मुझे रहेगा पूरा इंतज़ार किसी भी नए टॉपिक के साथ अगर आपका भी मन करे तो ज़रूर हमें शेयर करें 9837896896 पर।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IIM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी
4: अरे चिंता मत करो राधा अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना
0: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077